दीदार दाते आन तार के भुलो जी वाहे गुरु भुलो जी पंजा प्यारे आ चौहान साहिब जादियां चालियां मुक्तियां हटियां जपियां तपियां

ਨਾਨਕ ਕੂੜ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾ ਤੇੜ ਤੋਤੇ ਕਖਾਈ ਹੱਥ ਛੁਰੀ ਜਗਤ ਕਸਾਈ।

ਦਿਨ ਸੁਪਨੇ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਨੀ ਮੰਦਰ ਮਸੀਤੀ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਤੂੰ

आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस ॿुध रहे 9870 किलोहर्ट्ज़ से तंहिंखां सवाइ तव्हां आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल एप एंड डिफरेंट डिश ते प्रोग्राम ॿुधी सघंदा आहियो। सौकरवल प्रोग्राम जा तफ़सील ॿुधाइण खां अॻु में असां पंहिंजे सभिनी ॿुधंदड़ दोस्तनि सामिन खे रक्षाबंधन जे पवित्र त्योहार जूं शुभकामनाऊं ऐं वाधायूं ॾींदासीं। प्रोग्राम जा डिटेल्स कुझु न कराइनि, थोरी देरि में तव्हां हमेशह भगत कलाम साहिब ॿुधो, तंहिंखां पोइ तबसरो पेश कंदो ऐं पोइ प्रोग्राम नशर कंदो। सॼण तोखे ख़बर कहिड़ी न्यूज़ हेडलाइंस प्रोग्राम जे आख़िर में ब्रॉडकास्ट कयूं वेंदियूं। इन करे असांजे प्रोग्राम जी तफ़सील तव्हां आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस ॿुधी रहिया। हींअर चओ त भगत कलाम साहिब खे ॿुधूं।

लापता छह छह मंदर चवण है हेल ताई 165 लाश मिलिया फ्लैश फ्लड्स इलाकन में अमलदार जो चवण है 579 सैलानी तैयार पड़े ही पड़ा से पिण कैलाश मानसरोवर यात्रा जिका कि तिब्बत में है बागमती इलाके नेपाल के भूसाई कुंड में मिली को रहा है घट में घट 93 मानू मुतासर इलाकन में अलग अलग हंधन त बचाया वह नेपाल टूरिज्म बोर्ड के मुताबिक गैर थल पड़े शहरी जी घणनि मुल्क में से ब्रिटानिया ऑस्ट्रेलिया अमेरिका मलेशिया दक्षिण अफ्रीका नेदरलैंड में उस तरह बोर्ड भूते कोशी नदी में थी जिका के सुबह जो 9 बजे आई ते रसुआ ए ढाडिंग परगणन के जिलन के तमाम घणो मुतासर किया है तेखा पोए बोर्ड ढाडिंग नवाकोट ए चितावन जिले में वही जिते चैन पुलन के तबाह कयो ए कुछ आरजी पुलियों पण बर्बाद थी वयूं शुरुआती खबरों चवण है ओचतो आयल बोर्ड तंहिंजो कारण आहे ज़लज़लो जै सबब गरियल बर्फ सां अची करे भूते कोशी नदीअ में अची जमा थी भूते कोशी नदी में ओचितो आयल पाणीअ इलाइक़े में रुकणो पैदा कयो रसुआ इलाइक़े में जंहिं सबबु उते सैलानियुनि ऐं ॿियनि माण्हुनि जे सलामती जी चिंता थी पई आहे अॻिते वारनि जो ऐं बचाव मैसर कराईंदड़ एजेंसियुनि जो चवणु आहे त इलाइक़े जो जाइज़ो वरितो पियो वञे हालतुनि जो जाइज़ो वरितो पियो वञे ऐं जेके ग़ाइब आहिनि तिन खे ॻोल्हियो पियो वञे नेपाल टूरिज़्म बोर्ड पिण एमरजेंसी कॉन्टेक्ट नंबर सैलानियुनि खे ऐं संदनि कुटुंबनि लाइ ॾिना आहिनि त जंहिं खे मदद मैसर कराई वञे टोल फ्री एमरजेंसी नंबर आहे सो आहे 1234 इन खां अलावा हॉटलाइन नंबर आहे 1144 ऐं टूरिस्ट पुलिस नंबर आहे 9851289445 टूरिज़्म बोर्ड सैलानियुनि खे अपील कई आहे त मुतासिर इलाइक़नि में शांति रहो ऐं रस्मी चैनल्स मां ख़बर ज़रिए पाण खे अपडेट रखो ऐं अॻिते वारनि पारां मिलंदड़ सलामती इंस्ट्रक्शन्स खे फॉलो कयो हालतुनि खे ॾिसंदे नेपाल जे प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह पिण फेडरल पार्लियामेंट्री वारनि सां सलाह मसलत कई आहे सलाह मसलत में बोर्ड में आयल इलाइक़नि जो जाइज़ो वठण ऐं हुते राहत मुयसर कराइण ते ॻाल्हियूं कयूं वयूं भारत चयो आहे त हू नेपाल वासियुनि सां गॾु आहे ऐं मुतासिर पाड़ेसरी मुल्क खे हर तरह जी इंसानी इमदाद पहुचाइण लाइ तयारु आहे भारत जे सदर श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ऐं नायब सदर श्री सी पी राधाकृष्णन ॾुखे वक़्त में नेपाल सां पंहिंजी हमदर्दी ज़ाहिर कई प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पिण पंहिंजे नेपाली साथी मानेंद्र शाह सां ॻाल्हायो ऐं मारिजी वियलनि ते अफ़सोस ज़ाहिर कयो हुनरे दौरान त भारत खे हर तरह जी इंसानी इमदाद नेपाल खे ॾियण लाइ तयारु आहे ऐं भारतीय टीम अॻु में हुते नेपाली अख़्तियार वारनि सां राहत ऐं इमदाद सहूलियतुनि ते कार्यवाहियुनि ते सलाह मसलत करे रहियूं आहिनि ऐं सहकारु ॾेई रहियूं आहिनि भारत अॻु में 10 टन राहत इमदाद ऐं डिसेस्टर रिलीफ ऐं लाज़मी दवाऊं नेपाल खे मोकिले चुको आहे सोशल मीडिया पोस्ट में पढ़ई वज़ीर डॉ एस जयशंकर चयो त भारत नेपाल सां गॾु आहे ॾुखे वक़्त में हू नेपाल वासियुनि सां गॾु बीठो आहे मर्कज़ी सरकार चयो त हू हालतुनि ते ध्यानु रखे रही आहे छो जो नेपाल में जेके ओचितो बोर्ड आई आहे गृह वज़ीर श्री अमित शाह पिण पाड़ेसरी मुल्क सां हमदर्दी ज़ाहिर कई चयो त नेपाल में आयल ओचितो बोर्ड दुखदायक आहे जिन परिवारनि जा भाती मारिजी आहिनि तिन सां मुंहिंजो अफ़सोस आहे हू बिहार ऐं उत्तर प्रदेश जे वॾी वज़ारनि सां नेपाल में आयल हादसे बाबति ॻाल्हायो सभई इलाइक़े जेके मुतासिर थी आहिनि उते मकानी एडमिनिस्ट्रेशन खे ऐं बचाव टीमुनि खे घणो घटि NDRF यानी कि नेशनल डिस्ट्रेस रेस्पॉन्स फोर्स खे पिण चुस्त रहण लाइ चयो वियो आहे सेंट्रल वाटर कमीशन पारां जेका सलाह ॾिनी वई भारतीय सेंट्रल वाटर कमीशन पारां ऐं मीडिया रिपोर्ट्स मुताबिक़ तुर्शी नदीअ में जेका ओचितो वाद आई आहे सां महज भारत जे सरहद खां 160 किलोमीटर परे आहे इन करे भारत में पिण हेठि नदी में पाणी वधी सघंदो आहे ख़ासि करे गंदक नदीअ में बिहार ऐं उत्तर प्रदेश जे सरकारुनि

0: हीअ आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस आहे 9870 किलोहर्ट्ज़ ते। तंहिंखां अलावा तव्हां आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल ऐप ऐं डीडी फ्री डिश ते ॿुधी सघंदा आहियो।
1: पेशा प्रोग्राम सेंटर तो खे खबर कहड़ी।

ये एंटी करप्शन सब कराया था थारेंट पर फकत मुखालफन के खिलाफ जी पे जो मानू गिरफ्त में अचे तो शायद जी विटनेस जी खोट सबब केस खत्म तो थे अदालतों सालन जे सालन तीन तारीख थी वन मीडिया एक हफ्ते तीन गोड शोर कर स्कैंडल ते लही थी वे अवाम अवाम वट तो फकत पंद्रह जी यादाश्त है मेमोरी है नतीजो करप्शन जो खतरो सिर्फ उनके ही है जो करप्शन नथो कर सके करप्शन फकत को माशी मसलो को ना है इख्तलाक जो कत्ल है जैसे एक नौजवान डिसे तो इम्तिहान में नकल कदर टॉप तो करे सिफारिश से नौकरी तो हासिल करे रिश्वत से कमाए तो नौजवान भी उही रस्तो अख्तियार कंदो असा अड़ी जनरेशन एक पीढ़ी अडे रहे हूं जैंखे हराम ए हलाल के विच में फर्क ही पतो को असा एस्तमादी जमीर जो जनाजो कड़ी रखो है हर मानू पान के बेवस ए बे डोही तो करार डे करप्शन में इलाज को फकत सख्त कानून को या जैमें मिसाल दिनों है कि चीन में मौत की सजा के बावजूद भी करप्शन है ए डेनमार्क में नरम कानून के बावजूद भी करप्शन तमाम ही ना के बराबर है फर्क भरोसे जो है हर सरकारी खर्च हर टेंडर हर नौकरी ऑनलाइन थियण घुर्जे जो लिखाए थे वही तो विक्रो थे जैसे एक क्लर्क 10 लख की मिल्कियत से जेल तो वही सके तो एक वजीर 10 अरब रुपये की मिल्कियत से भी जेल वन घुर्जे अगर स्कूल की पहली क्लास के वही बार सिखारण पव तो कौम जो पैसो अवाम की अमानत है जेस तई असि चोरी के होशियारी समझदास तेस यो मर्ज खत्म को वेबा कायम रही कैंसर जहां पाकिस्तान में बढ़ करप्शन यो अस आईने जी है असि तरजीह असि तैलीम असि सियासत असि खामोशी जो यो मजमू नतीजो है असि जैस करप्ट मानू के चालाक ए ईमानदार के बेवकूफ सरीदा तेस ही मुल्क तरक्की कर भी कोन सको छोजो कौमू सिरन सीमेंट से न पर ईमानदारी के बुनियाद से अटजंदी जै तो पाकिस्तान के तरक्की याफ्ता मुल्क थियण है तेस मगरबी यूरोप का कुछ सीखण पव अस अज भी न जागे तो इंदड़ नसल असा सवाल कन् जैसे मुल्क विकरो थी रो तो तुम उन वक्त कर रहा हुआ सिंध एक्सप्रेस में किंजर असलम बगे जो शायद आर्टिकल बुधी रहा है जिनका टाइटल हो मुल्क में करप्शन जो मजबूत यार।

0: जान बचायो आरखिणीअ जो आयो आरखिणीअ जो आयो
1: प्रोग्राम सुन तो खबर कड़ी आकाशवाणी की सिंधी सर से हिंदर पेश खास खास खबरों भारत नेपाल में आयल ओचतो बोट सबब भारतीय शहर के फातल भारतीय शहर के बचाने की कोशिश ए गोल्ड की कोशिश जोर शोर बधाए रखी है। मरण जो तादाद 399 थी वो है उनका अलावा 1300 मानू इन वक्त में गायब हैं तेमें 290 भारतीय हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सुभाणे खां वठी करे चइनि ॾींहनि जी उज़्बेकिस्तान ऐं किर्गिस्तान जी यात्रा ते ईंदो। तजारत ऐं हुनर वज़ीर श्री पीयूष गोयल चयो आहे त भारत जापान खां पंहिंजे बासमती चांवरनि जो वधीक लंग CPA रिव्यू में घुरी रहियो आहे। श्रीलंका नेवी सरबराह भारत जी यात्रा ते ईंदो त जीअं सामूंडी सहकार वधायो वञे। अमेरिकी कानून साज़न चाइना फाइनेंशियल सेंक्शन बिल के बीहर खां आंदो आहे। अॼु खां माली वज़ीर श्रीमती सीतारमन 6 ॾींहनि जे अमेरिका जी यात्रा ते वेंदी। मर्दनि जे क्रिकेट में भारत ऐं महिमान श्रीलंका मेज़बान श्रीलंका टीम मंझि टेस्ट मैच ड्रॉ में ख़तम थी। इन तरह भारत सीरीज 1-1 तां हासिल कई आहे।

0: बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 392 हो गई है। प्रशासन हजारों लापता लोगों को खोजने के लिए तेजी से काम कर रहा है। तिब्बत और नेपाल के अधिकारियों ने बताया है कि लगभग 1500 लोग लापता हैं, जिनमें कई विदेशी शामिल हैं। नेपाल पुलिस ने बताया कि प्रभावित इलाकों से लगभग 1500 से अधिक लोगों को बचाया गया है, इनमें घायल लोग भी शामिल हैं। भारत के विदेश मंत्रालय ने बताया है कि नेपाल में बाढ़ के बाद 290 भारतीय नागरिकों से संपर्क नहीं हो पाया है, जबकि 84 भारतीयों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। इनमें त्रिशूली 1 जल विद्युत परियोजना के 63 कर्मचारी और कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए तमिलनाडु के 21 लोग भी शामिल हैं। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि भारत ने नेपाल में बचाव और राहत अभियानों में सहायता के लिए 47 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी है।
1: जहाज में हम लोगों ने सहायता नेपाल को पहुंचाया है। पहला जहाज यहाँ से 10 टन करीबन रिलीफ मटेरियल लेके काठमांडू पहुंचा था, जिसमें कि कंबल, सोलर लैम्प, दवाइयां, हाइजीन किट्स और टेंट वगैरह इस प्रकार की चीजें हैं। दूसरा जहाज इसमें 37.5 टन की सप्लाई, जिसमें कि 28.5 टन रिलीफ आइटम्स और 8 टन दवाइयां और 1 टन खाने पीने की सामग्री और जो भी मानवीय सहायता हो सकता है वो भी हम प्रदान करेंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की यात्रा पर कल उज्बेकिस्तान जाएंगे। श्री मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोसेफ के निमंत्रण पर ताशकंद का दौरा करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: उज्बेकिस्तान यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव व्यापार और निवेश, रक्षा, डिजिटल कनेक्टिविटी, ऊर्जा, शिक्षा और जन सहयोग संबंधी क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा करेंगे और आगे की कार्य योजना तैयार करेंगे। दोनों नेता विकसित भारत 2047 और उज्बेकिस्तान 2030 के साझा विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने पर भी अपने विचार साझा करेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज्बेकिस्तान।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से 6 दिन की अमेरिका यात्रा पर हैं। अपनी इस यात्रा के दौरान वे शिकागो, एशविले और न्यूयॉर्क जाएंगी। वे शिकागो में प्रमुख निवेशकों के साथ एक गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगी और निजी क्षेत्र के अग्रणी सीईओ, अध्यक्षों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगी। इन बैठकों में भारत में निवेश के अवसर, आर्थिक दृष्टिकोण और भारत और अमरीका के बीच व्यापार और निवेश साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होगी। भारतीय मानक ब्यूरो बीआईएस ने चांदी की गुणवत्ता की जांच के लिए 102 जिलों में 341 सिल्वर एसेइंग और हॉलमार्किंग सेंटर्स के साथ हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन आधारित चांदी के हॉलमार्किंग तंत्र का विस्तार किया है। मानक ब्यूरो त्योहारों के मौसम से पहले 25,000 से अधिक चांदी के कारोबारियों को पंजीकृत कर चुका है। पिछले साल सितंबर से ये व्यवस्था शुरू की गई थी और इसके बाद से 77 लाख से ज्यादा चांदी के आभूषणों पर हॉल मार्किंग की जा चुकी है। रक्षाबंधन का त्योहार आज पूरे देश में मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष ने रक्षाबंधन पर देशवासियों को बधाई दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि रक्षाबंधन का त्यौहार प्राचीन काल से ही देश की संस्कृति और परंपरा का अहम हिस्सा रहा है। श्री अमरनाथ यात्रा आज रक्षाबंधन के त्यौहार के साथ संपन्न होगी। 57 दिन तक चलने वाली ये यात्रा इस साल 3 जुलाई को शुरू हुई थी। यात्रा का समापन पवित्र गुफा मंदिर में महंत दीपेंद्र गिरी के नेतृत्व में पवित्र छड़ी मुबारक के पहुंचने के साथ होगा। इस वर्ष पहलगाम और बालटल दोनों रास्तों से 4,80,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने पवित्र गुफा के दर्शन किए। इसके अतिरिक्त जम्मू कश्मीर में सालाना बुद्ध अमरनाथ यात्रा भी आज संपन्न होगी। श्रावण मास में आयोजित होने वाली 12 दिन की इस यात्रा में श्रद्धालु पुंछ जिले में स्थित बाबा बुद्ध अमरनाथ मंदिर जाते हैं। भारत के वेलवन सेंथिल कुमार कल रात स्क्वैश सेमीफाइनल में भारत के ही वीर चोटरानी को हराकर पीएसए बुडापेस्ट स्क्वैश ओपन के फाइनल में पहुंच गए हैं। इससे पहले दोनों भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सेमीफाइनल में जगह बनाई थी। फाइनल में आज रात वेलवन का मुकाबला हंगरी के खिलाड़ी बालाज फारकस से होगा। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ग्रैंड शतरंज टूर जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। उन्होंने कल रात अमेरिका के सेंट लुइस में फाइनल में मौजूदा चैंपियन फेबियानो कारुआनो को 15-13 से हराकर शानदार जीत दर्ज की। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashwani, the news read by Nishit Kumar.
4: India
3: रहा है स्टेप

संगीति का कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे महिमा उपाध्याय के गाए कुछ भजन। हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं।

उम्मीद है कि आज के इस त्योहार की आपने तमाम तैयारी कर ली होगी, लेकिन हाँ फिर भी अगर कुछ बच जाए तो नाराज नहीं होना, क्योंकि आज का दिन नाराजगी का तो बिल्कुल भी नहीं है। साल भर इंतजार रहता है ना आपको, तो फिर आज खूबसूरत तैयार हो जाइए, राखी अपने पर्स में डालिए और अपने भैया की तरफ मुड़ जाइए और देखिए कि आज का दिन कितना खूबसूरत बन पड़ेगा।

चलिए अब मूड को थोड़ा सा चेंज करते हैं, थोड़ा सा बदलते हैं। राखी के मूड से आप थोड़ा सा रोमांटिक मूड में आ जाते हैं। कहते हैं कि इंसान सबसे अच्छा वही होता है जो आपके दिल में बस जाता है, एंड दैट इज फॉर यू। वो आपके लिए बहुत अच्छा है, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो देखने में बहुत अच्छा है, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो कपड़े बहुत अच्छे पहनता है, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो बहुत घूर के बहुत आपको निहारता है। नहीं, इंसान वो इसलिए अच्छा है क्योंकि उसकी बातें आपको अच्छी लगती हैं, उसके लिए कुछ करने का मन करता है, आपका मन करता है कि वो सामने बैठा रहे और बस यूं ही जिंदगी चलती रहे। इसीलिए वो इंसान आपको बहुत बहुत बहुत अच्छा लगता है।

जिंदगी की ये सबसे अच्छी फीलिंग है जब आपको ऐसा लगता है कि आप किसी के बिना जी नहीं सकते। इसलिए नहीं कि आप फिर उदास होकर बैठ जाएं, बल्कि इसलिए कि देयर इज समवन इन द वर्ल्ड, इस संसार में कोई तो है जो आपके बारे में सोचता है, कोई तो है जिसके बारे में आप सोचते हैं, कोई तो है कि जब भी आप अकेले होते हैं ना तो आप अकेले महसूस नहीं करते। बस दिस इज द फीलिंग, और इसी फीलिंग को लेकर आप चलते रहिए, देखिएगा जिंदगी बहुत खूबसूरत लगेगी, आपको हर इंसान बहुत सुंदर लगेगा, और आप कभी अकेले तो होंगे ही नहीं।

तो मेरे गुड मॉर्निंग में आज बस इतना ही। उम्मीद है कि ये खूबसूरत गीत आपको पसंद आए होंगे। तो एक बेहतर दिन की शुरुआत के साथ मैं इस प्रोग्राम को यहीं क्लोज कर रहा हूं और आपके शुभ दिन की शुभकामनाओं के साथ इजाजत दीजिए मुझे नवीन को। 8 बजने को है, अब समाचार प्रसारित किए जाएंगे।

यूपीआई ने बनाया है गांव और कस्बों में पेमेंट को आसान। करीब 60% यूपीआई पेमेंट हो रहे हैं 500 रुपए से नीचे, और हर दो में से एक ग्लोबल डिजिटल पेमेंट हो रहा भारत में।

0: और अब मुख्य समाचार। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 392 हुई, 1468 लोग अब भी लापता। भारत ने नेपाल में फंसे भारतीयों को निकालने के प्रयास तेज किए। विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशी पहल प्रधानमंत्री जनधन योजना के आज 12 वर्ष पूरे। रक्षाबंधन का पर्व देश भर में मनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में वार्षिक अमरनाथ यात्रा आज सम्पन्न होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से अमेरिका की 6 दिन की यात्रा पर। और भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदन ने इतिहास रचा, ग्रैंड शतरंज टूर जीतने वाले पहले भारतीय बने। और अब समाचार विस्तार से। नेपाल तिब्बत में आई विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 392 हो गई है। नेपाल में 389 और तिब्बत में 3 व्यक्तियों की मौत हुई। सीमा के दोनों तरफ 1468 व्यक्ति लापता है।
1: नेपाल के अधिकारियों ने 910 व्यक्तियों के लापता होने की जानकारी दी है। तिब्बत के अधिकारियों ने बताया कि 558 व्यक्तियों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। बचाव कर्मी लोगों की तलाश कर रहे हैं। अभी क्षेत्र में संकट टला नहीं है। भोटो कोशी नदी स्रोत के पास कई झील बन गई हैं। डर यह है कि इनके टूटने से पानी का एक तेज बहाव आ सकता है, इससे आपदा और गंभीर हो सकती है। नेपाल के सुरक्षा कर्मियों ने बाढ़ प्रभावित जिलों से 800 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। इधर भारत ने बड़े पैमाने पर बचाव अभियान शुरू कर दिया है। विदेश मंत्रालय का कहना है कि नेपाल में 290 भारतीयों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में फंसे भारतीयों की स्थिति का पता लगाने के लिए तत्काल प्रयास किए जा रहे हैं। अब तक भारत ने 84 नागरिकों को सुरक्षित निकाल लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री वालेन्द्र शाह के साथ बातचीत की और उन्हें भारत की ओर से पूरी मानवीय सहायता का आश्वासन दिया। समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा।
0: वहीं नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि भारत ने नेपाल में बचाव और राहत अभियानों में सहायता के लिए 47 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी है।
2: जहाज हम लोगों ने सहायता नेपाल को पहुंचाया है। पहला जहाज यहाँ से 10 टन करीबन रिलीफ मटेरियल लेके काठमांडू पहुंचा था, जिसमें कि कंबल, सोलर लैम्प, दवाइयां, हाइजीन किट्स और टेंट वगैरह इस प्रकार की चीजें हैं। दूसरा जहाज इसमें 37.5 टन की सप्लाई, जिसमें कि 28.5 टन रिलीफ आइटम्स और 8 टन दवाइयां और 1 टन खाने पीने की सामग्री और जो भी मानवीय सहायता हो सकता है वो भी हम प्रदान करेंगे।
0: चीन के जल संसाधन मंत्रालय के अनुसार नेपाल में छोचेन खोला और पुरेपु सांगपो नदियों के संगम के पास बनी झील के टूटने का खतरा बढ़ गया है। झील में अगले कुछ दिनों में 30 लाख घन मीटर अतिरिक्त पानी पहुंच सकता है। विदेश मंत्रालय ने बाढ़ के मद्देनजर लोगों की सहायता के लिए नई दिल्ली में 24 घंटे कार्यरत नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। नियंत्रण कक्ष है 9111-2308-8718 और 9111-2308-8719 पर आप संपर्क कर सकते हैं। वहीं काठमांडू में भारतीय दूतावास ने सहायता के लिए नंबर जारी किए हैं। नंबर है 9779851316807 और 9779813261107। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
3: अपडेट रहे, आगे रहे, @AIR न्यूज हिंदी और इंस्टाग्राम पर AIR न्यूज अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये देश में वित्तीय समावेशन के परिदृश्य को बदलने की दिशा में एक प्रमुख पड़ाव है। इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में आज ही के दिन की थी। एक रिपोर्ट।
4: प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत अब तक 59 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं, जिनमें कुल 3,17,000 करोड़ रुपए की जमा राशि है। दुनिया की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन पहल के रूप में यह योजना सभी भारतीयों के लिए बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच को लगातार नए आयाम दे रही है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खोले गए 78% खाते ग्रामीण या अर्ध शहरी क्षेत्रों में है, जबकि लगभग 56% खाताधारक महिलाएं हैं। जनधन खाताधारकों को 41 करोड़ से अधिक रुपए कार्ड जारी किए जा चुके हैं। प्रति खाते औसत जमा राशि 5,356 रुपए है। इस योजना ने

0: लाखों लोगों, विशेष रूप से वंचित वर्गों को बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं तक पहुंच प्रदान करके उनके सामाजिक आर्थिक हालात को बेहतर बनाया है। प्रधानमंत्री जनधन योजना जैसी पहलों के कारण भारत का वित्तीय समावेशन सूचकांक इस साल 67 हो गया है, जो 2018 में 53.9 था। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से 6 दिन की अमेरिका यात्रा पर हैं। अपनी इस यात्रा के दौरान वे शिकागो, एशविले और न्यूयॉर्क जाएंगे। वे शिकागो में प्रमुख निवेशकों के साथ एक गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे और निजी क्षेत्र के अग्रणी सीईओ, अध्यक्षों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। इन बैठकों में भारत में निवेश के अवसर, आर्थिक दृष्टिकोण और भारत और अमरीका के बीच व्यापार और निवेश साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होगी। श्रीलंका के नौसेना कमांडर वाइस एडमिरल डेमियन फर्नांडो भारत के आधिकारिक दौरे पर हैं। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस दौरे का उद्देश्य द्विपक्षीय समुद्री सहयोग को और मजबूत करने के साथ साथ भारत और श्रीलंका के बीच नौसेना संबंधों को आगे बढ़ाना है। वाइस एडमिरल फर्नांडो ने नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन के साथ संयुक्त अभियानों, क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण और समुद्री सुरक्षा सहित द्विपक्षीय समुद्री सहयोग को बढ़ावा देने के उपायों पर चर्चा की। रक्षाबंधन का त्यौहार आज पूरे देश भर में मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष ने इस अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि रक्षाबंधन का त्यौहार प्राचीन काल से ही देश की संस्कृति और परंपरा का अहम हिस्सा रहा है। श्री अमरनाथ यात्रा आज रक्षाबंधन के त्यौहार के साथ सम्पन्न होगी।
2: सत्तावन दिनों तक चलने वाली अमरनाथ यात्रा आज औपचारिक रूप से समाप्त हो जाएगी। इस साल जुलाई 3 को शुरू हुई इस यात्रा के दौरान तकरीबन 4,80,000 यात्रियों ने पवित्र गुफा में शिवलिंगम के दर्शन किए। अगरचे 9 अगस्त को इस यात्रा को मौसम की खराबी की वजह से रोका गया, लेकिन छड़ी मुबारक का सफर परम्परा के अनुसार जारी रहा। इधर आज महंत दीपेंद्र गिरी के नेतृत्व में छड़ी मुबारक पंचतरणी से निकलकर पवित्र गुफा पहुंचाई जाएगी, जहां विशेष पूजा और पारंपरिक रस्मों के बाद इस साल की यात्रा संपन्न हो जाएगी। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं श्रीनगर से इश्फाक शाह।
1: इसके अतिरिक्त जम्मू कश्मीर में सालाना बुद्ध अमरनाथ यात्रा भी आज संपन्न होगी। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में रक्षाबंधन का पर्व आज विशेष धार्मिक परंपराओं के साथ मनाया जा रहा है।
3: श्रावण पूर्णिमा के अवसर पर आज तड़के भस्म आरती के दौरान भगवान महाकाल को करीब 2 फीट की विशेष राखी चढ़ाई गई। ये राखी पुजारी परिवार की महिलाओं ने कई दिनों की मेहनत से तैयार की थी। रेशमी कपड़े और धागों से बनी इस राखी में रुद्राक्ष, मोर पंख, ओम, त्रिनेत्र और त्रिपुंड को शामिल किया गया है। राखी तैयार करते समय महिलाओं ने जय महाकाल और ओम नमः शिवाय का जाप किया। धार्मिक परंपरा के अनुसार भगवान महाकाल को राखी अर्पित करने के बाद ही पुजारी परिवार की महिलाएं अपने भाइयों को राखी बांधती हैं। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: केरल में सबरीमला मंदिर ओणम पूजा के बाद आज रात 10 बजे बंद हो जाएगा। इस वर्ष त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड ने तिरुओणम के दिन मंदिर में ओणम भोज का आयोजन किया। मंदिर 16 तारीख सितंबर को पुनः खुलेगा। आज समाज सुधारक श्री नारायण गुरु की 172वीं जयंती मनाई जा रही है। केरल में सुबह से ही विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। श्री नारायण गुरु की जन्मभूमि चेम्पा छंती में भव्य कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की यात्रा पर कल उज्बेकिस्तान जाएंगे। एक रिपोर्ट।
4: ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उज्बेकिस्तान की चौथी यात्रा होगी। इससे पहले प्रधानमंत्री 2015, 2016 और 2022 में इस मध्य एशियाई देश का दौरा कर चुके हैं। उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव भी 2018 और 2019 में भारत आ चुके हैं। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन केंद्र में मध्य एशियाई अध्ययन के प्रोफेसर राजन कुमार ने आकाशवाणी से खास बातचीत में कहा कि बार बार की गई ये यात्राएं ही दर्शाती हैं कि कि उज्बेकिस्तान भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है।
5: भारत को अगर यूरेशिया में कोऑपरेशन बढ़ाना है तो वैसे में मुझे लगता है कि सेंट्रल एशिया के देश काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं और सेंट्रल एशिया के देश जो है उसमें उज्बेकिस्तान बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि उसकी मिलिट्री सबसे ज्यादा पावरफुल है।
4: इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव व्यापार और निवेश, रक्षा, डिजिटल कनेक्टिविटी, ऊर्जा, शिक्षा और जन सहयोग संबंधी क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा करेंगे और आगे की कार्य योजना तैयार करेंगे। दोनों नेता विकसित भारत 2047 और उज्बेकिस्तान 2030 के साझा विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने पर भी अपने विचार साझा करेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज्बेकिस्तान।
6: समाचार से जुड़े रहिए expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
1: और अब खेल खबरों का रुख कर लेते हैं। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ग्रैंड शतरंज टूर जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। उन्होंने कल रात अमेरिका के सेंट लुइस में फाइनल में मौजूदा चैंपियन फेबियानो कारुआनो को 15-13 से हराकर शानदार जीत दर्ज की। प्रज्ञानंदा ने $200,000 का पहला पुरस्कार जीतकर अगले साल के ग्रैंड शतरंज टूर में अपनी जगह भी पक्की कर ली है। भारत के वेलवन सेंथिल कुमार कल रात स्क्वैश सेमीफाइनल में भारत के ही वीर चोटरानी को हराकर पीएसए बुडापेस्ट स्क्वैश ओपन के फाइनल में पहुंच गए हैं। फाइनल में आज रात वेलवन का मुकाबला हंगरी के खिलाड़ी बाला अजफारकत से होगा। भारतीय महिला हॉकी टीम ने कल जर्मनी को 3-1 से हराकर एफआईएच विश्व कप में पांचवां स्थान हासिल किया। पिछले 52 वर्षों में यह भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। इससे पहले 1994 में हुए पहले माफ कीजिएगा इससे पहले 1994 में हुए पहले विश्व कप में टीम चौथे स्थान पर रही थी। इस प्रदर्शन से अगले महीने जापान में होने वाले एशियाई खेलों से पहले टीम का आत्मविश्वास चरम पर है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है मुकेश कुमार बल।
7: धन्यवाद फरहत। नेपाल में आए भीषण सैलाब की तस्वीरें सभी समाचार पत्रों ने सचित्र दी हैं। अमर उजाला लिखता है नई झील से फिर सैलाब का खतरा, बिहार और उत्तर प्रदेश में अलर्ट। दैनिक भास्कर के शब्द हैं 290 भारतीयों का अब तक सुराग नहीं, समय के साथ उम्मीदें भी घटती जा रही। हिंदुस्तान की सुर्खी है तिब्बत से फिर आ सकती है तबाही, नियंत्रण कक्ष स्थापित। नहीं थम रहा स्वाइन फ्लू, 24 घंटे में 166 नए मामले। नवभारत टाइम्स की खबर है। पत्र लिखता है बिना डॉक्टर की सलाह ना लें कोई दवा। खेलो इंडिया संवाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिया गया संदेश जनसत्ता ने सचित्र दिया है। पत्र लिखता है प्रधानमंत्री ने जताई चिंता, कहा 2036 ओलंपिक खेलों के लिए आज से ही तैयारी करें खिलाड़ी। आईपीओ में लौटी तेजी, नए शेयरों का एक साल में 18% रिटर्न पर निफ्टी 7% टूटा। दैनिक भास्कर के बिजनेस पन्ने की खबर है। मिलते नजर आने लगे चीनी के दाम, खुदरा बाजार में भाव करीब 63 रूपये प्रति किलो, लोक सत्ते की सुर्खी है। ब्रेन सर्जरी में पहला एआई सफल उपयोग, ट्यूमर निकालकर बचा ली आंखों की रोशनी, राजस्थान पत्रिका की खबर है।
1: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 392 हुई, 1468 लोग अब भी लापता। भारत ने नेपाल में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए प्रयास तेज किए। विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशी पहल प्रधानमंत्री जनधन योजना के आज 12 वर्ष पूरे। रक्षाबंधन का पर्व देश भर में मनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में वार्षिक अमरनाथ यात्रा आज सम्पन्न होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से अमरीका की 6 दिन की यात्रा पर। और भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने इतिहास रचा, ग्रैंड मास्टर शतरंज टूर जीतने वाले पहले भारतीय बने। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: रक्षाबंधन का त्यौहार आज उज्जैन के आलमी शोहरत याफ्ता महाकालेश्वर मंदिर में खुसूसी मजहबी रिवायात के साथ मनाया जा रहा है। भस्म आरती के दौरान भगवान महाकाल को खुसूसी तौर पर तैयार करता राखी पेश की गई। जम्मू कश्मीर में सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा आज पवित्र गुफा के मुकदस मकाम पर रिवायती छड़ी मुबारक की तकरीब के साथ बाजाब्ता तौर पर इख्तिताम पजीर हो गई। तफसील हमारे नामा निकार से।
1: 3 जुलाई को शुरू हुई श्री अमरनाथ जी यात्रा 57 रोज तक पहलगाम और बालतल के रास्तों से जारी रहने के बाद आज इख्तिताम पजीर हो रही है। इस बार 4,80,000 से ज्यादा यात्रियों ने पवित्र गुफा पर हाजिरी देकर शिवलिंगम के दर्शन किए। अगस्त 9 अगस्त को मौसम खराब होने के बाद यात्रा मुअत्तल की गई थी, ताहम छड़ी मुबारक को रिवायत के मुताबिक गुफा तक ले जाया जा रहा है। छड़ी मुबारक महान दीपेंद्र गिरी की सरबराही में कल पंचतरणी पहुंचाई गई और आज इसको गुफा तक ले जाया जा रहा है, जहां खुसूसी पूजा सभा का इनेकाद होगा। छड़ी मुबारक की रिवायती तकरीब के साथ ही इस बरस की सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा आज इख्तिताम पजीर होगी। खबरों के लिए मैं श्रीनगर से इशफाक शाह।
0: केरलम का सबरीमला मंदिर ओणम पूजा के बाद आज रात 10 बजे बंद कर दिया जाएगा। ओणम के दौरान मंदिर में अकीदतमंदों की बड़ी तादाद की आमद देखी गई। इस साल तिरुओणम दिन के मौके पर ट्रेवनकोर देवास्वम बोर्ड ने सीधे ओणम सियाफत का इनेकाद किया। सबरीमला मंदिर माहाना पूजा के लिए अब 16 सितंबर को शाम 5 बजे दोबारा खुलेगा। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने ग्रैंड चेस टूर जीतकर तारीख रकम की है। वो ये मुकाबला जीतने वाले पहले भारतीय शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं। आर प्रज्ञानंदा ने कल रात अमरीका के सेंट लुई में खेले गए फाइनल में दुबई चैंपियन फाबियानो कारुआना को

0: 2013 से शिकस्त देकर जबरदस्त वापसी की। प्रज्ञानंदा ने आखिरी दिन कारुवाना से 6 पॉइंट्स पीछे शुरुआत की, लेकिन बाद में उन्होंने दोनों रैपिड गेम्स जीतकर शतक हासिल कर ली। इसके बाद उन्होंने मुकाबले पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली और फोर ब्लिट्स गेम्स को 15-13 से जीत लिया। इस तरह वो $2,00,000 का पहला इनाम और अगले साल के ग्रैंड चेस टूर में जगह बनाने में कामयाब रहे। भारत के वेलावन सेंथिल कुमार कल रात सेमीफाइनल में अपने हमवतन खिलाड़ी वीर चोटरानी को एक बेहद दिलचस्प मुकाबले में 3-2 से शिकस्त देकर पीएसए बुडापेस्ट स्क्वॉश ओपन के फाइनल में पहुंच गए। दोनों भारतीय खिलाड़ी शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा करते हुए सेमीफाइनल में पहुंचे थे। चोटरानी ने मिस्र के मोहम्मद एल शेरबीनी को 3-1 से शिकस्त दी थी, जबकि वेलावन ने मलेशिया के आइन याओ को एकतरफा मुकाबले में 3-0 से हराया था। भारत की खवातीन हॉकी टीम ने कल नेदरलैंड्स में एम्स्टर्डम में 5वें मकाम के लिए खेले गए मैच में जर्मनी को 3-1 से तारीखी शिकस्त दी। इस जीत के साथ ही एफआईएच आलमी कप में भारत की मुहिम इख्तिताम पजीर हो गई। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं जमीर रजवी।
1: शुक्रिया नितिका। कौमी राजधानी दिल्ली से आज शाये होने वाले ज्यादातर उर्दू अखबारात ने नेपाल में सैलाब से होने वाली तबाही से मुतालिक खबर को अपनी शहसुर्खी बनाया है। रोजनामा इनकलाब की इस हवाले से शहसुर्खी है कि हलाकतों की तादाद 300 से तजावज कर गई, 1500 से ज्यादा अफराद अब भी लापता, सैकड़ों गैर मुल्की सयाहों से रब्ता मुनकता, 250 से ज्यादा अफराद को बचा लिया गया। रोजनामा प्रताप ने सुर्खी लगाई है कि इसरो ने जारी की नेपाल में आए तबाहकुन सैलाब से मुतालिक तस्वीर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के उज़्बेकिस्तान और किर्गिस्तान से मुतालिक आइंदा दौरे की खबर को अखबारात ने अहमियत के साथ शाये किया है। रोजनामा इनकलाब ने सुर्खी लगाई है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का 4 रोजा गैर मुल्की दौरा कल से। रोजनामा प्रताप ने इस खबर को अव्वलियत के साथ शाये किया है कि वज़ीर-ए-आज़म ने भारत से ओलंपिक 2036 खेलों की तैयारियां अभी से शुरू करने पर जोर दिया है।
0: और अब आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। नेपाल और तिब्बत के अचानक आने वाले तबाहकुन सैलाब में हलाकतों की तादाद बढ़कर 392 हो गई है, जबकि सरहद के दोनों जानब 1468 अफराद अब भी लापता हैं। मरकज ने नेपाल में फंसे हुए भारतीय शहरियों को वापस लाने की कोशिशें तेज कर दी हैं। दुनिया के सबसे बड़े माली शमूलियत के प्रोग्राम प्रधानमंत्री जनधन योजना को आज 12 साल मुकम्मल हो गए हैं। मुल्क भर में आज रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जा रहा है। 57 रोजा सालाना अमरनाथ यात्रा जम्मू कश्मीर में इख्तिताम पजीर होगी। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन आज से अमरीका का 6 रोजा दौरा करेंगी और भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने तारीख साज कारनामा अंजाम दिया है। वो ग्रैंड चेस टूर जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।
2: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ पर प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर गंगा। इसमें आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं राग कोमल ऋषभ असावरी में ध्रुपद गायन, कलाकार हैं ममता त्रिपाठी।

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वर गंगा में अभी आप सुन रहे थे ममता त्रिपाठी से गायन। आज आपने सुना राग कोमल ऋषभ असावरी में ध्रुपद गायन। हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए अब सुनते हैं गांधी चर्चा।
1: ये आकाशवाणी का दिल्ली केंद्र है। प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम गांधी चर्चा।

0: गांधी चर्चा कार्यक्रम के इस अंक में आज की वार्ता का विषय है महात्मा गांधी द्वारा स्थापित आश्रम और वहां की जीवन शैली। वार्ताकार हर्षिता विश्वास।
1: आज हम बात करेंगे उस व्यक्तित्व की जिसने सत्य और अहिंसा को केवल अपने जीवन का हिस्सा नहीं बनाया बल्कि इन्हें एक सामाजिक और राजनीतिक शक्ति में बदल दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की। जब हम महात्मा गांधी का नाम सुनते हैं तो हमारे मन में सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह, स्वदेशी और स्वतंत्रता आंदोलन जैसे शब्द उभर आते हैं। लेकिन गांधी जी के विचारों को समझने के लिए केवल उनके आंदोलन को जानना पर्याप्त नहीं है,

0: गांधी जी के विचारों का वास्तविक प्रयोग जहां हुआ वह था उनका आश्रम जीवन। महात्मा गांधी ने अपने सामाजिक जीवन की शुरुआत दक्षिण अफ्रीका से की। वहां पर उन्होंने दो आश्रम स्थापित किए जिनका नाम था फिनिक्स आश्रम और टॉलस्टॉय फार्म। गांधी जी के लिए आश्रम केवल रहने की जगह नहीं थी, वह एक प्रयोगशाला थी जहां वे ये देखना चाहते थे कि क्या सत्य, अहिंसा, आत्मसंयम, समानता और श्रम और सेवा जैसे सिद्धांतों पर आधारित जीवन वास्तव में जिया जा सकता है। और इसी कारण गांधी जी के आश्रमों को समझना गांधी जी को समझने का एक महत्वपूर्ण रास्ता है। गांधी जी का आश्रम जीवन भारत से नहीं बल्कि दक्षिण अफ्रीका से शुरू हुआ था। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे, वहाँ उन्होंने भारतीयों के साथ होने वाले नस्लीय भेदभाव और अन्याय को करीब से देखा। इसी संघर्ष के दौरान उन्होंने सत्याग्रह और अहिंसा के प्रयोगों को विकसित किया। 1904 में उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के नटाल क्षेत्र में फिनिक्स सेटलमेंट आश्रम की स्थापना की। फिनिक्स में रहने वाले लोगों से अपेक्षा की जाती थी कि वे सामूहिक जीवन जिए, श्रम करे और एक दूसरे की सहायता करे। इसके बाद 1910 में जॉन्सबर्ग के पास टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना हुई। टॉलस्टॉय फार्म में गांधी जी के समर्थक हनुमान कैलान बाग ने गांधी जी और लगभग 70 से 80 लोगों को रहने के लिए स्थान उपलब्ध कराया। यह भी एक महत्वपूर्ण बात थी, कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। खाना बनाना हो, सफाई करना हो, खेती करना हो या शौचालय साफ करना हो, आश्रमवासी स्वयं काम करते थे। यही गांधी जी की जीवन शैली का एक महत्वपूर्ण संदेश था। श्रम से सम्मान मिलता है और श्रम में कोई ऊंच नीच नहीं होती। भारत लौटने के बाद उन्होंने दो आश्रम स्थापित किए, साबरमती आश्रम और सेवाग्राम आश्रम। 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। 25 मई 1915 को उन्होंने अहमदाबाद के कोचरम में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की। लेकिन जैसे जैसे आश्रम की गतिविधियां बढ़ी, खेती, पशुपालन, खादी और अन्य कार्यों के लिए अधिक जगह की आवश्यकता महसूस हुई, इसलिए 1917 में आश्रम को साबरमती नदी के किनारे स्थानांतरित किया गया। यह आश्रम आगे चल के प्रसिद्ध हुआ साबरमती आश्रम के नाम से। अब सवाल यह है कि आखिर गांधी जी के आश्रम में जीवन कैसा होता था? गांधी जी का आश्रम किसी सामान्य हॉस्टल या निवास स्थान की तरह नहीं था। यहाँ रहने वाले लोगों को कुछ निश्चित सिद्धांतों का पालन करना पड़ता था। सुबह जल्दी उठना, प्रार्थना करना, अपने दैनिक काम स्वयं करना, सामूहिक श्रम करना, सादा भोजन करना, चरखा चलाना, पढ़ना लिखना और समाज सेवा करना, यह आश्रम के जीवन का हिस्सा था। गांधी जी का मानना था कि अगर व्यक्ति अपने छोटे छोटे कामों के लिए भी दूसरों पर निर्भर रहेगा तो वह वास्तविक अर्थों में आत्मनिर्भर नहीं बन सकता। इसलिए आश्रम में रहने वाले व्यक्ति अपने कपड़े धोने से लेकर सफाई तक का काम स्वयं करते थे। यहाँ तक कि शौचालय की सफाई भी आश्रमवासी स्वयं करते थे। गांधी जी स्वयं भी इसमें पीछे नहीं रहते थे। उनका संदेश बिल्कुल स्पष्ट था, जिस काम को हम छोटा समझते हैं वही काम समाज में किसी दूसरे व्यक्ति से करवाना सामाजिक असमानता को जन्म देता है। आश्रम के प्रमुख नियम। गांधी जी ने आश्रम जीवन के लिए कई नियम निर्धारित किए थे। इनमें सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, स्वार्थ पर नियंत्रण जैसे नियम शामिल थे। भारत में गांधी जी ने शारीरिक श्रम को भी आश्रम के जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया। आश्रम में रहने वालों से अपेक्षा थी कि वह अपने शरीर और मन दोनों पर नियंत्रण रखे। भोजन केवल स्वाद के लिए नहीं बल्कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए किया जाए, इसलिए आश्रम का भोजन सादा होता था। मसालेदार और विलासितापूर्ण भोजन से बचने की कोशिश की जाती थी। गांधी जी मानते थे इंद्रियों पर नियंत्रण व्यक्ति को आत्मसंयम की ओर ले जाता है। स्वदेशी और चरखा। आश्रम के जीवन में चरखे का भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। गांधी जी के लिए चरखा केवल धागा बनाने का साधन नहीं था, चरखा था आत्मनिर्भरता का प्रतीक। उस समय भारत विदेशी कपड़ों पर निर्भर था। गांधी जी चाहते थे भारतीय स्वयं कपड़ा बनाएं और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करें। सेवाग्राम आश्रम, सेवा का गांव। गांधी जी के जीवन का अगला महत्वपूर्ण पड़ाव था सेवाग्राम। और 1930 में गांधी जी ने भारत के अलग अलग हिस्सों में यात्रा की और बाद में मध्य भारत में अपना मुख्यालय बनाने का निर्णय लिया। 1934 में वह वर्धा पहुंचे। फिर 1936 में उन्होंने वर्धा के पास सेवागांव नामक गांव में अपना निवास बनाया। बाद में इसका नाम रखा गया सेवाग्राम, यानी सेवा का गांव। यहाँ गांधी जी लगभग अपने जीवन के अंतिम वर्षों तक रहे। सेवाग्राम का वातावरण साबरमती की तुलना में और भी ग्रामीण था। यहाँ गांधी जी का जीवन गांव के सामान्य लोगों के और भी करीब था। छोटे छोटे घर, मिट्टी का वातावरण, सादगी, चरखा, प्रार्थना और सामुदायिक श्रम, यह सब सेवाग्राम की पहचान बन गया। देश से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श और निर्णयों का केंद्र भी सेवाग्राम बना। चार आश्रम एक ही विचार। अगर गांधी जी के आश्रमों को एक साथ देखें, तो हमारे सामने चार महत्वपूर्ण पड़ाव आते हैं। फिनिक्स सेटलमेंट 1904, दक्षिण अफ्रीका टॉलस्टॉय फार्म 1910, दक्षिण अफ्रीका साबरमती आश्रम 1915 में कोचरब से शुरू होकर 1917 में साबरमती पहुंचा और सेवाग्राम आश्रम 1936 वर्धा। स्थान अलग थे, परिस्थितियां अलग थी, लेकिन उद्देश्य एक था, सत्य, अहिंसा, आत्मनिर्भरता, श्रम और सेवा पर आधारित जीवन। आश्रम केवल भवन नहीं था, गांधी जी के लिए आश्रम का अर्थ चार दीवारें नहीं थी, आश्रम एक विचार था, एक ऐसा विचार जहां व्यक्ति पहले स्वयं को बदलने का प्रयास करे और समाज को बदलने की दिशा में आगे बढ़े। गांधी जी मानते थे कि अगर हम समाज में समानता चाहते हैं तो शुरुआत अपने घर से करनी होगी। अगर हम स्वच्छ भारत चाहते हैं तो स्वयं सफाई करनी होगी। अगर हम आत्मनिर्भर भारत चाहते हैं तो अपने हाथों से काम करना होगा। अगर हम अहिंसक समाज चाहते हैं तो हमें अपने व्यवहार में अहिंसा अपनानी होगी। और अगर हम सत्य की बात करते हैं तो हमें कठिन परिस्थिति में भी सत्य का साथ देना होगा। यही गांधी जी के आश्रम का सबसे बड़ा संदेश था।
1: गांधी चर्चा कार्यक्रम के इस अंक में अभी आप सुन रहे थे ये वार्ता, जिसका विषय था महात्मा गांधी द्वारा स्थापित आश्रम और वहाँ की जीवन शैली। वार्ताकार हर्षिता विश्वास।

इसी के साथ गांधी चर्चा कार्यक्रम का यह अंक अब संपन्न होता है। प्रस्तुति सहयोग श्रीनाथ दीक्षित और प्रस्तुतकर्ता थे वी के तोमर।

आप सुनेंगे रक्षाबंधन के हवाले से एक फीचर बंधन कच्चे धागों का। दिन में 12 बजे खबरें नशर की जाएंगी और 12:10 से सुनिएगा प्रोग्राम मिले सुर मेरा तुम्हारा। दौरान प्रोग्राम 12:30 पर तारीख साज प्रोग्राम होगा। 12:45 पर प्रोग्राम होगा सुर्खियों में। आलमी खबरें दिन में 1 बजे नशर की जाएंगी और 1:15 पर आज की पहली मजलिस खत्म हो जाएगी। ये थी एक नजर इस मजलिस में नष्ट होने वाले प्रोग्रामों पर।

سلوکاتے ہیں سلاطین جہاں قدموں پر،

दर्द वक्त भी कतरा के गुजर जाती है, गर्दिश वक्त भी कतरा के गुजर जाती है, जब से हाँ

आयो ही पूछो इस तरह में आज मदीने में आ गया कुछ।

عرش مدینہ خود میرے سینے میں آ گیا، جیسے مدینہ خود میرے

مدینے میں آ گیا، طوفان سے نکل کے مدینے میں آ گیا، طوفان سے نکل کے

बेख्तियार था दीवाना सहने चाँद में।

मुर्दा से दफन था जो गुनाहों की खाक में, मुर्दा से दफन

0: इतिहास देखे और जब जब जो जो इतिहास ने जब जब करवट ली है वह किसी न किसी रूप में कहीं न कहीं किसी भी कोने पर एक सांस्कृतिक छाप छोड़ी है। आप महाभारत कालीन देखिए, रामायण कालीन देखिए, बौद्ध के समय के देखिए, आप वैदिक काल के समय के देखिए, तो जितनी हमारी साइट है, जितनी हमारी सभ्यताएं हैं वो सब धीरे धीरे निकल रही है। तो जो अभी तक 45 साइट तो हो चुकी है, निकल चुकी है, लेकिन इसके अलावा न जाने कितनी है जिन पर अभी ध्यान नहीं गया है या जिनकी शुरुआती तौर पर अभी खनन चल रहा है। जब ये खनन हर जगह धीरे धीरे जब ये सरफेस पर आएंगी तो फिर इन साइटों की संख्या बढ़ेगी। मुझे लगता है कि इटली तो बहुत छोटा एक देश है
1: जी,
0: न जाने हमारे देश में कितनी ज्यादा साइट है जो अभी फोकस नहीं आई है। अभी जो हमारा आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो भी कोशिश कर रहा है कि जो छोटी छोटी साइट है अगर उनका हम उत्खनन सही करें और उनके बारे में अगर इतिहास में सही हमें जानकारी मिल जाए तो वो फिर दावा करेंगे, फिर यूनेस्को में फिर हमारी लिस्ट जाएगी और ये संख्या मुझे लगता है कि बढ़ते ही जाएगी। अभी तो 45 हुई है, ये और ज्यादा बढ़ने वाली है।
1: अभी आप जो दावा करने की बात कर रहे हैं, मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित कराना चाहता हूँ कि सारनाथ की यूनेस्को मान्यता की प्रक्रिया 1998 की अस्थायी सूची से शुरू हुई थी और जो 2026 में जाकर पूरी हुई है। ऑलमोस्ट 3 दशकों की ये यात्रा रही है, तो क्या यूनेस्को की प्रक्रिया इतनी जटिल है या इतनी लंबी है कि किसी भी स्थल की वास्तविक ऐतिहासिक और सार्वभौमिक महत्ता को प्रमाणित करने में समय लगता है?
0: मुझे लगता है कि ये तकनीकी है, क्योंकि 1998 में अस्थायी मान्यता तो मिल गई थी लेकिन उसके बाद जब उनकी टीमें आती है, क्योंकि ये 196 देशों का संगठन है और उसका कोरम भी होना जरूरी है, तो 196 देशों को तैयार करना, उनको मनाना, उनके सामने ऐसे प्रमाण देना, फिर वहां से टीमें आती हैं, जब टीम आती है उसके बाद वो अपने सर्वे करते हैं और सर्वे करने के बाद उनको तसल्ली हो जाती है कि हाँ ऐसी साइट और कहीं नहीं है और इससे बेहतरीन नहीं है
1: जी।
0: तब वो उसको मान्यता देते हैं और मान्यता के देने के साथ फिर एक जिम्मेदारी भी हो जाती है कि जिस देश में ये यूनेस्को ने मान्यता दी है उस साइट का स्टैंडर्ड कैसा होना चाहिए, वहां एमिनिटीज कैसी होनी चाहिए और जब वहां पर्यटक आए तो पर्यटकों के लिए सुविधा कैसी होनी चाहिए, इन सब चीजों को ध्यान में रखा जाता है। फिर सरकार को, केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो वहां की म्युनिसिपैलिटी, उसका भी एक रोल जाता है कि हम उस साइट को इतना सुंदर बना दें कि जब भी कोई आए तो ये कहे हाँ ये यूनेस्को साइट है, तो यूनेस्को के स्तर की होनी चाहिए।
1: रोशन जी, यूनेस्को के मानदंडों में सारनाथ के आध्यात्मिक महत्व के साथ साथ भगवान बुद्ध के जीवन की घटनाओं से उसके प्रत्यक्ष संबंध को भी महत्वपूर्ण माना गया है, तो भारत की अपनी ये जो विरासत है दुनिया के सामने रख रहा है भारत, धार्मिक दृष्टिकोण से नहीं बल्कि दर्शन की बात करते हैं, इतिहास की बात करते हैं, कला की बात करते हैं, मानव सभ्यता की भी बात करते हैं, भगवान बुद्ध की जितनी भी शिक्षाएं रही हो उन्होंने जो भी अपने जीवन काल में लोगों को उपदेश दिए जब वो सामान्य जन तक पहुंचाते हैं, तो भारत की अगर भूमिका की मैं बात करूं आपसे, किस तरह से भारत इस भूमिका को निभा रहा है?
0: देखिए, जो भारत के पारंपरिक तौर पर हम देखें तो हम अहिंसा के पुजारी हैं, अहिंसा के साथ साथ हम सबका सम्मान करते हैं, हम कहते हैं कि जो भी हमारे देश में किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय, किसी भी वर्ग का व्यक्ति रहे हम सब समान है। और वही भगवान बुद्ध ने यही हमें सिखाया, उनका जो पहला उपदेश था कि जो दुख है, दुखों के बारे में उन्होंने 4 उन्होंने उपदेश दिए थे और वह अगर कोई उन 4 उपदेशों को मान ले, दुख को मान ले, तो मुझे लगता कि आधे दुख तो वैसे दूर हो जाएंगे। उसके बाद उन्होंने सम्यक की बात की, 8 सम्यक में उन्होंने कहा, तो अगर आप 8 सम्यक को एडॉप्ट कर लेते हैं, उनको आत्मसात कर लेते हैं, तो आपके दुख तो सारे दूर हो जाते हैं। तो वही चीज, वही हैं, हम उन्हीं उपदेशों को लेकर हम अपने जीवन में हमने आत्मसात कर लिया है और जो भगवान बौद्ध को मानते हैं, जो बौद्ध देश है, वो तो इस बात को एडॉप्ट करते हैं, लेकिन हम इसको प्रचार करने की जरूरत है कि पश्चिमी देशों में, क्योंकि पश्चिमी देश अभी भी ऐसे हैं जो कि उपभोक्तावादी हैं और वो भगवान बुद्ध के जो उपदेश दिए गए हैं उन पर ध्यान नहीं देते। तो अब हमारा, भारत की बड़ी जिम्मेदारी, क्योंकि बौद्ध धर्म भारत से शुरुआत हुआ, लेकिन जो बड़े देश हैं, चीन है, जापान है, मलेशिया, वियतनाम, थाईलैंड, कंबोडिया, इनकी ज्यादा जिम्मेदारी हो जाती है क्योंकि यहाँ बौद्ध धर्म मानने वाले लोग हैं, वो ज्यादा, उनकी संख्या ज्यादा है, तो वो भगवान बुद्ध के उपदेशों को लेकर पश्चिम तक जरूर जाएं।
1: रोशन जी, सारनाथ से पहले लुम्बिनी बोध गया भी यूनेस्को की सूची में शामिल हो चुके हैं, ये ऐसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है जो लोगों के लिए बड़े मायने रखते हैं, लोग यहाँ पर आना पसंद करते हैं, तो इन स्थलों को जोड़ करके क्या एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सर्किट विकसित करने की आवश्यकता है जो धार्मिक पर्यटन के साथ साथ भारत की सांस्कृतिक कूटनीति को भी एक नई दिशा दे?
0: देखिए, भारत सरकार इसमें इस तरफ काम कर रही है, बौद्ध सर्किट के लिए अभी भी है लेकिन इसको और ज्यादा करने की जरूरत है। जो नेपाल में लुम्बिनी और उसके बाद बिहार में बौद्ध गया और कुशीनगर उत्तर प्रदेश में है और सारनाथ में उत्तर प्रदेश, कुशीनगर और जो सारनाथ है वो लगभग आसपास है, तो यहाँ बौद्ध सर्किट बनाने की बात है और चल भी रही है। जिस तरह से कि भारत सरकार ने रामायण सर्किट बनाया कि नेपाल से लेकर और भगवान राम के जहां जहां उनके कदम पड़े वहां वहां तक, तो रामायण सर्किट है, तो उसी तरह से बौद्ध सर्किट भी है। मुझे लगता है कि इस पर अगर और फोकस किया जाए, अब तो और भी हमारी जरूरत हो गई है, क्योंकि अब सारनाथ को जब यूनेस्को ने अपने सूची में शामिल कर लिया है तो हमारी जिम्मेदारी और हो जाती है ताकि जो दुनिया का धार्मिक

0: पर्यटन है, वो पर्यटक और हमारे देश में आए और भगवान बुद्ध के उपदेश सीखे। और पर्यटन का जब लाभ होता है तो आर्थिक तौर पर भी लाभ होता है, तो मुझे लगता है कि हमारी जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ गई है इससे।
1: अब हम सरकार के प्रयासों की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर इस बात का जिक्र करना जरूरी हो जाता है कि सरकार ने ज्ञान भारतम मिशन के तहत पांडुलिपियों के संरक्षण और डिजिटलीकरण पर बड़ा जोर दिया है। श्रोताओं की जानकारी के लिए हम ये बता दें कि मार्च 2026 तक 1,19,00,000 से अधिक पांडुलिपियों की सूचना मिलने की बात कही गई है। तो ये जो डिजिटल संरक्षण किया जा रहा है, इससे आप कितना इम्पोर्टेंट मानते हैं आने वाली पीढ़ियों के लिए, हमारी जो ज्ञान की परंपरा है उन तक पहुंचाने के लिए, या फिर जो मूल उनकी जानकारी थी, मूल जो सूचनाएं थी, मूल आदर्श हो या जो भी महत्वपूर्ण बातें रही उन तक पहुंचाने के लिए?
0: देखिए, जितनी हमारी सभ्यताएं मिली उनमें सबसे बड़ी दिक्कत थी कि उनकी भाषा, उनकी जो लिपि थी उनको पहचानना। तो लिपि को पहचानने में कई साल लगे और अभी भी हमने पूरी तरह से लिपियों को नहीं हम ढूंढ पाए। बौद्ध धर्म की जो लिपि है पाली, पाली को भी पूरी तरह से नहीं उसका हम खोज पाए हैं, लेकिन अभी तक जितना खोज पाए हैं उसके अनुसार से वो उपदेश आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन ये पांडुलिपि जहां जहां मिल रहे हैं और जहां जहां मिलेंगे, मुझे लगता है कि केवल ये जानकारी ही नहीं है, जो हमारा वर्तमान है और जो भविष्य की नीतियां बनेगी वो भी उस आधार पर बननी चाहिए, जो हमारी पीढ़ियां हैं, जो वर्तमान पीढ़ी है और हमारी आने वाली पीढ़ी है, वो हमारे जो पुरातन है उससे सीखें। और इसलिए उन पांडुलिपियों के लिए सरकार ने ये मिशन चलाया है कि जो लिपियां जहां मिले उनको कैसे संरक्षित किया जाए, उनका डिजिटलीकरण किया जाए और सबसे पहले कि उसका दस्तावेज बनाया जाए।
1: रोशन जी, एडॉप्ट हेरिटेज 2.0 के तहत निजी क्षेत्र, CSR और अन्य संस्थाओं को विरासत संरक्षण से जोड़ा जा रहा है, तो एक ये महत्वपूर्ण पहल कही जा सकती है। आपके विचार में क्या निजी भागीदारी से स्मारकों की सुविधाएं और प्रबंधन बेहतर हो सकता है, या फिर इसमें चीजों को और बढ़ावा देने की जरूरत है?
0: मुझे लगता है कि आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का ये बहुत ही अच्छा कदम है और आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट कहता है कि जो भी CSR के तहत या कोई NGO अगर आना चाहता है तो हमारी जो आर्कियोलॉजिकल साइट है इन स्मारकों के आसपास आप साफ सफाई कर सकते हैं, आप यहाँ टॉयलेट बना सकते हैं, आप यहाँ सौंदर्यकरण कर सकते हैं, उनके जो पार्क है उनको मेंटेन कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम सारा काम सरकार के ऊपर छोड़ देंगे तो इतना पैसा, इतना धन कहाँ से आएगा? तो इसलिए निजी क्षेत्र को इसमें शामिल किया गया है और उनके पास चूंकि CSR का पैसा होता है तो उसका अपना एक खर्चा वो वहां डालें और जो हमारी साइट है वो सुंदर भी बनेंगे और जो हमारे पर्यटक आ रहे हैं पर्यटकों को भी सुविधा मिलेगी। तो ये बहुत अच्छा कदम है और इसमें और लोगों को शामिल करने की जरूरत है।
1: व्यक्ति विशेष, कोई भी व्यक्ति या कोई भी संस्था, कोई भी स्कूल या कॉलेज या कोई भी इस तरह का संस्थान, वहां पर जाकर बात कर सकते हैं कि हम इसमें कुछ मदद कर सकते हैं, बल्कि यहाँ पर हम ये करना चाहते हैं। सौंदर्यीकरण एक अच्छा कार्य होता है, मैंने देखा है कि बहुत सारे कॉलेजेस इस काम को प्रमोट करते हैं।
0: हमारे पास NCC है, हमारे पास NSS है, इसके तहत भी हो सकता है। वैसे भी आप जाते हैं आसपास शहरों में या कहीं गांव में आकर सफाई करते हैं तो उनकी जिम्मेदारी अगर किसी इमारत, जो स्मारक है उस स्मारक को साफ सुथरा करने में अगर किया जाए तो मुझे लगता है कि वो भी एक नवाचार होगा। तो जो बिजनेसमैन है वो अपना पैसा लगा सकता है, कंपनियां हैं वो अपना पैसा लगा सकती हैं, और जो इंडिविजुअल है, कोई व्यक्ति है, आपने देखा बहुत सारे लोगों का स्वभाव होता है वो सुबह सुबह जाके सफाई करते हैं,
1: जी जी,
0: उन्होंने कचरा देखा उसको उठा लिया। तो ऐसे लोगों के ग्रुप होते हैं जो RWA है, उनको भी शामिल करना चाहिए। मुझे लगता है कि फिर गवर्नमेंट का जो सारा बर्डन, जो सारा बोझ सरकार के ऊपर पड़ता है वो कम से कम बढ़ जाएगा।
1: रोशन जी, 2014 के बाद की मैं बात कर रहा हूँ तो भारत लगभग कुल 669 पुरावशेष वापस ला चुका है। तो ये भी माना जाता है कि जो चीजें भारत से बाहर चली गई, जिन्हें चोरी किया गया या फिर किसी और तरीके से ले जाया गया, उन्हें अब वापस लाया जा रहा है। तो ये भारत की सांस्कृतिक संप्रभुता और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी विरासत के दावे को मजबूत करने की एक कूटनीतिक उपलब्धि है। तो सरकार के इन प्रयासों को आप क्या कहेंगे?
0: देखिए, जो कि हमारी विरासत बहुत ही समृद्ध है और इस विरासत में हमने देखा है कि हम, जब हमारा देश सोने की चिड़िया कहा जाता था तो विदेशों से आके बहुत सारे लोगों ने यहाँ की मूर्तियां हैं, यहाँ की जो विरासत है उसकी चोरी की या उसको ले गए। तो भारत सरकार ने जब कोशिश की कि कैसे अपनी विरासत को वापस लाया जाए, और अभी जैसे आपने बताया कि करीब 650 से ज्यादा हम ला चुके हैं, तो दो तरह से, एक तो हम अपनी सभ्यता को, अपनी विरासत को वापस लाने में सफल हुए और दूसरा हमारा कूटनीतिक प्रयास भी तो है कि भारत सरकार ने दूसरी सरकार से जिस देश में वो है वहां से संपर्क किया, दोनों के बीच एक संपर्क जब स्थापित हुआ और वो माने और उन्होंने दिया। क्योंकि बहुत सारे देशों ने ऐसे भी हो सकते हैं जो कहें कि हम नहीं देंगे, क्योंकि वो ऐसी चीजें हैं जो 3,000 साल पुराने, 4,000 साल पुराने, 1,000 साल पुरानी चीजें हैं, मूर्तियां हैं, तो उनका एक अपना महत्व है। तो उस महत्व का अगर हम वापस अपने देश लेके आ रहे हैं तो हम अपने जो हमारे पीढ़ियां हैं, नई नई पीढ़ियां, उनको भी समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं कि ये चीजें हमारी विरासत इतनी समृद्ध थी।
1: रोशन जी, एक अंतिम प्रश्न आपसे मैं पूछना चाहूंगा और इसका उत्तर आप बड़ा संक्षेप में मुझे दें कि भारत में बौद्ध विरासत के जो पवित्र अवशेष हैं ये विभिन्न देशों में ले जाकर के वहां लोगों को दर्शन के लिए उपलब्ध कराए हैं, ये एक बड़ी अच्छी मुझे पहल लगती है, आप इस पर क्या कहेंगे?
0: देखिए, मुझे लगता है कि अगर आपने धर्म का प्रचार करना है, अपने भगवान बुद्ध के उपदेशों का प्रचार

0: मैं तो आप में भगवान बुद्ध से जुड़े हुए अवशेष, उनको लेकर आपको जाना पड़ेगा, तभी तो लोग समझेंगे इसमें ये क्या चीज है, कौन है, उनके बारे में सीखेंगे और तब उस धर्म का प्रचार हो गया, उनके उपदेशों का, खासकर जो अहिंसा के बारे में उन्होंने बातें कही हैं, तो उसका प्रचार होगा। तो मुझे लगता है बहुत ही अच्छी पहल।
1: रोशन जी, इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और तमाम प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे विशेष चर्चा, भारत की प्राचीन विरासत सारनाथ की वैश्विक पहचान। इसमें भाग ले रहे थे वरिष्ठ पत्रकार रोशन लाल गौड़। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdetox@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम कंट्री वाइड। मीडियम वेव 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की नशरियात का सिलसिला जारी है। अब पेश है फिल्मी नगमों का प्रोग्राम मेरी पसंद। तमाम सुनने वालों को रक्षाबंधन की पुरखलूस मुबारकबाद।

लता मंगेशकर और सखियों का गया हुआ ये नगमा था अनपढ़ फिल्म से। रक्षाबंधन के कुछ नगमे आज के प्रोग्राम की जीनत हैं। अगली पेशकश है रेशम की डोरी फिल्म से, आवाज सुमन कल्याणपुर की है।

आशु भोसले की आवाज में ये नगमा आपने काजल फिल्म से सुना। प्रोग्राम की अगली पेशकश किशोर कुमार को सुनिए, फिल्म है हरे रामा हरे कृष्णा।

हरे रामा हरे कृष्णा फिल्म से दोनों वर्जन हमने आपको सुनवाए, किशोरदा का गाया हुआ और लता मंगेशकर का गाया हुआ। आकाशवाणी की उर्दू सर्विस से रक्षाबंधन के मौके पर आप सुन रहे हैं कुछ नगमे भाई बहन के प्यार के हवाले से। आज के प्रोग्राम की अगली पेशकश आशा भोसले को सुनिए, फिल्म है नया कानून।

सुमन कल्याणपुर की आवाज में ये नगमा था एक फूल एक भूल फिल्म से। प्रोग्राम की अगली पेशकश लता मंगेशकर को सुनिए, फिल्म है अनजाना।

ये नगमा भी अपने लता मंगेशकर की आवाज में सुना, फिल्म थी चंबल की कसम। इसके साथ ही आज का ये राखी स्पेशल मेरी पसंद प्रोग्राम अब खत्म होता है। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। अभी रक्षाबंधन का सिलसिला जारी है जनाब, और हम भी इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको सुनवा रहे हैं एक फीचर रक्षाबंधन के हवाले से, बंधन कच्चे धागों का।

बिन मांगे सब दे।

0: देवता तो घबराए हुए थे ही, उनकी माँ आदित्य भी परेशान हो गई। वो कश्यप के पास गई और सारी रुदात सुना दी।
1: उस वक्त कश्यप ने अदिति को दुआ दी, जाओ अदिति, तुम्हारे बेटा पैदा होगा जो तुम्हारे सारे दुख दूर करेगा।
0: कश्यप की दुआ ने असर दिखाया और अदिति के बतन से वामन ने अवतार लिया।
1: वामन ने ब्राह्मण का भेष बनाया और भिक्षा मांगने चल पड़े। एक दरिया के किनारे राक्षसों के राजा बलि से उनकी मुलाकात हो गई और वहीं ब्राह्मण के रूप में

0: बस 3 डग, सिर्फ 3 कदम, तुम तो अकल के भी बौने हो। कुछ और मांगा होता?
1: मुझे सिर्फ इतनी ही जमीन चाहिए।
0: तो ले लो।

0: इस मंत्र का मफहूम कुछ इस तरह है कि जिस धर्म सूत्र से राजा बलि को बांधा गया था उसी धर्म सूत्र से मैं तुम्हें बांधता हूँ, तुम अपने धर्म या मजहब से कभी मत हटना।
1: बलि ने वामन को 3 कदम जमीन देने का कौल दिया था और उसने वो कौल पूरा किया। हाँ, उसे पूरा करने में पाताल जाना पड़ा। राखी का धागा भी ऐसे ही कौल देने और उसे पूरा करने के पैमान का नाम है,
0: यानी हम जो अहद करें उसे हर कीमत पर निभाएं।
1: और इस तरह राखी आन बान को कायम रखने का इस्तारा बन गई।

0: भैया मुझे मालूम है कि आप एक बहुत बहादुर योद्धा हैं। मेरी मेरी इस राखी की लाश आपके हाथ में है भैया। ये वादा करो मेरे सिकंदर को कुछ नहीं होगा।
1: बहन जो तुम चाहती हो वही होगा। मैं हर कीमत पर इस राखी की आन को कायम रखूंगा। मैं अहद लेता हूं कि मेरे हाथों से सिकंदर को कोई जख्म नहीं पहुंचेगी।
0: भैया

0: इस तरह सिकंदर की महबूबा रेक्सनीज की राखी ने सिकंदर को बचा लिया, क्योंकि मैदानी जंग में ऐन उस वक्त पोरस को अपना अहद याद आ गया जब वो सिकंदर पर हमला करने ही वाला था।
1: सिकंदर से शिकस्त खाने वाला पोरस अब भी फाते ही था, क्योंकि उसने राखी की कीमत अदा करके अपने कौल को पूरा किया था।
0: सिकंदर को भी पोरस की इस अजमत का इतराफ करना पड़ा।
1: पोरस ने राखी बंधवाई और एक कौल से बंध गया, इसलिए उसने फतेह को अपने अहद पर तरजीह दी जो उसने अपनी बहन से किया था।
0: खूब वो मुंह बोली बहन अपने दुश्मन की महबूबा थी, लेकिन पोरस ने राखी की आन को जाने नहीं।

0: महारानी कर्मवती की जय हो। महारानी, आज रक्षाबंधन है, हम सब आपके हुक्म के मुंतजिर हैं।
1: आज सलोने हैं, राज दरबार की सभी बहनें अपने भाइयों को राखी बांधेंगी।
2: हम राखी बंधवाने के लिए तैयार हैं महारानी।
1: सोच लो, ये राखियां बहुत महंगी पड़ेंगी। गुजरात के बादशाह बहादुर शाह के भाई चांद खां ने हमारे यहाँ शरण ली है। बहादुर शाह का दूत कहकर गया है, या तो चांद खां को हमारे हवाले कर दो, वरना जंग के लिए तैयार रहो।
3: महारानी साहिबा, आप हमारी खातिर ये मुसीबत क्यों मोल लेती हैं? हमें उनके हवाले कर दीजिए।
1: नहीं चांद खां, हम अपनी शरण में आने वाले की जान की रक्षा अपनी जान देकर भी करेंगे। एक भाई आपको मारना चाहता है, मगर ये बहन अपने भाई को बचाकर दिखाएगी।
3: एक गैर मजहब वाले के लिए इतने
1: इंसान को बांटिए मत, वो ना हिंदू है ना मुसलमान है। कौन कहता है कि हिंदू और मुसलमान अलग अलग हैं? जो ये कहते हैं कि हिंदू मुसलमान आपस में लड़ते हैं, गलत कहते हैं। मजहब आपस में कभी नहीं लड़ते, खुदगर्जियां और स्वार्थ एक दूसरे से टकराते हैं। हाँ, उस वक्त कोई हिंदू बन जाता है और कोई मुसलमान।
3: आप बड़ा फरमाती है महारानी।
1: करमवती के लिए हिंदू भी भाई है और मुसलमान भी। फिर ये लड़ाई हमने शुरू नहीं की, हम तो थोपी जा रही है। और हम लड़ेंगे, जिन्हें प्राण न्यौछावर करने की तमन्ना हो वो आगे बढ़ें और हमारी राखी कबूल करें।
4: हम सब तैयार हैं।
2: हमारे लिए ये कोई नई बात नहीं है,
4: हमारी ताकत यही सूत के धागे हैं।
2: इन धागों में पुरोया गया प्यार हमें जान पर खेलने से पीछे नहीं रखेगा।
4: हम सब तैयार हैं।
1: चांद खां, अभी अभी हमारे दिमाग में एक और बात आई है।
3: क्या महारानी?
1: हम हिमायूं को राखी भेजेंगे।
3: क्या वो कबूल कर लेगा महारानी? एक मुसलमान को आप अपना भाई बनाएंगी?
1: मुसलमान क्या किसी का भाई नहीं होता? मुसलमान की क्या कोई बहन नहीं होती?
3: होती क्यों नहीं, लेकिन क्या हुमायूं अपनी पुरानी दुश्मनी को भूल सकेगा? फतेहपुर सीकरी की जंग के जख्म हरे नहीं हो जाएंगे?
1: नहीं, हमारी राखी उन जख्मों के लिए मरहम बन जाएगी। यही तो इस राखी की एक खूबी है कि वो सभी पुराने पैर भुला देती है।
3: लेकिन आप अपने ही दुश्मन से मदद मांगेंगी?
1: कोई दुश्मन नहीं होता चांद खां, दुश्मन होता है हमारा अपना मन। हिमायूं बहादुर है, वीर है, और वीर बैर नहीं रखता। हम अभी जौहर भाई के हाथ राखी भिजवाते हैं, तुम लोग कूच की तैयारी करो।
5: जहां बना, क्या खबर है तातार खां?
6: मेवाड़ का सफीर आया है, महारानी करमवती ने आपके हुजूर राखी इरसाल की।
5: राखी? हमें राखी भेजी है महारानी करमवती ने? सुभान अल्लाह, जहर किस्मत के उन्होंने हमें राखी का तोहफा भेजा है, हमें अपना भाई बनाया है। हम महारानी के इस प्यार के तोहफे को कबूल करते हैं तातार खां, क्योंकि हम इस राखी की कीमत जानते हैं। तातार खां, राखी के धागों में कितना जादू है तुम नहीं जानते। महारानी करमवती को गुजरात के बादशाह के खिलाफ हमारी मदद दरकार है।
6: तो आप उसकी मदद करेंगे?
5: यकीनन, राखी के बाद भी क्या कोई उज्र पेश कर सकता है तातार खां? ये राखी आग में कूदने की दावत है और हमें उस आग में कूदने में कोई पसोपेश नहीं है तातार खां। राखी के इन धागों ने आज तक न जाने कितनी कुर्बानियां करवाई हैं।
6: लेकिन जहां पना, राखी तो हिंदुओं की रस्म है।
5: तातार खां, ये क्यों भूलते हो कि हिंदू और मुसलमान एक ही परवरदिगार के बंदे हैं? इस राखी को कबूल करने के बाद हमें अपने हम मजहब से जंग ही क्यों ना करनी पड़े। हमें मंजूर है, हम अपनी बहन महारानी करमवती की मदद जरूर करेंगे। तातार खां, लश्कर से कहो कि कूच की तैयारी करें।
6: जो हुक्म जहां पर।

0: यमुना की रेत पर फेंक दी। हमारी पुत्री राम कुंवर ने अपने बादशाह की लाश को देखा और वो सारी रात मरहूम का सर अपनी गोद में लेकर रोती रही, उनकी मैयत की हिफाजत करती रही। फूफी जान तो हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद और वतन प्रस्ती की एक जाविदा यादगार थी, और हमारी बहन श्याम कुंवर तो उनसे भी बढ़कर है।
1: मुबारक हो मलका आलिया, मुबारक हो। अभी अभी महमूद बेग खबर लाए हैं कि सिट्टन साहब ने मिर्जा की रिहाई का हुक्म जारी कर दिया।
2: या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है।
0: अल्हम्दुलिल्लाह।

0: आ गई शाम को वह?
1: सुखी तो है मेरे भैया।
0: आओ बहन, हम तुम्हारे ही मुंतजर थे।
1: झुक झुक जियो मेरे भैया।
0: बहन, हम देख रहे हैं कि बहन के कदम कितने मुबारक होते हैं। नेक और प्यारी बहन जब भी भाई के घर आती है तो अपने साथ एक मुजदाए जानफदा लाती है। तुम्हारे आने से पहले अभी अभी मिर्जा की रिहाई की खबर हमें मिली। आज तुम जो भी चाहो हमसे मांग लो।
1: मेरे अच्छे भैया, बहन अपने भाई से अपने प्यार का बस इतना ही बदला चाहती है कि उसका भैया जुग जुग जिए और अपनी बहन की रक्षा करता रहे। अपनी कलाई इधर लाओ भैया, मैं राखी बांध दूं।
0: हम इस राखी की कदर कीमत जानते हैं बहन। ये वही राखी है जो हमारे जदे अमजद जन्नत मकानी नसीरुद्दीन हुमायूं को उनकी बहन करमवती ने बांधी थी। ये वही राखी है जो तुम्हारी मां ने कौमी इत्तेहाद का सबूत बनाकर अब्बा जान की कलाई पर बांधी थी और आज तुमने हमें बांधी है। ताजमहल, वो थाल इधर लाओ।
1: ये लीजिए अब्बा जान।
0: ये लो शाम कुंवर।
1: भैया इतना कुछ?
0: ये भाई की मोहब्बत और प्यार का हकीर नजराना है बहन। हम जानते हैं कि बहन धन दौलत की भूखी नहीं होती, लेकिन भाई इस अदना से नजराने से ये जताना चाहता है कि वक्त पड़ने पर भाई अपनी बहन पर धन दौलत ही नहीं बल्कि अपनी जान तक कुर्बान कर सकता है।
1: सदा सुखी रहो मेरे भैया। अब मुझे इजाजत दीजिए।
0: अच्छा शाम कुमार।
2: ठहरो बहन।
1: भाभी जान,
2: ये लो, ये मेरी तरफ से।
1: ये हार?
2: शाम कुमार, तुम ऐसी मुकद्दस सरजमीन की बेटी हो, इस घर में तुम्हारी आमद हमेशा मसर्रत का पैगाम लेकर आई है। तुम आई तो मेरा दुख सुख में तब्दील हो गया। इस घर में हमेशा राखी आती रहेगी और बहनें अपनी झोलियां भर भर कर जाती रहेंगी।
1: भाभी।

0: ये राखी सिर्फ हिंदुओं का त्यौहार नहीं है
1: बल्कि ये हमारा कौमी त्यौहार है।
0: इसलिए कि ये हिंदुस्तान की यकजहती, सेक्युलरिज्म और तहजीबों के मेल मिलाप का इस्तारा है।
1: वो मेल मिलाप और भाईचारा जिसका अक्स हमारी तहजीब और तारीख के हर वर्ग पर सब्त है।
0: वो मेलजोल और हम आहंगी जिसका तारुफ कबीर ने दिया,
1: जिसको जायसी, रसखान और रहीम ने उजागर किया।
0: इसी रिश्ते से हुमायूं ने महारानी करमवती की राखी कबूल की।
1: इसी यगानगत और यकचहती के जज्बों को अकबर ने परवान चढ़ाया।
0: अकबर ने न सिर्फ मजहबों के माबेन रिश्तों को मजबूत किया बल्कि हिंदू मजहब और अकायद से मुतालिक बहुत से सहीफों के तर्जुमे फारसी में करवाए। रामायण और महाभारत के तराजम भी उनमें शामिल हैं।
1: मुगल और दक्कन के सलातीन के अफवाज में हिंदू सिपाही शामिल थे।
0: इसी तरह हिंदू राजपूतों का साथ मुसलमानों ने दिया।
1: मुसव्विरी, मुसीकी, संग तराशी और दूसरे फनून लतीफा में दोनों मजाहिब के मानने वाले साथ साथ आगे बढ़े और एक दूसरे के और ज्यादा करीब आए।
0: और आज भी हिंदुस्तानी तहजीब मजहब व अकायद, जबान, रस्म रिवाज में नारंगी के साथ साथ यकरंगी की झलक पेश करती है।
1: होली हो या दिवाली, ईद या बैसाखी, सभी हिंदुस्तानी मिलकर मनाते हैं।
0: इसलिए राखी भी यकजहती की मजहर है जो एक दूसरे को जोड़ती है, बांधती है और मुसीबत के वक्त एक दूसरे को मदद करने की तहरीक अदा करती है। राखी न मजहब देखती है न अकीदा, जिस हाथ में बंध जाती है वो हाथ कभी पीछे नहीं हटते।
1: राखी का ये त्यौहार हम सबका त्यौहार है, इंसानों और इंसानियत में यकीन रखने वालों का त्यौहार। राखी हाथ पर बांधी जाती

0: अभी आप सुन रहे थे जनाब गोविंद चटक का तहरीर करदा फीचर बंधन कच्चे धागों का, पेशकश प्रेम वोहरा की थी। यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। अब खबरें नशर की जाएंगी।
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। जमीर रजवी से खबरें सुनिए। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। नेपाल और तिब्बत के अचानक आने वाले तबाहकुन सैलाब में मरने वालों की तादाद बढ़कर 392 हो गई है, जबकि सरहद के दोनों जानिब 1468 अफराद अब भी लापता हैं। भारत ने नेपाल में फंसे हुए भारतीय शहरियों को वापस लाने की कोशिशें तेज कर दी हैं। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन का 6 रोजा अमरीका दौरा आज से शुरू हो रहा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने लेक ओंटेरियो का नाम बदलकर लेक अमेरिका करने वाले एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत किए हैं। रक्षाबंधन का त्यौहार आज मुल्क भर में मनाया जा रहा है। 57 रोजा सालाना अमरनाथ यात्रा जम्मू कश्मीर में इख्तिताम पजीर होगी। और भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रगनंदा ने तारीख साज कारनामा अंजाम दिया है। वो ग्रैंड चेस टूर जीतने वाले पहले भारतीय शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं। अब खबरें तफसील से। नेपाल और तिब्बत में अचानक आने वाले तबाहकुन सैलाब में मरने वालों की तादाद बढ़कर 392 हो गई है, जबकि सरहद के दोनों जानिब 1468 अफराद अब भी लापता हैं। इस कुदरती आफत में हलाक होने वाले 392 अफराद में से 379 नेपाल में, जबकि 3 पड़ोसी इलाके तिब्बत में हलाक हुए हैं। नेपाल के हुक्काम के मुताबिक 910 अफराद लापता हैं, जबकि तिब्बत के हुक्काम ने बताया कि मजीद 558 अफराद का कोई सुराग नहीं मिल सका है, जिससे सरहद के दोनों जानिब लापता अफराद की मजमू तादाद 1468 हो गई है। इमदादी कारकुन जिंदा बच जाने वालों की तलाश और दरियाओं के किनारे और दूर दराज आबादी से बहकर आने वाली लाशों को तलाश करने में मसरूफ हैं, ताहम खतरा अभी टला नहीं है। भोतेकोसी दरियाई निजाम के सरचश्मे के नजदीक बनने वाली एक नई रुकावटी झील ने खदशात पैदा कर दिए हैं कि अगर इसमें शिगाफ पड़ा तो शदीद सैलाब का रेल आ सकता है, जिससे तबाही मजीद बढ़ सकती है और जारी इमदादी कार्रवाइयों में मजीद दुश्वारियां पैदा हो सकती हैं। नेपाल के सिक्योरिटी अहलकारों ने मुतासर जिलों में 800 से ज्यादा लोगों को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया है। इस तबाही के बाद भारत ने बड़े पैमाने पर बचाव और इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी हैं। वजारत खारजा के मुताबिक नेपाल में मौजूद 290 भारतीय शहरियों से राबता नहीं हो पा रहा है। भारत उनके बारे में मालूम हासिल करने और उनके बचाव के लिए फौरी कोशिशें कर रहा है। लापता भारतीय शहरियों में मुख्तलिफ रियासतों से ताल्लुक रखने वाले पन बिजली प्रोजेक्टों के कारकुन और सयाहों के ग्रुप शामिल हैं। इस दौरान वजीर खारजा डॉ जयशंकर ने कहा कि सैलाब से मुतासर इलाकों में फंसे भारतीय शहरियों की मौजूदा सूरत हाल और उनकी खैरियत मालूम करने के लिए फौरी कोशिशें जारी हैं। उन्होंने कहा कि वजारत खारजा नेपाल के हुकाम दीगर वजारतों रियासती हुकूमतों टूर ऑपरेटर्स और मुतल्लिका इदारों के साथ राबते में हैं। वजारत खारजा ने लापता अफराद का सुराग लगाने और उन्हें महफूज मकाम पर मुंतकिल करने में मदद की खातिर 24 घंटे काम करने वाला एक कंट्रोल रूम कायम किया है। भारत ने अब तक 84 भारतीय शहरियों को बचाया है। इनमें त्रिशूली वन रन ऑफ द रिवर पन बिजली प्रोजेक्ट के 63 वर्कर्स और तमिलनाडु के 21 अफराद शामिल हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नेपाल के वजीर आजम बालेन्द्र शाह से बात की है और उन्हें भारत की जानिब से इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर मुकम्मल इमदाद का यकीन दिलाया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल उज्बेकिस्तान का दौरा करेंगे। वो वस्ती एशियाई मुल्क के दो रोजा दौरे पर जाएंगे। वजीर आजम उज्बेकिस्तान

सदर शौकत मिर्जियेव की दावत पर ताशकंद का दौरा करेंगे। इस दौरे के दौरान वजीर आजम सदर मिर्जियेव के साथ वफद की सतह की बातचीत करेंगे ताकि दोनों ममालिक के दरमियान स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मजबूत किया जा सके। वजीर आजम नरेंद्र मोदी का ये उज्बेकिस्तान का चौथा दौरा होगा। इससे कबल वो 2015, 2016 और 2022 में वस्ती एशियाई मुल्क का दौरा कर चुके हैं। उज्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्जियेव भी 2018 और 2019 में भारत का दौरा कर चुके हैं। दौरे के दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी और उज्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्जियेव तिजारत और सरमायाकारी, दिफा, डिजिटल राबते, तवानाई और तालीम और आवाम से आवाम रवाबित समेत मुख्तलिफ शोबों में बाहमी तआवुन का जायजा लेंगे और आइंदा के लिए लाहे अमल मुरतब करेंगे। दोनों रहनुमा विकसित भारत 2047 और उज्बेकिस्तान 2030 के मुश्तरक तरक्याती विजन को आगे बढ़ाने के बारे में भी अपने ख्यालात का तबादला करेंगे। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन आज से अमरीका का 6 रोजा दौरा करेंगी। अमरीका के अपने दौरे के दौरान वो शिकागो, एशविल और न्यूयॉर्क जाएंगी। वजीर खजाना शिकागो में मुमताज सरमायाकारों के साथ एक गोलमेज कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगी और प्राइवेट सेक्टर की सरकर्दा कंपनियों के सीईओज, सुदूर और आला नुमाइंदों से बातचीत करेंगी। शिकागो में मुंतखब कंपनियों के सीईओज और आला क्यादत के साथ दोतरफा और बिलमुशाफा मीटिंगें भी होंगी। इन मीटिंगों में भारत में सरमायाकारी के मौके, इकतसादी हालात और भारत और अमरीका के दरमियान कारोबारी व सरमायाकारी शराकतदारी को मजबूत बनाने के तौर तरीकों पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। मोहतरमा सीतारमन शिकागो यूनिवर्सिटी के पोल्सकी सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन का भी दौरा करेंगी, जहां वो कारोबारी सरगर्मियों, जिदत तराजी, टेक्नोलॉजी की सरमायाकारी, तिजारतकारी और भारत के तेजी से फैलते हुए स्टार्टअप और इख्तरा के निजाम के साथ रवाबित मजबूत करने के सिलसिले में ख्यालात का तबादला करेंगी। वजीर खजाना अपने दौरे के दौरान शिकागो में भारतीय बिरादरी के अफराद से भी मुलाकात करेंगी। एशविल में मुहतरमा सीतारमन G20 के वज़राए खजाना और मरकजी बैंकों के गवर्नरों के इजलास में भारतीय वफद की क्यादत करेंगी। ये इजलास अमरीका की G20 सदारत के तहत मुनक़िद हो रहा है। न्यूयॉर्क में मुहतरमा सीतारमन की सरकर्दा कंपनियों के सीईओज और आला नुमाइंदों के साथ सरमायाकारों की गोलमेज मीटिंग में शिरकत का प्रोग्राम है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीका और कनाडा के दरमियान बढ़ती हुई तिजारती कशीदगी के दौरान लेक ओंटेरियो का नाम बदलकर लेक अमेरिका करने वाले एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए हैं। ये हुक्मनामा अमरीकी दाखिला सेक्रेटरी और जोग्राफियाई नामों से मुतालिक बोर्ड को सरकारी नक्शों और जियोग्राफिक नेम्स इंफॉर्मेशन सिस्टम GNIS को अपडेट के लिए 30 दिन का वक्त देता है। ट्रंप ने कहा कि ये झील अहम अमरीकी इकतसादी और स्ट्रेटेजिक वसीला है जो जहाजरानी, तिजारत, ज़राअत, तवानाई और कौमी दिफा में मदद करती है। ट्रंप ने अहम झीलों के तहफ्फुज़ के लिए अमरीकी सरमायाकारी को भी वाज़े किया। इधर कनाडा के वजीर आजम मार्क कार्ने ने नाम की तब्दीली को मुस्तरद करते हुए झील के मुकामी ज़राए की निशानदेही की। जनाब कार्ने ने कहा कि कनाडा इसे लेक ओंटेरियो ही कहता रहेगा, जो नाम माजी में राइज था, आज भी इस्तेमाल किया जा रहा है और मुस्तकबिल में भी इस्तेमाल किया जाता रहेगा। नेपाल के तबाहकुन सैलाब पर बोलते हुए ट्रंप ने कहा कि अमरीका ने नेपाल को मदद की पेशकश की है। अमरीका ने सैलाब के बाद हंगामी इमदाद और आफात से निपटने के मुशीर की तैनाती का ऐलान किया है। भाई और बहन के दरमियान खुसूसी प्यार और मोहब्बत भरे रिश्ते का त्यौहार रक्षाबंधन आज मुल्कभर में मनाया जा रहा है। इस मौके पर बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रंग बिरंगी राखियां बांधती हैं और उनकी खुशहाली, सेहत और भलाई के लिए दुआएं करती हैं। इसके बदले भाई अपनी बहनों की हिफाजत और उनकी मदद का अहद करते हैं और उन्हें तहफ पेश करते हैं। सदर जमहूरी द्रौपदी मुर्मू ने रक्षाबंधन के मौके पर लोगों को मुबारकबाद दी है। मोहतरमा मुर्मू ने हर शहरी से अपील की कि वो इसी जज्बे के साथ विकसित भारत की जानिब आगे बढ़ते हुए खानदानों और बिरादरियों के दरमियान ताल्लुकात को मजबूत बनाने का अहद करें। सालाना श्री अमरनाथ यात्रा आज जम्मू कश्मीर में रक्षाबंधन के त्यौहार के साथ इख्तिताम पजीर होगी। 57 रोजा तवील अमरनाथ यात्रा का आगाज इस साल 3 जुलाई को हुआ था। सालाना अमरनाथ यात्रा बुद्ध अमरनाथ यात्रा भी आज इख्तिताम पजीर होगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने संस्कृत के आलमी दिन के मौके पर नई ख्वाहिशात का इजहार किया है। जनाब मोदी ने कहा कि संस्कृत का आलमी दिन संस्कृत जबान के लाजवाल मालामाल विरसे को नुमाया करने के लिए श्रावण पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। वजीर आजम मोदी ने उन तमाम भारतीय और गैर मुल्की लोगों की

0: प्रेमी दोगाने, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी की उर्दू सर्विस से। ये प्रोग्राम अभी जारी है, वक्त हुआ है तारीख साज प्रोग्राम का। आज का मौजू है रक्षाबंधन।
1: भारतीय त्योहारों में रक्षाबंधन एक खास त्योहार की तरह मनाया जाता है, इसे राखी का त्योहार भी कहते हैं। रक्षाबंधन दो लफ्जों से बना है, रक्षा और बंधन। इसका मतलब है रक्षा यानी हिफाजत के लिए पैदा करना, या वो धागा या सूत्र जो कि हिफाजत के लिए बांधा जाए। और ये धागा सचमुच इतना ताकतवर होता है जो बांधने और बंधने वाले को प्यार के बंधन में बांध देता है कि वो बंधन ताउम्र कायम रहता है। बहन अपने भाई की कलाई पर इस धागे को इसीलिए बांधती है कि उसका भाई रक्षा कवच बनकर जिंदगी के तमाम उतार चढ़ाव और मुश्किल वक्त में ढाल बनकर उसकी हिफाजत करे। भाई भी अपनी बहन से इस बात का वादा करता है कि वो अपने खून की आखिरी बूंद तक अपनी बहन की इज्जत और आबरू की हिफाजत करेगा। रक्षाबंधन का खूबसूरत त्योहार श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। शदीद गर्मी के बाद जब हल्की हल्की बारिश की फुहारें मौसम की गर्मी को कुछ कम कर देती हैं और चारों तरफ हरियाली फैल जाती है, किसान अपनी जुताई बुआई का काम पूरा कर लेते हैं और आसमान बादलों से ढका रहता है। रिमझिम फुहारें जमीन की प्यास को बुझाती हैं। ऐसे दिलकश और सुहावने मौसम में यह त्योहार पूरे जोशो खरोश से मनाया जाता है। रक्षाबंधन के त्योहार को मनाने की रिवायत कब शुरू हुई, इस बारे में पुराणों की कई कहानियां मशहूर हैं। एक रिवायत के मुताबिक देवता और दानवों में लड़ाई के दौरान देवताओं की हार होने लगी तो देवताओं के राजा इंद्र परेशान हो गए और उन्होंने गुरु बृहस्पति से दानवों की हार का कोई तरीका पूछा। उस वक्त वहाँ पर इंद्राणी भी मौजूद थी। उन्होंने कहा, दानवों को हराने का तरीका मुझे मालूम है। दूसरे दिन श्रावण की पूर्णिमा थी। इंद्राणी ने एक रक्षा कवच तैयार करवाया, उसे मंत्रों से पढ़कर इंद्र और दूसरे देवताओं की कलाई पर बांधा। इस रक्षा कवच के असर से देवता लड़ाई जीत गए और कहा जाता है कि तब से त्योहार मनाया जाता है। एक और कदीम रिवायत के मुताबिक इस त्योहार का ताल्लुक महाभारत के दौर से भी है। एक बार लड़ाई में कृष्ण जी को चोट आई और उनके जख्मों से खून बहने लगा। द्रौपदी भी वहाँ मौजूद थीं। उनसे कृष्ण जी के जख्म देखे नहीं गए और उन्होंने अपनी साड़ी का एक कोना फाड़ कर उनके जख्मों पर पट्टी बांध दी। कृष्ण जी उनके इस अमल से इतने मुतासिर हुए कि उन्हें अपनी बहन बना लिया और जिंदगी भर उनकी हिफाजत की कसम खाई। जैसा कि हम सब जानते हैं, जब राजा धृतराष्ट्र के दरबार में द्रौपदी की साड़ी खींचकर उनको बेइज्जत किया जा रहा था, उस वक्त कृष्ण जी ने दरबार में पहुंचकर उनकी हिफाजत की और अपने राखी के वादे की लाज रखते हुए उनकी इज्जत और आबरू की हिफाजत की। रक्षाबंधन के बारे में एक रिवायत ये भी है कि राजा बाली भगवान विष्णु के बहुत सच्चे भक्त थे। उनकी इबादत से खुश होकर विष्णु जी वैकुंठ धाम को छोड़कर उनकी रियासत की हिफाजत करने के लिए खुद आ गए, लेकिन लक्ष्मी जी चाहती थी कि वो उनके साथ वैकुंठ धाम में रहें। इसलिए वो एक औरत के रूप में राजा बाली के दरबार में गई और उनकी कलाई पर राखी बांधी, जिससे खुश होकर उन्होंने लक्ष्मी जी के वहां आने का मकसद पूछा। और जब उन्हें पूरी बात पता

0: 500 साल पहले गुजरात के राजा बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर हमला कर दिया। उस वक्त महारानी कर्मवती ने बादशाह हुमायूं को एक खत लिखा और उसी के साथ एक राखी भेजकर अपनी हिफाजत की दरख्वास्त की। शहंशाह हुमायूं ने मुसलमान होते हुए भी महारानी कर्मवती की राखी मंजूर की और उनकी हिफाजत का वादा किया। बहादुर शाह को ये उम्मीद नहीं थी कि शहंशाह हुमायूं खुद चित्तौड़ की हिफाजत के लिए फौज के साथ पहुंच जाएंगे। जबकि हुमायूं को पहुंचने में थोड़ी देर जरूर हो गई, लेकिन फिर भी उन्होंने बहादुर शाह को खदेड़कर चित्तौड़ की हिफाजत की और अपनी मुंह पोली बहन की राखी के धागों की लाज रखी। तारीख के इस वाकये को सब मजहबों के मानने वाले लोग आज भी याद करते हैं।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम तारीख साज, मौजूद था रक्षा बंधन, यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है।

0: इस नगमे के साथ ही आज का मिले सुर मेरा तुम्हारा प्रोग्राम अब खत्म होता है। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश है प्रोग्राम सुर्खियों में। ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए खेलो इंडिया संवाद, भारत की खेल क्षमता के प्रोत्साहन पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं खेल विश्लेषक मलय नीरव, कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं अर्जुन जे चौधरी।
1: मलय नीरव जी, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है।
2: धन्यवाद
1: मलय जी। हमारे जो आकाशवाणी में जो चर्चा सुनते हैं वो जानना चाहते हैं कि खेलो इंडिया प्रोग्राम क्या है, ये इनिशिएटिव क्या है और आज के युवा के साथ इसका क्या लिंकेज है।
2: देखिए, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेलो इंडिया कार्यक्रम की घोषणा की तब से एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट थी कि उनका जो विजन था, उन्होंने देश के विकास के लिए, युवाओं के विकास के लिए, देश में खेलों के विकास के लिए जो सपना देखा और दिखाया, वो उसकी एक रचनात्मक भूमिका थी इस देश के निर्माण में, एक विकसित भारत के निर्माण में। क्योंकि इस देश में खेल संस्कृति का अभाव था, खेल संस्कृति के अभाव में ये देश खेलों में उस तरह का विकास नहीं कर पा रहा था जिस तरह का विकास हमने अन्य देशों में देखा जो कुछ दिनों पहले तक विकासशील देश थे और कुछ आज भी हैं, मगर खेलों में वो विकसित देशों के बराबरी पे आ गए हैं। तो उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना ऐसा कार्यक्रम शुरू किया जाए जिसमें हर गांव, हर कस्बे, हर शहर, हर जिले, हर राज्य के बच्चों का हम उनकी प्रतिभाओं को पहचान कर, उनकी प्रतिभाओं को तलाश कर और फिर ये देखें कि उनमें से पदक प्राप्त करने वाला और अंतर्राष्ट्रीय मंच पे पहुंचने वाला बच्चा कौन सा हो सकता है। सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय पदक जीतने की बात ही उन्होंने नहीं सोची, उन्होंने ये भी सोचा कि जो बच्चा खेलों में अपना ध्यान लगाता है, जो युवा खेलों को अपने जीवन यापन के लिए अपनाना चाहता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ दिनों बाद उसे भूखमरी की डर खेलों के मैदान से दूर ले जाए। तो इस तरह से उन्होंने खेलो इंडिया कार्यक्रम शुरू किया और आपको जानकर, हमारे पूरे देश को जानकर ये प्रसन्नता होती रही है कि खेलो इंडिया से निकले खिलाड़ी, मनुभाकर जैसे खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वर्ण पदक जीतते रहे और खेलो इंडिया का जो और भी उसके जो विभिन्न अंश और कह लीजिए कि एक नए आयाम के साथ खेलो इंडिया के विभिन्न कार्यक्रम शुरू किए गए, जो समुद्र के किनारे होने वाले खेल थे या जो बर्फीली पहाड़ियों पर होने वाले खेल थे, जो विंटर खेलो इंडिया था उनको, बीच खेलो इंडिया, उन खेलों को जिस तरह का प्रोत्साहन मिला प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम से, तो ऐसी जगहों पे जहां खेलों में रुचि लेने वालों को कोई पहचानता भी नहीं था, वहां से युवा शक्ति जो निकली, जो उदीयमान सितारे जगमगाए, उन जगमगाते सितारों को देखकर प्रधानमंत्री को ये लगा कि ये झुकनों की चमक नहीं है, ये तो चांदनी है और इस चांदनी को जैसे जैसे तराशा जाएगा ये और निखरेगी, झुकनों की तरह बिल्कुल झिलमिलाकर बुझ जाने वाली चीज नहीं है। उन्होंने इस बात को समझा, देखा, जाना और फिर ये भी जानने की कोशिश की कि किन को किस तरह से यहाँ खेलों के मैदान में लाकर बनाए रखा जाए, ऐसा ना हो कि आज खेलें, कल खेलें और परसों उसके बाद वो अपने दाल रोटी की चिंता और फिक्र में, अपने परिवार को पालने की फिक्र में खेल के मैदान को छोड़कर चले जाएं। तो उन्हें एक तरह का आश्वासन मिला कि अगर आप खेल रहे हैं तो जो पुरानी कहावत है कि पढ़ोगे लिखोगे तो होगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब, वो कहावत चरितार्थ अब नहीं हो सकती, अब वो गलत साबित हो चुकी है। क्योंकि आप अगर खेलोगे कूदोगे तो आपको हर तरह की सुविधा राज्य की ओर से, राष्ट्र की ओर से आपको प्रदान की जाएगी और ये हमारे प्रधानमंत्री का सपना था।
1: आइए सुनते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने खेलो इंडिया संबोधन में भारत में स्पोर्ट्स इकोसिस्टम को मजबूत बनाने के बारे में क्या कहा।
3: हमारी सरकार भारत में 21वीं सदी का आधुनिक स्पोर्ट्स इकोसिस्टम बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। आज स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी से लेकर आधुनिक ट्रेनिंग सेंटर्स तक देश में एक ऐसी व्यवस्था बनाई जा रही है जिसमें प्रतिभा को

0: पहचानने से लेकर उसे दुनिया के मंच तक पहुंचाने तक हर स्तर पर सहयोग मिले।
1: पैरा एथलीट्स ने बहुत बढ़िया प्रदर्शन दिखाया है एशियन गेम्स में, ओलंपिक गेम्स में, और जो एबल्ड एथलीट्स हैं उन्होंने भी अभी अपना जो है प्रदर्शन दिखाया, जैसे कॉमनवेल्थ गेम्स में अगर हम वेट लिफ्टर्स की बात करें। ये जो स्पोर्टिंग अचीवमेंट्स हैं, एक्सेलेंस है एथलीट्स की, इसके साथ अर्थशास्त्र भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि खेलो इंडिया को लॉन्च करने के लिए, उसको होस्ट करने के लिए भी कई जो राज्य हैं वो चाहते हैं कि उनके यहां पे वेन्यू चुना जाए, उनको फंडिंग मिले सेंटर से, और एक तरीके से स्पोर्ट्स का विकास उनके राज्य तक पहुंचे।
2: जब एक खेल का आयोजन होता है तो अर्थव्यवस्था को एक नया बूस्ट मिलता है, उसको एक नई गति मिलती है, पर्यटन का विकास होता है, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होता है, सड़कों का विकास होता है, हवाई अड्डों का विकास होता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, रोजगार के नए अवसर आते हैं। तो खेलों के साथ साथ इन सब के विकास से जो भारत की युवा शक्ति है, जो अभी आप देखें जनसंख्या के आधार पर तो भारत में युवाओं का जो बाहुल है, उसको रोजगार के अवसर दिलाने में इनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। और इस भूमिका की बात आज डायलॉग में भी प्रधानमंत्री ने की है, उन्होंने कहा है कि भारत की युवा शक्ति को विकसित भारत का एक अभिन्न अंग बनाने के लिए 2027 तक खेलों के माध्यम से उनको वहां पहुंचाया जाए जहां भारत विकास के चरम पर पहुंचे, विकास की पराकाष्ठा पर पहुंचे। तो ये पूरा कार्यक्रम जो है और जो उनका राष्ट्र के साथ आज संवाद हुआ है, डायलॉग जो हुआ है जिसमें 1500 करीब शिक्षण संस्थानों ने और उनके छात्रों ने हिस्सा लिया, हर जिले के कम से कम 2 संस्थान ऐसे थे जिन्होंने हिस्सा लिया, तो उसमें भी उन्होंने यही संवाद दिया है। उन्होंने संवाद दिया है कि प्रतियोगिता पदक जीतने से ज्यादा महत्वपूर्ण है, स्वस्थ प्रतियोगिता, हेल्दी कॉम्पिटिशन, क्योंकि इससे आपको तरह तरह प्रेरणाएं मिलती हैं, शिक्षा मिलती है। जब आप गिरते हैं तो आप उठना सीखते हैं, जब आप उठते हैं तो गिरने का भय आपके मन से निकलता है। इसी धरती पर बहुत, मैं कहता हूं दावे के साथ, कि 6-7 वर्ष पहले तक कोई नहीं कह सकता था कि एथलेटिक्स में, वो भी भाला फेंक में, जैवलिन थ्रो में भारत को स्वर्ण पदक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, ओलंपिक्स और विश्व स्तर पर मिलेगा, ये कोई नहीं कह सकता था। इसी तरह से मीराबाई चानू का एक ऐसा केस है जिसको प्रधानमंत्री ने पहचाना, जाना, उनके टैलेंट को देखा, और उनको स्वास्थ्य लाभ की जरूरत थी तो उन्होंने उनको सर्वश्रेष्ठ सुविधाएं प्रदान की, और प्रदान करने के साथ साथ अच्छे प्रशिक्षण की भी व्यवस्था की। तो खिलाड़ियों के न्यूट्रिशन, उनके मनस्थिति जो उनकी होती है, उनको मनोवैज्ञानिक रूप से प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करना, बड़ी प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करना, ये जो काम होते हैं, और भी हर तरह की चीजें, हर तरह की सुविधाएं जो उनको उपलब्ध कराई जा रही हैं, वो सिर्फ इसलिए नहीं कि वो खेल में पदक लाकर कहें कि हम पदक विजेता हूं, वो इसलिए कि युवाओं के लिए प्रेरणा के स्रोत वो बने, और युवाओं के लिए उनके लिए एक नया मार्ग प्रशस्त हो, उनको लगे कि ये भी एक चीज है जो करके हम अपने पोटेंशियल को, जो हमारी अभिप्सा है, जो हमारी चाहत है, उसको हम और विकसित कर सकते हैं, उसको हम एक अंजाम दे सकते हैं।
1: प्रणय जी, युवा की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत पहले की थी खेलो इंडिया के माध्यम से। आपके जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स है, एक तरीके से युवा को ही टारगेट किया जा रहा है, और आज उससे जुड़ा हुआ यूथ लीडरशिप की बात की जा रही है, और नशा मुक्त युवा मूवमेंट जैसी बातें भी की जा रही है, ताकि उनके साथ जो भी समस्याएं हो उसका एक हल निकाल सके। तो युवा हमेशा एक सेंट्रिक थीम रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किसी भी कार्यक्रम में।
2: युवाओं के सशक्तिकरण में खेलों की भूमिका, और खेलों से जुड़े जो हमारे नैतिक मूल्य हैं, उन नैतिक मूल्यों की भूमिका को आज उन्होंने रेखांकित किया अपने संवाद में। वो इस तरह से कि जो आपने नशा मुक्ति की बात की, जब युवा को कोई ऐसा प्रयोजन उसके सामने रहेगा जिसमें उसका ध्यान लगातार लगा रहेगा और उसको अपने आगे के भविष्य की चिंता कम होगी, तो वो नशे जैसी चीजों से दूर रहेगा, क्योंकि उसको एक रचनात्मक भूमिका दी जा रही है देश के विकास में। तो इस रचनात्मक भूमिका को आगे बढ़ाने के लिए युवाओं के लिए एक संदेश भी उन्होंने दिया कि अगर आपको विफलता मिलती है, असफलता मिलती है, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि आपके लिए जो आगे का मार्ग है वो बंद हो गया हो, इसका अर्थ ये है कि अगर आप गिरे

0: हैं तो आप उठेंगे फिर आगे बढ़ेंगे और प्रतियोगिता की जो क्षमता है और प्रतियोगिता की जो आवश्यकता है देश के विकास में, युवाओं के विकास में, उस पर भी उन्होंने बल दिया। तो इस तरह से आज का संवाद सिर्फ खेलों या खेलो इंडिया से जुड़ा नहीं था। आज का संवाद देश में युवाओं के सशक्तिकरण, युवाओं की रचनात्मक भूमिका, युवाओं की जो ऊर्जा है उसको सही दिशा में लगाने के लिए सही कदम कैसे उठाए जाए, इन सब को ध्यान में रखते हुए उन्होंने आज का संबोधन किया है। और उन्होंने अपने साथ साथ ऐसे खिलाड़ियों को वहां रखा, मैरीकॉम जैसे खिलाड़ियों को, जिन्होंने छोटी जगह से निकलकर और स्वर्ण पदक जीतकर अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में विश्व चैंपियन बनकर दुनिया के सामने ये दिखाया कि आप चाहे कहीं से भी हों, छोटी से छोटी जगह से भी हों, अगर आप में प्रतिभा है और आपकी प्रतिभा को ठीक तरह से तराशा जाता है तो कोई भी पदक का मंच आपसे दूर नहीं रह सकता।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेलों के क्षेत्र में युवाओं को आगे बढ़ाने और उनकी प्रतिभा को निखारने की बात कही। आइए सुनते हैं कि उन्होंने इस बारे में क्या कहा।
2: जब हम 2036 ओलंपिक्स की तैयारी की बात करते हैं तो हमारा फोकस ये होना चाहिए कि हमें आज से ही वो खिलाड़ी तैयार करने हैं जो 2036 में अलग अलग स्पोर्ट्स के लिए क्वालिफाई और कम्पीट करेंगे। और इसलिए लाल किले से मैंने 5 साल की उम्र से 15 साल की उम्र के खिलाड़ियों की पहचान करने के लिए एक बड़े टैलेंट हंट अभियान का ऐलान किया। और इसमें भी हमें केवल ये नहीं देखना है कि किस बच्चे की किस खेल में रुचि है, बल्कि ये भी देखना है कि कौन सा बच्चा किस खेल के लिए फिट है। हमें उस हिसाब से ही उस बच्चे को ट्रेनिंग देनी होगी।
1: खेलो इंडिया के संवाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरुआत की थी मेजर ध्यानचंद को सम्मान देके, और उन्होंने उदाहरण ये भी दिया कि अभी नेशनल स्पोर्ट्स डे आने वाला है 29 अगस्त में एक भेंट दिया। नेशनल स्पोर्ट्स डे का महत्व क्या है?
0: हमारे यहाँ खेलों की जो परंपरा रही है, जिस परंपरा में जीत हॉकी जैसे खेलों में हमें बहुत आसानी से मिलती रही है, उस परंपरा में जो बीच में एक थोड़े दिनों के लिए एक कमी आ गई थी, वो परंपरा फल फूल नहीं पा रही थी, उसको पुनर्जीवित करने के लिए, और हॉकी के साथ साथ अन्य खेलों की भी बात प्रधानमंत्री ने की है। प्रधानमंत्री ने साफ साफ कहा है कि आज 13 खेलों में हमने हिस्सा लिया राष्ट्रमंडल खेलों में, और ऐसे कई खेल हैं जिसमें हमारे खिलाड़ी न खेलते हैं न प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेते हैं। तो वैसे में हम परंपरागत खेलों के अलावा जो आधुनिक खेल हैं उनमें भी अगर हम हिस्सा लें तो मेजर ध्यानचंद जैसा हॉकी का खिलाड़ी हमने जब दिया, नीरज चोपड़ा जैसा एथलीट जब हमने दिया, तो अभी हमारे पास और भी ऐसे टैलेंट हैं जिनको हम उन खेलों में नेटबॉल, हैंडबॉल, रोइंग और स्कीइंग इन जैसे खेलों में भी हम अच्छा कर सकते हैं। तो मेजर ध्यानचंद का एक प्रतीकात्मक महत्व है कि एक छोटी जगह से निकला हुआ एक आदमी जिसके पास ढंग के जूते, ढंग के कपड़े भी ना हो, हॉकी खेलने के लिए जो जरूरत की चीजें हैं वो भी ना हो, और वो आज भी आप देखेंगे छोटा नागपुर चले जाइए जहां से बच्चे निकलते हैं हॉकी खेलने वाले, और एक पेड़ की छोटी सी डाली को तोड़कर हॉकी स्टिक बनाकर जो ड्रिबलिंग करते हैं, तो देखकर ऐसा लगता है कि कितनी प्रतिभाएं हमारे यहाँ छिपी हुई हैं, और उन्हीं प्रतिभाओं को 5 वर्ष से 15 वर्ष की उम्र वाले प्रतिभाओं को पहचान कर सामने लाने की बात प्रधानमंत्री ने की है। तो मेजर ध्यानचंद जैसे लोग प्रेरणा के स्रोत ही नहीं है, एक प्रतीकात्मक उनका अपना मूल्य है, एक उनकी अपनी जगह है, लोगों के दिमाग में उसको बिठाने के लिए जो लोग भूल चुके हैं आखिर क्यों उन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता था, आखिर क्या कहा था हिटलर ने उनसे, इन सब बातों की ओर जब हम ध्यान देते हैं तो पता चलता है कि भारतीय खेल इतिहास के जो स्वर्णिम पन्ने थे उन पन्नों में कुछ और नए पन्ने जोड़ने की जरूरत है, और बीच में जो खाली रह गए अध्याय उन अध्यायों को भूल कर अब आगे के अध्याय में जितने स्वर्णिम पन्ने हम और जोड़ पाएंगे भारत में खेलों का विकास उतना ही होगा। और यही प्रधानमंत्री का संदेश है जो हर युवा को एक नई शक्ति प्रदान करता है।
1: भले नीरव जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने खेल और खेल के विकास को लेकर विस्तार में चर्चा की, धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
3: अभी आप सुन रहे थे खेलो इंडिया संवाद, भारत की खेल क्षमता के प्रोत्साहन पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे खेल विश्लेषक मलय नीरव। कार्यक्रम का संचालन कर

0: ये थे अर्जुन जे चौधरी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम सुर्खियों में। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। अब आलमी खबरें नशर की जाएंगी।
2: ये आकाशवाणी है। अब आप मेहताब आलम से आलमी खबरें सुनिए। नेपाल और तिब्बत में अचानक आने वाले तबाहकुन सैलाब में हलाकतों की तादाद बढ़कर 392 हो गई है, जबकि सरहद के दोनों जानब 1468 अफराद अभी लापता है। भारत ने नेपाल में फंसे हुए भारतीय शहरियों को वापस लाने की कोशिशें तेज कर दी हैं। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन का 6 रोजा अमरीकी दौरा आज से शुरू हो रहा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने लेक ओंटारियो का नाम बदलकर लेक अमेरिका करने वाले एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए हैं। रक्षाबंधन का त्यौहार आज मुल्क भर में मनाया जा रहा है। 57 रोजा सालाना अमरनाथ यात्रा जम्मू कश्मीर में खतरा पजीर होगी। और भारतीय ग्रैंड मास्टर प्रज्ञा नंदा ने तारीख साज कारनामा अंजाम दिया है। वो ग्रैंड चेस टूर जीतने वाले पहले भारतीय शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं। अब खबर तफसील से। नेपाल और तिब्बत में अचानक आने वाले तबाहकुन सैलाब में हलाकतों की मजमूई तादाद बढ़कर 392 हो गई है, जबकि सरहद के दोनों जानब 1468 अफराद अब भी लापता है। इस कुदरती आफत में हलाक होने वाले 392 अफराद में से 389 नेपाल में, जबकि 3 पड़ोसी इलाके तिब्बत में हलाक हुए हैं। नेपाल के हुकाम के मुताबिक 910 अफराद लापता हैं, जबकि तिब्बत के हुकाम ने बताया कि मजीद 558 अफराद का कोई सुराग नहीं मिल सका है, जिससे सरहद के दोनों जानेब लापता अफराद की मजमूई तादाद 1468 हो गई है। इमदादी कारकुन जिंदा बच जाने वाले लोगों की तलाश और दरियाओं के किनारे और दूर दराज आबादी से बहकर आने वाली लाशों को तलाश करने में मसरूफ हैं, तमाम खतरा अभी टला नहीं है। खोटे कोसी दरियाई निजाम के सरचश्मा के नजदीक बनने वाली एक नई रुकावटी झील ने खदशात पैदा कर दिए हैं। अगर इसमें शगाफ पड़ा तो शदीद सैलाब का रौला आ सकता है, जिससे तबाही मजीद बढ़ सकती है और जारी इमदादी कार्रवाई में मजीद दुश्वारियां पैदा हो सकती हैं। नेपाल के सिक्योरिटी एहलकारों ने मुतासर जिलों से 800 से ज्यादा लोगों को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया है। इस तबाही के बाद भारत ने बड़े पैमाने पर बचाव और इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी हैं। वजारत खारजा के मुताबिक नेपाल में मौजूद 290 भारतीय शहरियों से राबता नहीं हो पा रहा है। भारत उनके बारे में मालूम हासिल करने और उनके बचाव के लिए फौरी कोशिशें कर रहा है। लापता भारतीय शहरियों में मुख्तलिफ रियासतों से ताल्लुक रखने वाले बिजली प्रोजेक्टों के कारकुन और सयाहों के ग्रुप भी शामिल हैं। वजीर खारजा डॉ जयशंकर ने कहा है कि सैलाब से मुतासर इलाकों में फंसे भारतीय शहरियों की मौजूदा सूरत हाल और उनकी खैरियत मालूम करने के लिए फौरी कोशिशें जारी हैं। उन्होंने कहा कि वजारत खारजा नेपाल के हुकाम, दीगर वजारतों, रियासती हुकूमतों, टूर ऑपरेटर्स और मुतल्लिका इदारों के साथ रबते में है। वजारत खारजा ने लापता अफराद का सुराग लगाने और उन्हें महफूज मकाम पर मुंतकिल करने में मदद की खातिर 24 घंटे काम करने वाला एक कंट्रोल रूम भी कायम किया है। भारत ने अब तक 84 भारतीय शहरियों को बचाया है। इनमें त्रिशूली एक रन ऑफ द रिवर पनबिजली प्रोजेक्ट के 63 वर्कर्स और तमिलनाडु के 21 अफराद शामिल हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नेपाल के वजीर आजम बालेन्द्र शाह से भी बात की और उन्हें भारत की जानब से इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर मुकम्मल इमदाद का यकीन दिलाया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल उज़्बेकिस्तान का दौरा करेंगे। वो वस्ती एशियाई मुल्क के रोजा दौरे पर जाएंगे। वजीर आजम उज़्बेकिस्तान के सदर शफकत मिर्जोयेव की दावत पर ताशकंद का दौरा करेंगे। इस दौरे के दौरान वजीर आजम सदर मिर्जोयेव के साथ वक्त की सतह की बातचीत करेंगे, ताकि दोनों मुल्कों के दरमियान स्ट्रेटजिक शराकत दारी को मजीद मजबूत बनाया जा सके। वजीर आजम नरेंद्र मोदी का यह उज़्बेकिस्तान का चौथा दौरा होगा। इससे कबल 2015, 2016 और 2022 में इस वस्ती एशियाई मुल्क का दौरा कर चुके हैं। उज़्बेकिस्तान के सदर शफकत मिर्जोयेव भी 2018 और 2019 में भारत का दौरा कर चुके हैं। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज में वस्ती एशियाई उमूर के प्रोफेसर राजन कुमार ने आकाशवाणी से गुफ्तगु करते हुए कहा कि वजीर आजम और उज्बेकिस्तान के दरमियान होने वाले मुसलसल दौरे इस बात को जाहिर करते हैं कि भारत के लिए उज्बेकिस्तान किस कदर अहमियत का हामिल है। दौरे के दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी और उज्बेकिस्तान के सदर शफकत मिर्जियोयेव तजारत और सरमायाकारी दिफा डिजिटल राबते तवानाई तालीम और आवाम से आवाम के रवाबित समेत मुख्तलिफ शोबों में बाहमी तआवुन का जायजा लेंगे और आइंदा के लिए लाहेमा मुरतब करेंगे। दोनों रहनुमा विकसित भारत 2047 और उज्बेकिस्तान 2030 के मुश्तरका तरक्याती विजन को आगे बढ़ाने के बारे में भी अपने ख्याल का तबादला करेंगे। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन आज से अमरीका का 6 रोजा दौरा करेंगी। अमरीका के अपने दौरे के दौरान वो शिकागो, एशविल और न्यूयॉर्क जाएंगी। वजीर खजाना शिकागो में मुमताज सरमायाकारों के साथ एक गोलमेज कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगी और प्राइवेट सेक्टर की सरकर्दा कंपनियों के सीईओज, सुबूर और आला नुमाइंदों से बातचीत करेंगी। शिकागो में मुंतखब कंपनियों के सीईओज और आला क्यादत के साथ दोतरफा और बिलमशाफा मीटिंगें भी होंगी। इन मीटिंगों में भारत में सरमायाकारी के मौके, इक्तिसादी हालात और भारत व अमरीका के दरमियान कारोबारी व सरमायाकारी शराकतदारी को मजबूत बनाने के तौर तरीकों पर भी तवज्जो मरकूज की जाएगी। मुहतरमा सीतारमन शिकागो यूनिवर्सिटी के पोल्स्की सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन का भी दौरा करेंगी, जहां वो कारोबारी सरगर्मियों, जिद्दत तराजी, टेक्नोलॉजी की तजारतकारी और भारत के तेजी से फैलते हुए स्टार्टअप और इख्तला के निजाम के साथ रवाबित मजबूत करने के सिलसिले में ख्यालात का तबादला करेंगी। वजीर खजाना अपने दौरे के दौरान शिकागो में भारतीय बिरादरी के अफराद से भी मुलाकात करेंगी। एशविल में मोहतरमा सीतारमन G20 के वज़राए खजाना और मरकजी बैंक के गवर्नरों के इजलास में भारतीय वफ्द की क़यादत करेंगी। ये इजलास अमरीका की G20 सदारत के तहत मुनक़िद हो रहा है। न्यूयॉर्क में मोहतरमा सीतारमन न्यूयॉर्क की सरकर्दा कंपनियों के सीईओज और आला नुमाइंदों के साथ सरमायाकारों की गोलमेज मीटिंग में शिरकत करेंगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने संस्कृत के आलमी दिन पर अपने नए ख्वाहिशात का इजहार किया है। जनाब मोदी ने कहा कि संस्कृत का आलमी दिन संस्कृत जबान के लाजवाल मालामाल विरसे को नुमाया करने के लिए श्रावण पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने उन तमाम भारतीय और गैर मुल्की लोगों की सताइश की जो संस्कृत सीख रहे हैं और सिखा रहे हैं। इस जबान के लाफानी विरसे को अगली नस्लों तक पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। श्रीलंका बहरिया के कमांडर वाइस एडमिरल डेमियन फर्नांडो कल तक भारत के सरकारी दौरे पर हैं। वजारत दिफा ने कहा है कि बुध से शुरू होने वाला उनके इस दौरे का मकसद भारत और श्रीलंका की बहरिया के दरमियान आपसी बहरी ताउन को बढ़ाना और इसे मजीद मुस्तहकम करना है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीका और कनाडा के दरमियान बढ़ती तजारती कशीदगी के दरमियान लेक ओंटारियो का नाम बदलकर लेक अमेरिका करने वाले एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत किए हैं। ये हुक्मनामा अमरीकी दाखिला सेक्रेटरी और जोग्राफियाई नामों से मुतालिक बोर्ड को सरकारी नक्शों और जियोग्राफिक नेम्स इन्फॉर्मेशन सिस्टम GNIS को अपडेट के लिए 30 दिन का वक्त देता है। ट्रंप ने कहा कि यह झील अहम अमरीकी इकतसादी और स्ट्रेटजिक वसीला है जो जहाजरानी, तजारत, ज़राअत, तवानाई और कौमी दिफा में मदद करती है। ट्रंप ने अहम झीलों के तहफ्फुज़ के लिए अमरीकी सरमायाकारी को भी वाज़ेह किया। इसी दौरान कनाडा के वजीर आजम मार्क कार्नी ने नाम की तब्दील को मुस्तरद करते हुए झील की मकामी ज़राए की निशानदेही की। जनाब कार्नी ने कहा कि कनाडा इसे लेक ओंटारियो ही कहता रहेगा, जो नाम माजी में भी राज था, आज भी इस्तेमाल किया जा रहा है और मुस्तकबिल में भी इस्तेमाल किया जाता रहेगा। भाइयों और बहनों के दरमियान खुसूसी प्यार और मोहब्बत भरे रिश्ते का त्यौहार रक्षाबंधन आज मुल्क भर में मनाया जा रहा है। इस मौके पर बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रंग बिरंगी राखियां बांधती हैं और उनकी खुशहाली, सेहत और भलाई के लिए दुआएं करती हैं। इसके बदले में भाई अपनी बहनों की हिफाजत और उनकी मदद का अहद करते हैं और उन्हें तहफ पेश करते हैं। चंद्र जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने रक्षाबंधन के मौके पर लोगों को मुबारकबाद दी है। मोहतरमा मुर्मू ने हर शहरी से अपील की कि इसी जज्बे के साथ विकसित भारत की जानिब आगे बढ़ते हुए खानदानों और बिरादरियों के दरमियान ताल्लुकात को मजबूत बनाने का अहद करें। سالانہ شری امرناتھ یاترا آج جموں کشمیر میں رکشا بندھن کے تہوار کے ساتھ اختتام

0: पजीर होगी। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदन ने ग्रैंड चेस टूर जीत कर तारीख रकम की है और ये मुकाबला जीतने वाले पहले भारतीय शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं। आखिर में खास खबरें एक बार और। नेपाल और तिब्बत में अचानक आने वाले तबाहकुन सैलाब में हलाकतों की तादाद बढ़कर 392 हो गई है, जबकि सरहद के दोनों जानेब 1468 अफराद अब भी लापता है। भारत ने नेपाल में फंसे हुए भारतीय शहरियों को वापस लाने की कोशिशें तेज कर दी हैं। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन का 6 रोजा अमरीकी दौरा आज से शुरू हो रहा है। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है।

मीडियम वेव 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की नशरियात आप सुन रहे हैं। पेशे अब तक की अहम खबरों की सुर्खियां। नेपाल और तिब्बत में अचानक आने वाले तबाहकुन सैलाब में हलाकतों की तादाद बढ़कर 392 हो गई है, जबकि सरहद के दोनों जानिब 1468 अफराद अब भी लापता हैं। भारत ने नेपाल में फंसे हुए भारतीय शहरियों को वापस लाने की कोशिशें तेज कर दी हैं। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन का 6 रोजा अमरीका दौरा आज से शुरू हो रहा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने लेक ऑन्टेरियो का नाम बदलकर लेक अमेरिका करने वाले एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत किए हैं। रक्षाबंधन का त्यौहार आज मुल्कभर में मनाया जा रहा है। 57 रोजा सालाना अमरनाथ यात्रा जम्मू कश्मीर में अख्ताम पजीर होगी और भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने तारीख साज कारनामा अंजाम दिया है। वो ग्रैंड चेस टूर जीतने वाले पहले भारतीय शतरंज खिलाड़ी बने।

गए हैं। ये थी अब तक की अहम खबरों की सुर्खियां। मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर आकाशवाणी से आप उर्दू सर्विस की नशरियात सुन रहे हैं। दिन के 1:15 होने को हैं। उर्दू सर्विस की पहली मजलिस की नशरियात का वक्त अब खत्म होता है। दिन में 3 बजे उर्दू सर्विस की दूसरी मजलिस की नशरियात लेकर हम एक मरतबा फिर हाजिर खदमत होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए।

0: ये कस्टमर केयर कहाँ है? मैडम
1: जी,
0: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
1: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
0: पर ये होगा कैसे?
1: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
0: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
1: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
0: बस
1: बस
0: समझ गया।
1: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: आप सुन रहे कार्यक्रम एक ही फिल्म से, और आज की फिल्म है इजाजत। और अब लौटते हैं उस कहानी के बारे में। जी हाँ, कहानी के बारे में बहुत कुछ हम बता भी चुके हैं। चलिए कहानी के बारे में बताते हैं कि महेंद्र की जिंदगी में सुधा जो होती है, उसकी पत्नी जो रेलवे प्लेटफॉर्म पर मिली थी, उससे पहले थी माया। माया यानी अनुराधा पटेल। माया और महेंद्र एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन माया शादी को अपने रिश्ते की अनिवार्य नहीं मानती, कि जरूरी नहीं मानती मंजिल की शादी होना जरूरी है। उधर परिवार और परिस्थितियों के दबाव में महेंद्र की शादी सुधा से हो जाती है। सुधा महेंद्र को चाहती है, वह अपने पति के साथ एक सामान्य वैवाहिक जीवन जीना चाहती है। पर महेंद्र जो होता है वो अतीत की यादों में खोया होता है और माया में अब भी मौजूद होता है, उसके बारे में सोचता है। महेंद्र और सुधा का रिश्ता इसलिए धीरे धीरे टूटने लगता है। आखिरकार दोनों अलग हो जाते हैं और फिर कई सालों के बाद एक रेलवे स्टेशन पर एक वेटिंग रूम में मिलते हैं। दोनों को अपनी बातें याद आती हैं। दोनों के पुराने रिश्ते होते हैं जो कि आमने सामने हो जाते हैं, पर अब उनके पास पुरानी शिकायतें नहीं होती बल्कि यादें होती हैं, और एक दूसरे का वो सम्मान कर पाते हैं। वाकई में फिल्म बहुत ही अच्छी है। पूरी भावनाओं पर कैद है, किस तरह से इंसान की भावनाएं सही होती है। और कभी कभी क्या होता है कि तीनों किरदार जब कहानी से आप देखेंगे तो तीनों सही लगते हैं, पर फिर भी एक मनमुटाव हो जाता है क्योंकि भावनाएं बहुत कुछ कहती हैं। और इस फिल्म में रेखा, नशरुद्दीन शाह और अनुपमा पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई। वाकई में फिल्म लाजवाब थी, अपने जमाने की सुपरहिट मूवी रही। और इसमें आपको एक बात बता दें, इस कहानी में सिर्फ यही तीन किरदार नहीं थे, एक किरदार और भी था जो दिखाई नहीं देता फिर भी पूरी फिल्म में मौजूद रहता है। वो है इस फिल्म का संगीत। वाकई इस फिल्म के जो भी गीत हैं आज भी यूं कहें कि बिल्कुल ताज़े लगते हैं। और फिल्म इजाजत का जो संगीत था वो दिया था महान संगीतकार आरडी वर्मन ने, यानी हमारे प्यारे पंचमदा ने। और गीत लिखे थे गुलजार ने। और इस फिल्म के जो मुख्य गीतकार हैं वो सब आशा भोंसले जी ने गाए थे। बहुत ही प्यारे प्यारे गीत इस फिल्म में। तो चलिए इस फिल्म का एक और प्यारा सा गीत सुनते हैं। वाकई में आपको भी बहुत कुछ याद आ जाएगा।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से, और आज की फिल्म है इजाजत। इस फिल्म के बारे में हम क्या कहें, इसका संगीत भी लाजवाब और कहानी भी एक भावनाओं के इर्द गिर्द घूमती है और बहुत कुछ कहती है, दिल की भावनाओं को पूरी तरह से व्यक्त करती है। इस फिल्म की अगर एक और बात कहें तो इस फिल्म में जो गुलजार साहब हैं उनको बेस्ट लिरिसिस्ट का फिल्म फेयर अवार्ड्स में मिला पुरस्कार मिला, और सुबोध घोष को बेस्ट स्टोरी का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। और इसके सभी गीत जो हैं वाकई बहुत पसंद किए गए, और आशा भोसले की आवाज़ यूँ कहें कि इन गीतों में बहुत ही लाजवाब लगती है। वाकई उनकी आवाज़ वैसे भी बहुत ख़ास है, और इनको इस फिल्म में फिल्म के कारण राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका के लिए। और इस फिल्म की एक बात कहें तो यूँ कहें कि गुलजार की कविता, दूसरी तरफ पंचमदा का संगीत और उस पर आशा भोंसले की आवाज, वाकई में कमाल कर लिया। ऐसा भाव रचा जो आज भी पुराना नहीं लगता, जब भी हम उनके गीत सुनते हैं तो वाकई झूम उठते हैं। और जो ये वाला जो गीत है मेरा बहुत ही फेवरेट है, तो सुनते हैं ये प्यारा सा गीत और सबको बिल्कुल अपनी जुबान पर उनकी होगा ही होगा ये गीत। तो सुनते हैं इस फिल्म का ये प्यारा सा गीत।

उस फिल्म का ये गीत इजाजत फिल्म का वाकई बहुत ही ज्यादा दिल को छू जाता है। ये ऐसे लगता है जैसे किसी पुराने रिश्ते की अलमारी खोल दी हो और उसमें हम सब पुरानी जो यादें हैं उनको संजो रहे हो। तो आज की इस एक ही फिल्म में बस इतना ही, और फिल्म की जो थी वो आज की फिल्म थी इजाजत, गुलजार की कलम, पंचमदा का संगीत, आशा भोसले की आवाज और रेखा और नशरुद्दीन शाह की अदाकारी वाकई लाजवाब थी। और एक ऐसी कहानी थी जिसका आखिरी शब्द अलविदा नहीं बल्कि इजाजत है। जी हाँ, रेखा और नशरुद्दीन शाह जो कि अपनी यादें पुरानी संजोए रखती है, रेखा वो उससे इजाजत लेती है कि अब हम दोनों खुशी खुशी अलग हो जाएं। और इसी तरह से ये फिल्म खत्म होती है और वाकई अगर आप देखेंगे तो आप जरूर पसंद करेंगे। चलिए हम भी अब आपसे कहना चाहेंगे कि मैं भी आपसे इजाजत लेना चाहूंगी इस कार्यक्रम को यहीं संपन्न करने की। तो मुझे यानी शोभा शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार, परंतु जाइएगा कहीं एक प्यारा सा गीत और आपके इंतजार में इसी फिल्म का यानी इजाजत फिल्म का।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही फिल्म से। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। अब से कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे।

पंजाब पहुंचे ने। साडे पत्रकार ने खबर दिती है कि वह पहला सचखंड श्री हरिमंदर साहब गए अते पंजाब ते देश की खुशहाली लई अरदास कीती। उन्होंने हरिमंदर साहब विखे सेवा भी कीती। किसान चौपाल विखे किसानां नूं मिलण तों पहला वह रखड़ पुन्या दे मौके ते गुरद्वारा बाबा बकाले विखे भी मत्था टेकणगे। रखड़ पुन्या हर साल बाबा बकाला विखे मनाया जाण वाला एक त्यौहार है जो सिर्फ रखड़ी की रवायत तक ही सीमित नहीं है सगो सिख धर्म के गौरवमय इतिहास विच एक महत्वपूर्ण मील पत्थर नूं भी दर्शाउंदा है क्योंकि धार्मिक तौर से इतिहासक स्थान नौवें सिख गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी नाल संबंधित है। केंद्रीय मंत्री वल्लों इस मौके एक जनतक प्रोग्राम नूं संबोधन करन दी भी उम्मीद है। ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਤੋਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਐਕਸ ਹੈਂਡਲ ਹੈ @AIRRNewsਜਲੰਧਰ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व संस्कृत दिवस दियां बधाईयां दित्तियां ने। एक सोशल मीडिया पोस्ट विच उन्होंने कहा कि विश्व संस्कृत दिवस श्रवण पूर्णिमा ते संस्कृत भाषा की सदीवी अमीरी नूं दर्शाउण लई मनाया जांदा है। उन्होंने कहा कि संस्कृत भारत के ज्ञान विचार अते रचनात्मकता का एक निरंतर साधन रही है अते इसका सकारात्मक प्रभाव अज भी कई खेतरां विच देखा जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जनधन योजना ने बेमिसाल पैमाने ते परिवर्तनशील नतीजे दिते ने जिसका पिछले 12 साल विच वड्डा प्रभाव पिया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट विच श्री मोदी ने कहा कि जनधन योजना देशभर विच माली समावेश नूं अगे वधाउण अते लोकां नूं मजबूत बनाउण विच अहम भूमिका निभा रही है। भारत विच इस समय 7 थावां ते 24 परमाणु ऊर्जा रिएक्टर चालू ने जिन्हां दी कुल स्थापित समर्था 8.78 गीगावाट है। परमाणु ऊर्जा विभाग मुताबिक 9 होर रिएक्टर निर्माण अधीन ने। परमाणु ऊर्जा भारत दे विकास दे राह दा एक अहम हिस्सा बन के उभरी है जो ना सिर्फ बिजली उत्पादन विच सगो सेहत संभाल खेतीबाड़ी अते वख-वख सनअती वरतों विच भी योगदान पाउंदी है। दिल्ली पुलिस ने स्पेशल सेल दे उत्तरी रेंज ने आईएसआई की हमायत प्राप्त पाकिस्तान आधारित एक कथित जासूसी नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। दिल्ली आधारित एक जोड़े को गिरफ्तार किया है जिसने 2024 तो सोशल मीडिया राही पाकिस्तानी इंटेलीजेंस ऑपरेटिव्स पीआईओज ले काम करने का इल्जाम है। दिल्ली पुलिस मुताबिक जोड़े ने कथित तौर पर पाकिस्तान आधारित हैंडलरों को लॉजिस्टिक सहायता प्रदान की थी जिस विच भारतीय सिम कार्ड प्राप्त करना और उन्होंने दुबई राही पाकिस्तान भेजना शामिल है। सिम कार्डा की वरतों कथित तौर पर पाकिस्तानी संचालकों वल्लों वटसएप खातों एक्टिवेट करन अते भारतीयों नाल संपर्क करन लई कीती गई सी। महाराष्ट्र के नासिक तो 450 टन तो वध प्याज नाल पहली कांदा एक्सप्रेस अज सवेरे दिल्ली पहुंच गई है। खपतकार मामले बारे मंत्रालय ने कहा कि सरकार ने मौसमी मांग की म्याद दौरान ढुकवी उपलब्धता अते सहायक कीमत स्थिरता नूं यकीनी बनाने लई बफर स्टॉकां की एक योजनाबद्ध टीचा मुखी निकासी शुरू की है। मंत्रालय ने कहा कि कांदा एक्सप्रेस पहलकदमी बफर प्याज नूं उत्पादक खेतरां तों खपत खेतरां तक ले जाण लई एक प्रभावशाली लॉजिस्टिक उपाय है। सप्लाई नूं सड़की आवाजाई राही होर प्रमुख खपत केन्द्र जिवे कि अमृतसर चंडीगढ़ जम्मू चेन्नई कोलकाता एर्नाकुलम गुवाहाटी वाराणसी लखनऊ ते पटना तक पहुंचाया जा रहा है। आज देशभर विच रखड़ी का त्यौहार मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उपराष्ट्रपति सी पी राधाकृष्णन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ते पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने रखड़ी के त्यौहार मौके सारे नूं बधाई दित्ती है। पंजाब विच जेल विभाग ने जेल कैदियों नूं भैणां भरावां दे प्यार ते सत्कार दा त्यौहार रखड़ी मनाउण दी इजाजत दित्ती है। विभाग ने राज दीआं सारीआं जेलां विच प्रबंध कीते ने ते कैदियों दीआं भैणां ते भरावां नूं रखड़ी बन्नण दी इजाजत दित्ती है। इस दे नाल ही सुरक्षा चिंतावां दा भी ध्यान रख्या गया जदों कि परिवारक मैंबरां नूं त्यौहार मनाउण लई आसान पहुंच दित्ती गई है। उधर सरहदी लोक सेवा समिति पंजाब वल्लों रखड़ी का त्यौहार भारत पाकिस्तान सरहद ते देश दी रख्या लई तैनात सीमा सुरक्षा बल दे जवानां नाल उत्साह नाल मनाया। भारत के दौरे ओलंपिक तमगा जेतू नीरज चोपड़ा ने 2026 डायमंड लीग फाइनल लिए क्वालीफाई कर लिया जो अगले महीने ब्रसल्स विच होगा। चोपड़ा ने स्टैंडिंग विच 12 अंक इकट्ठे किए। चोपड़ा दी दोवे कारगुजारी डायमंड लीग फाइनल विच जगह पक्की करने लई काफी सन। आखिर च खास खबर एक बार फिर दक्षिण पश्चिमी चीन के सिचुआन सूबे विच अज 5.1 तीव्रता दे भूचाल तो बाद नेपाल विच हड़ दी ताजा चेतावनी जारी की गई। भारत वल्लों नेपाल च फसे भारतीयों नूं कढ़ण लई कोशिशां तेज। सरकार ने भाखड़ा नंगल डैम की कंध 1.77 इंच चुकी होने दे सोशल मीडिया ते चल रही जाली वीडियो का खंडन किया है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान किसान चौपाल विच हिस्सा लैण ते रखड़ी के मौके ते किसानां नाल गल्लबात करन लई पंजाब विच। इस दे नाल ही साडा ए बुलेटिन खत्म हुंदा है। साडा अगला प्रादेशिक बुलेटिन शाम 6:20 ते होएगा। नमस्कार।

0: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं महताब आलम। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जनधन योजना मुल्क भर में माली शमूलियत को तेजी से आगे ले जाने और लोगों को बाख्तियार बनाने के सिलसिले में अहम रोल अदा कर रही है। नेपाल तिब्बत में आए अचानक तबाहकुन सैलाब से मरने वालों की तादाद बढ़कर 469 हो गई है। सरहद के दोनों अतराफ 1500 से ज्यादा लोग लापता हैं। वजारत खारजा ने इतला दी है कि नेपाल में 290 भारतीय शहरियों से राबता नहीं हो पा रहा है। सैलाब से मुतासर इलाकों में राहत और बचाव कार्रवाइयां जारी हैं। चीन के सिचुआन सूबे में 5.1 की शिद्दत वाले जलजले के बाद नेपाल में सैलाब से मुतालिक ताजा वार्निंग जारी की गई है। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन आज से अमरीका का दौरा कर रही हैं, जो 6 रोज तक जारी रहेगा। और पीएसए बुडापेस्ट स्क्वैश ओपन के फाइनल में आज रात भारत के विलावन सेंथिल कुमार का मुकाबला हंगरी के ब्लास फ्राकास से होगा। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जनधन योजना ने बेमिसाल मियार और इनकलाब अंगेज नतायज दिए हैं, जिसके गुजश्ता 12 साल में बेमिसाल असरात मुरतब हुए हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि जनधन योजना मुल्क भर में माली शमूलियत को तेजी से आगे ले जाने और लोगों को बाख्तर बनाने के सिलसिले में अहम रोल अदा कर रही है। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
1: प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत अब तक 59 करोड़ से ज्यादा बैंक खाते खोले जा चुके हैं, जिनमें मजमूई तौर पर 3,17,000 करोड़ रूपये से ज्यादा रकम जमा है। दुनिया की सबसे बड़ी माली शमूलियत की इस पहल ने तमाम भारतीय शहरियों के लिए बैंककारी खिदमात तक रसाई को मजीद आसान बनाया है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत 78% खाते देही या नीम शहरी इलाकों में खोले गए हैं, जबकि तकरीबन 56% खाते खवातीन के हैं। जनधन खाताधारों को 41 करोड़ से ज्यादा रुपए कार्ड जारी किए जा चुके हैं। इस स्कीम में लाखों अफराद, खसूसन मुआशरे के महरूम और पसमानदा तबकात को बैंककारी और माली खिदमात तक रसाई फराहम करके उनके समाजी और इक्तसादी हालात को बेहतर बनाने में मदद दी है। जनधन आधार मोबाइल जेएएम की तसलीज, जिसमें प्रधानमंत्री जनधन योजना मरकजी हैसियत रखती है, माली इमदाद की बराह रास्त और बगैर किसी रुकावट मुंतकली का एक मौसर निजाम साबित हुई है। प्रधानमंत्री जनधन योजना जैसी पहल के नतीजे में भारत का माली शमूलियत का इशारिया 2018 में 53.9 से बढ़कर 2026 में 67 हो गया, जो कर्ज, बीमा, बचत और डिजिटल अदायगियों तक लोगों की बढ़ती हुई रसाई को जाहिर करता है। दिल्ली से अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं कौलैन हैदर।
0: वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल से वस्त एशिया के मुल्क उज्बेकिस्तान का 2 रोजा दौरा करेंगे। वो ताशकंद जाएंगे। अपने दौरे के दौरान वजीर आजम उज्बेकिस्तान के सदर शफकत मिर्जियोयेव के साथ वफद की सतह की बातचीत करेंगे, ताकि दोनों ममालिक के दरमियान कलीदी शराकतदारी को मजीद मजबूत बनाया जा सके। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
2: उम्मीद है कि वजीर आजम अपने दौरे के दौरान ताशकंद में शास्त्री मेमोरियल का दौरा करेंगे। ताशकंद में लाल बहादुर शास्त्री की याद में कांसे का यह यादगारी मुजस्मा नस्ब किया गया है, जो भारत के तीसरे वजीर आजम थे। ये मुजस्मा शहर में शास्त्री स्ट्रीट पर वाकई है और इसकी नकाब कुशाई 1976 में की गई थी। इस यादगारी मुजस्मे को मकामी उज्बेक संतराश याको शापिरोव ने डिजाइन किया था। इस मुकाम पर भारत के सैयाह, सिफारतकार और कारोबारी अफराद अक्सर व बेशतर आते हैं और उन्हें खिराज अकीदत पेश करते हैं। तवक्को है कि वजीर आजम मोदी भी ओरिएंटल स्टडीज की ताशकंद स्टेट यूनिवर्सिटी में महात्मा गांधी सेंटर का दौरा करेंगे। ये सेंटर तारीख से मुतालिक तालीमी तहकीक और भारत के अदबियात, बिलखसूस हिंदी और दीगर भारतीय जबानों के फरोग के लिए काम करता है। इस सेंटर में उज्बेकिस्तान और भारत के दरमियान बाहमी ताउन को मुस्तहकम करने पर खसूसी तवज्जो दी जाती है। ताशकंद से सुशील चंद्र तिवारी की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं हुसैन अख्तर।
0: नेपाल और तिब्बत में अचानक आने वाले तबाहकुन सैलाब में हलाकतों की मजमूई तादाद बढ़कर 469 हो गई है, जबकि सरहद के दोनों जानिब 1545 अफराद अब भी लापता हैं। भूटे कोसी दरियाई निजाम के सरचश्मा के नजदीक बनने वाली एक नई रुकावटी झील ने खदशात पैदा कर दिए हैं कि अगर इसमें शगाह पड़ा तो शदीद सैलाब का रेला आ सकता है, जिससे तबाही मजीद बढ़ सकती है और जारी इमदादी कार्रवाईयों में मजीद दुश्वारियां पैदा हो सकती हैं। नेपाल के सिक्योरिटी अहलकारों ने मुतासरा जिलों से 800 से ज्यादा लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया है। इस दौरान आज चीन के जनूब मगरबी खित्ते के सिचुआन सूबे में 5.1 शिद्दत का जल्जला आया, जिसके बाद नेपाल में सैलाब का ताजा अलर्ट जारी किया गया। हुकाम ने दरिया में पानी की सतह में इजाफे के खतरे के सबब त्रिशूली इलाके में लोगों को दूसरी जगह मुंतकिल होने की हिदायत दी है। नेपाल पुलिस ने तिब्बत की तरफ डेम में दोबारा तुगयानी के सबब रिहायशियों, सिक्योरिटी अहलकारों और राहत के कामों में मसरूफ कारकुनान से कहा है कि महफूज मकामात पर चले जाएंगे। भारत ने बड़े पैमाने पर बचाव और इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी हैं। वजारत खारजा के मुताबिक नेपाल में मौजूद 290 भारतीय शहरियों से राबता नहीं हो पा रहा है। भारत उनके बारे में मालूमात हासिल करने और उनके बचाव के लिए फौरी कोशिशें कर रहा है। लापता भारतीय शहरियों में मुख्तलिफ रियासतों से ताल्लुक रखने वाले पन बिजली प्रोजेक्टों के कारकुन और सयाहों के ग्रुप भी शामिल हैं। वजीर खजाना एस जयशंकर ने कहा है कि वजारत खारजा नेपाल के हुक्काम दीगर वजारतों, रियासती हुकूमतों, टूर ऑपरेटर्स और मुतल्लिका इदारों के साथ राबते में है। भारत ने अब तक 84 भारतीय शहरियों को बचाया है। इनमें त्रिशूली 1 रन ऑफ द रिवर पनबिजली प्रोजेक्ट के 63 वर्कर्स और तमिलनाडु के 21 अफराद शामिल हैं। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। नेपाल में भयानक सैलाब के बाद अब बिहार में सैलाब का खतरा कम हो गया है। बुध की रात को गंडक दरिया के पानी के बहाव में इजाफे के बाद कल से पानी कम होना शुरू हो गया है। नायब वजीर आला और आबी वसायल के वजीर विजय कुमार चौधरी ने कहा कि फिलहाल दरिया का बहाव मामूल पर है।
3: गंडक नदी के पूरे प्रवाह में अभी जल स्तर भी ऊंचा नहीं था, बल्कि सामान्य से भी थोड़ा कम था। इसलिए जो भी पानी संभावित था या जो आया, उससे बहुत ज्यादा भयावह स्थिति नहीं बनी।
0: एहतियाती इकदाम के तौर पर गंडक दरिया से मुतासरा सभी 8 जिलों को अलर्ट रखा गया है। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन अमरीका के 6 रोजा दौरे पर रहेंगी, जो आज से शुरू हो रहा है। अमरीका के अपने दौरे के दौरान वो शिकागो, एशविल और न्यूयॉर्क जाएंगी। शिकागो में वजीर खजाना सरकर्दा और मुमताज सरमायाकारों के साथ एक गोलमेज कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगी और प्राइवेट सेक्टर के सरकर्दा सीईओज, सुदूर और सीनियर नुमाइंदों के साथ बातचीत करेंगी। एशविल में मोहतरमा सीतारमन G20 की अमरीकी सदारत में G20 के उदराय खजाना और सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स की मीटिंग में भारतीय वक्त की सबराही करेंगी। इस मीटिंग में जो 31 अगस्त और 1 सितंबर को होगी, अहम आलमी इक्तसादी और मालियाती उमूर पर तबादले ख्याल की गरज से G20 के मेंबर मुल्कों के वज़राए खजाना, सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स और सीनियर हुक्काम माशी अफसरान शिरकत करेंगे। भाइयों और बहनों के दरमियान खसूसी प्यार और मोहब्बत भरे रिश्ते का त्यौहार रक्षाबंधन आज मुल्क भर में मनाया जा रहा है। इस मौके पर बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रंग बिरंगी राखियां बांधती हैं और उनकी खुशहाली, सेहत और भाई के लिए दुआएं करती हैं। इसके बदले में भाई अपनी बहनों की हिफाजत और उनकी मदद का अहद करते हैं और उन्हें तहाय पेश करते हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर आवाम को मुबारकबाद दी है। भारत के विलावन सेंथिल कुमार कल रात सेमीफाइनल में अपने हमवतन खिलाड़ी वीर चोटरानी को एक बेहद दिलचस्प मुकाबले में 3-2 से शिकस्त देकर पीएसए बुडापेस्ट स्क्वैश ओपन के फाइनल में पहुंच गए हैं। अब विलावन आज रात फाइनल में हंगरी के मकामी और आर्मी नंबर 55 बलाज फराकास का सामना करेंगे। आखिर में खास खबरें एक बार और। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जनधन योजना मुल्क भर में माली शमूलियत को तेजी से आगे ले जाने और लोगों को बाख्तर बनाने के सिलसिले में अहम रोल अदा कर रही है। नेपाल तिब्बत में आज अचानक तबाहकुन सैलाब से मरने वालों की तादाद बढ़कर 469 हो गई है। सरहद के दोनों अतराफ 1,500 से ज्यादा लोग लापता हैं। वजारत खारजा ने इत्तला दी है कि नेपाल में 290 भारतीय शहरियों से राबता नहीं हो पा रहा है। सैलाब से मुतासरा इलाकों में राहत और बचाव कार्रवाइयां जारी हैं। चीन के सिचुआन सूबे में 5.1 की शिद्दत वाले जल्जले के बाद नेपाल में सैलाब से मुतालिक ताजा वार्निंग जारी की गई है। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन आज से अमरीका का दौरा कर रही हैं, जो 6 रोज तक जारी रहेगा। और पीएसए बुडापेस्ट स्क्वैश ओपन के फाइनल में आज रात भारत के विलावन सेंथिल कुमार का मुकाबला हंगरी के बलास फराकास से होगा। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
4: गुड आफ्टरनून, दिस इज आकाशवाणी। आई एम अनुजा कुमार विद द मिड डे न्यूज। The headlines. Prime Minister Narendra Modi says Jan Dhan Yojana is playing a significant role in advancing financial inclusion and empowering people. Death toll in devastating Nepal-Tibet flash floods rises to 469. Over 1,500 people remain missing on both sides of border. External Affairs Ministry informs 290 Indian nationals in Nepal remain uncontactable. Rescue and evacuation efforts underway in flood-hit areas. Fresh flood warning issued in Nepal as 5.1 magnitude earthquake hits Sichuan province of China. Finance Minister Nirmala Sitharaman to be on a six-day visit to US beginning today. And India's Vilavan Senthil Kumar to take on Balázs Farkas of Hungary in the final of PSA Budapest Squash Open tonight. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has said that the Jan Dhan Yojana has delivered unprecedented scale and transformative outcomes with an unparalleled impact in the last 12 years. In a social media post, Mr. Modi said that Jan Dhan Yojana is playing a significant role in advancing financial inclusion and empowering people across the country. Under the Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana, more than 59 crore accounts have been opened so far, with total deposits amounting to 3,17,000 crore rupees. The scheme was launched by Prime Minister Modi on this day in 2014. As the world's largest financial inclusion initiative, the scheme continues to redefine access to banking for all Indians. We have a report.
5: Under the Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana, more than 59 crore accounts have been opened so far, with total deposits amounting to 3,17,000 crore rupees. As the world's largest financial inclusion in the initiative, the scheme continues to redefine access to banking for all Indians. The average deposit per account is 5,356 rupees. Under the Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana, 78% of the accounts have been opened in rural or semi-urban areas, and approximately 56% of the accounts are owned by women. Over 41 crore rupee cards have been issued to Jan Dhan account holders. The scheme has also empowered millions, particularly the marginalized sections, to access banking and financial services to improve their socio-economic conditions. Due to initiatives like Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana, India's financial inclusion index has risen from 53.9 in 2018 to 60. This year, showcasing deeper access to credit, insurance, saving and digital payments. Anupam Mishra, Akashwani News, Delhi.
4: The death toll from devastating flash floods in Nepal-Tibet has risen to 469, while 1,545 people remain missing on both sides of the border. Rescue teams are searching riverbanks and isolated settlements for survivors and recovering bodies swept downstream. However, concerns remain over a newly formed barrier lake near the source of the Bhote Koshi River system. Authorities fear that a breach could trigger another surge of water, worsening the disaster and hampering rescue operations. Nepalese security personnel have evacuated more than 800 people from the affected districts. Meanwhile, a magnitude 5.1 earthquake struck Sichuan province in southwestern China today, prompting a fresh flood alert in Nepal. Authorities ordered evacuations in the Trishuli area amid fears of rising river levels. Nepal police said a water dam on the Tibet side had burst again and urged residents, security personnel and rescue workers to move to safer locations. Road construction between Trishuli and Rasua has also been suspended, with heavy machinery withdrawn as water levels rose. Residents have described losing homes, shops and belongings after floodwaters surged through the Trishuli and Dhobi River areas, forcing them to flee. Rescue operations are continuing despite difficult terrain and weather conditions. India has launched a major rescue and relief operation. The External Affairs Ministry said 290 Indian nationals in Nepal remain uncontactable, with efforts underway to trace them and coordinate their rescue. So far, India has rescued 84 nationals, including 63 workers from the

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जनधन योजना की वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और लोगों को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका। नेपाल तिब्बत सीमा पर अचानक आई भीषण बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 469 हुई। सीमा के दोनों ओर 1500 से अधिक लोग लापता। विदेश मंत्रालय ने कहा, नेपाल में 290 भारतीय नागरिक अब भी संपर्क से बाहर। बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में बचाव अभियान जारी। चीन के सिचुआन प्रांत में 5.1 तीव्रता के भूकंप के बाद नेपाल में फिर बाढ़ की चेतावनी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से अमेरिका की 6 दिन की यात्रा पर। और भारत के वेल्विन सेंथिल कुमार पीएसए बुडापेस्ट स्क्वाश ओपन में आज रात फाइनल में हंगरी के बालास फारकाश से मुकाबला करेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री जनधन योजना के आज 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये देश में वित्तीय समावेशन के परिदृश्य को बदलने की दिशा में प्रमुख पड़ाव है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में जनधन योजना के अभूतपूर्व परिवर्तनकारी परिणामों का प्रभाव बेमिसाल है। श्री मोदी ने कहा कि जनधन योजना वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और देश के लोगों को सक्षम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इस योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में आज ही के दिन किया था। योजना के तहत अब तक 59 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं। ये योजना सभी भारतीयों के लिए बैंकिंग पहुँच को सुलभ बना रही है। योजना के तहत महिलाओं के लगभग 56% खातों सहित 78% खाते ग्रामीण या अर्ध शहरी क्षेत्रों में खोले गए हैं। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: नेपाल तिब्बत सीमा पर अचानक आई विनाशकारी बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 469 हो गई है और सीमा के दोनों तरफ 1545 लोग लापता है। नेपाल के सुरक्षा कर्मियों ने प्रभावित जिलों में 800 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। एक रिपोर्ट।
2: भोटेकोशी नदी प्रणाली के स्रोत के पास नई झील बन गई है। इसके टूटने से पानी के एक और तेज बहाव की आशंका है, इससे बचाव कार्यों में बाधा आ सकती है। इस बीच आज चीन के सिचुआन प्रांत में 5.1 तीव्रता के भूकंप के बाद नेपाल में बाढ़ की नई चेतावनी जारी की गई है। अधिकारियों ने त्रिशूली क्षेत्र में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने का आदेश दिया है। नेपाल पुलिस ने बताया कि तिब्बत की ओर स्थित एक बांध फिर टूट गया है। वहां के निवासियों और सुरक्षा कर्मियों से सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहा गया है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल में फंसे 290 भारतीय नागरिक अब भी लापता हैं। उनका पता लगाने और सुरक्षित निकालने के प्रयास जारी हैं। खोज और बचाव कार्यों में सहायता के लिए नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से बात कर उन्हें सहायता का आश्वासन दिया। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
0: नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने कल अमरीका की उप विदेश मंत्री एलिसन हुकर से टेलीफोन पर बातचीत की। अमरीका ने नेपाल में राहत और बचाव कार्यों के लिए 5 लाख अमरीकी डॉलर की सहायता की घोषणा की है। श्रीलंका ने भी नेपाल को 10 लाख अमरीकी डॉलर की आर्थिक मदद देने की घोषणा की है। इस बीच नेपाल में बाढ़ के बाद बिहार में बाढ़ का खतरा फिलहाल टल गया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: नेपाल में आई भीषण बाढ़ के बाद बिहार में गंडक नदी से बाढ़ का खतरा फिलहाल टल गया है। बुधवार रात गंडक नदी के जल प्रवाह में बढ़ोतरी के बाद अब इसमें लगातार कमी दर्ज की जा रही है। उप मुख्यमंत्री और जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बताया कि फिलहाल गंडक नदी में जल प्रवाह सामान्य है। उन्होंने कहा कि नेपाल की भोटेकोशी, त्रिशूली और नारायणी नदियों से होते हुए पानी के गंडक तक पहुंचने के दौरान जल प्रवाह की गति कम हुई है, जिससे बिहार में इसका प्रभाव भी कम हो गया है। श्री चौधरी ने बताया कि एहतियात के तौर पर गंडक नदी से प्रभावित सभी 8 जिलों को अलर्ट पर रखा गया है। जल संसाधन विभाग की टीमें तटबंधों की 24 घंटे पेट्रोलिंग और निगरानी कर रही हैं। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे एक फर्जी वीडियो का खंडन किया है, जिसमें भाखड़ा नांगल बांध की दीवार 1.77 इंच झुकने का दावा किया गया है। वीडियो में कहा गया है कि बांध में दरार आने से दिल्ली सहित कई शहरों में बाढ़ आ सकती है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि बांध के तनाव खिंचाव

0: समुद्र दाब और रिसाव के सभी मापदंड निर्धारित सीमाओं के भीतर हैं और बांध पूरी तरह सुरक्षित है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
1: अपडेट रहे, आगे रहे, expert@airnewshindi और इंस्टाग्राम पर एआईआर न्यूज अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से 6 दिन की अमरीका यात्रा पर हैं। यात्रा के दौरान वे शिकागो, एशविल और न्यूयॉर्क जाएंगी। एक रिपोर्ट।
2: वित्त मंत्री शिकागो में प्रमुख निवेशकों के साथ गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगी और निजी क्षेत्र की प्रमुख कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, अध्यक्षों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगी। इन बैठकों में भारत में निवेश के अवसर, आर्थिक दृष्टिकोण और भारत अमेरिका व्यापार तथा निवेश साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होगी। श्रीमती सीतारामन शिकागो विश्वविद्यालय के पोल्सकी सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन का दौरा करेंगी। वित्त मंत्री अपनी यात्रा के दौरान शिकागो में भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी बातचीत करेंगी। एशविले में सुश्री सीतारामन की अध्यक्षता में आयोजित G20 सदस्य देशों के वित्त मंत्री, केंद्रीय बैंक गवर्नर तथा वरिष्ठ आर्थिक अधिकारी वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। ये बैठक 31 अगस्त और 1 सितंबर को होगी। समाचार कक्ष से मैं वीरेंद्र कौशिक।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की यात्रा पर कल उज्बेकिस्तान जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद का दौरा करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ शिष्टमंडल स्तर की बातचीत करेंगे।
1: अपनी 2 दिनों की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ताशकंद में शास्त्री मेमोरियल जाने की उम्मीद है। ताशकंद शहर में शास्त्री स्ट्रीट पर भारत के तीसरे प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री के सम्मान में एक कांसे की प्रतिमा स्थापित की गई थी। 1976 में शुरू हुए इस मेमोरियल को स्थानीय उज्बेक मूर्तिकार याकोव शापिरो ने डिजाइन किया था। ताशकंद आने वाले भारतीय पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि देने के लिए बड़ी संख्या में यहां पहुंचते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ताशकंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ ओरिएंटल स्टडीज में महात्मा गांधी सेंटर जाने की भी उम्मीद है। ये सेंटर भारतीय साहित्य, खासतौर पर हिंदी और दूसरी भारतीय भाषाओं के इतिहास और विकास पर एकेडमिक रिसर्च करता है और उज्बेकिस्तान और भारत के बीच आपसी सहयोग को मजबूत करने पर केंद्रित है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज्बेकिस्तान।
0: दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ की उत्तरी रेंज ने आईएसआई समर्थित पाकिस्तान के एक जासूसी नेटवर्क का पर्दाफाश कर दिल्ली के एक दंपति को गिरफ्तार किया है। दंपति पर 2024 से पाकिस्तानी खुफिया एजेंट्स के लिए काम करने का आरोप है। पुलिस के अनुसार दंपति कथित तौर पर पाकिस्तान के हैंडलर्स को सहायता प्रदान करता था। इसमें भारतीय सिम कार्ड खरीदना और उन्हें पाकिस्तान भेजना शामिल था। भारत में सिम कार्ड खरीदने के लिए दिल्ली के स्थानीय लोगों को भर्ती किया गया था। महाराष्ट्र के नाशिक से 450 टन से अधिक प्याज लेकर पहली कांदा एक्सप्रेस आज सुबह दिल्ली पहुंची। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा है कि सरकार ने प्याज की उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतों में नियंत्रण के लिए बफर स्टॉक से प्याज की नियंत्रित बिक्री शुरू की है। चेन्नई, कोलकाता, एर्नाकुलम, गुवाहाटी, वाराणसी, लखनऊ, पटना, चंडीगढ़, जम्मू और अमृतसर जैसे अन्य प्रमुख उपभोग केंद्रों तक भी प्याज की आपूर्ति की जा रही है। सरकार के मूल्य नियंत्रण बफर स्टॉक का प्याज 35 रूपये प्रति किलोग्राम की रियायती दर पर बेचा जा रहा है। भारत में 60 स्थानों पर 24 परमाणु ऊर्जा रिएक्टर संचालित हैं, जिनकी कुल स्थापित क्षमता 8.78 गीगावाट है। परमाणु ऊर्जा विभाग के अनुसार 9 अतिरिक्त रिएक्टर निर्माणाधीन हैं। परमाणु ऊर्जा भारत के विकास पथ का एक महत्वपूर्ण घटक बनकर उभरी है, जो न केवल बिजली उत्पादन बल्कि स्वास्थ्य सेवा, कृषि और विभिन्न औद्योगिक अनुप्रयोगों में भी योगदान देती है। भारत के परमाणु ऊर्जा मिशन का लक्ष्य 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता प्राप्त करना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
1: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
0: जी आकर

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में विभिन्न स्कूलों और संगठनों में रक्षाबंधन का पर्व मनाया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि रक्षाबंधन का महत्व भाई बहन के रिश्ते से कहीं आगे है। उन्होंने कहा कि राखी का पवित्र धागा परिवार के सदस्यों, मित्रों और यहाँ तक कि पेड़ों को भी बांधा जा सकता है, जो प्रेम और देखभाल के बंधन का प्रतीक है। राष्ट्रपति ने पर्यावरण संरक्षण के महत्व पर जोर देते हुए बच्चों से पौधों और पेड़ों की देखभाल करने का भी आग्रह किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि रक्षाबंधन प्रेम, विश्वास और सुरक्षा के सुंदर बंधन का प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ये त्योहार सभी के बीच स्नेह और सद्भाव के बंधन को मजबूत करने तथा खुशहाली और समृद्धि का पर्व है। पंजाब में जेल विभाग ने आज कैदियों को भाई बहनों के बीच प्रेम और सम्मान का त्यौहार रक्षाबंधन मनाने की अनुमति दी है। विभाग ने सुरक्षा संबंधी नियमों का ध्यान रखे जाने की पूरी व्यवस्था की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज समाज सुधारक और दूरदर्शी नेता महात्मा अयंकाली की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री सिंह ने कहा कि महात्मा अयंकाली ने अपना जीवन शोषितों के अधिकारों और सम्मान के लिए संघर्ष करने में समर्पित कर दिया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भी महात्मा अयंकाली और श्री नारायण गुरु की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री राधाकृष्णन ने कहा कि महात्मा अयंकाली को एक अग्रणी समाज सुधारक और दूरदर्शी नेता के रूप में याद किया जाता है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि श्री नारायण गुरु की आध्यात्मिक समझ और समानता तथा मानवीय गरिमा के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता ने लोगों को भेदभाव से ऊपर उठाया। मौसम विभाग ने उड़ीसा और बिहार में कल तक तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और पूर्वोत्तर राज्यों में भी आज तेज बारिश की संभावना है। अगले दो दिन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में तेज हवाओं के साथ आंधी की संभावना है। कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में भी कल तक ऐसे ही मौसम का अनुमान है। मौसम विभाग ने मछुआरों को 1 सितम्बर तक अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में न जाने की सलाह दी है। भारत के वेल्विन सेंथिल कुमार आज रात पीएसए बुडापेस्ट स्क्वाश ओपन फाइनल में हंगरी के खिलाड़ी बालास फारकाश से मुकाबला करेंगे। कल रात सेमीफाइनल में सेंथिल कुमार ने भारत के ही वीर चोटरानी को हराया। भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने 2026 डायमंड लीग फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। प्रतियोगिता अगले महीने ब्रसल्स में आयोजित होगी। नीरज ने रैंकिंग में 12 अंक हासिल किए। उन्होंने जून में दोहा मीट में 85.69 मीटर भाला फेंक कर चौथा स्थान हासिल किया था। उन्होंने इस महीने की शुरुआत में लुसानी मीट में 88.05 मीटर का सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ दूसरा स्थान प्राप्त किया। भारतीय महिला हॉकी टीम ने कल जर्मनी को 3-1 से हराकर एफआईएच विश्व कप में 5वां स्थान हासिल किया। पिछले 52 वर्षों में यह भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। इससे पहले 1974 में हुए पहले विश्व कप में टीम चौथे स्थान पर रही थी। इस प्रदर्शन से अगले महीने जापान में होने वाले एशियाई खेलों से पहले टीम का आत्मविश्वास चरम पर है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जनधन योजना की वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और लोगों को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका। नेपाल तिब्बत सीमा पर अचानक आई भीषण बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 469 हुई। सीमा के दोनों ओर 1500 से अधिक लोग लापता। विदेश मंत्रालय ने कहा, नेपाल में 290 भारतीय नागरिक अब भी संपर्क से बाहर। बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में बचाव अभियान जारी। चीन के सिचुआन प्रांत में 5.1 तीव्रता के भूकंप के बाद नेपाल में फिर बाढ़ की चेतावनी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से अमरीका की 6 दिन की यात्रा पर। और भारत के वेल्विन सेंथिल कुमार का पीएसए बुडापेस्ट स्क्वाश ओपन में आज रात फाइनल में हंगरी के बालास फारकाश से मुकाबला। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्र प्रेस चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम एक ही कलाकार में आप सभी का स्वागत है। जी हां, स्टूडियो की घड़ी के अनुसार वक्त दोपहर के 2:30 हो चुके हैं और आज के कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ, आपकी अपनी दोस्त चेतना शर्मा। स्वीकार करें प्यार भरा नमस्कार और सबसे पहले आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। जी हाँ, एक ही कलाकार, हम हमेशा की तरह इस कार्यक्रम में आपके लिए लेकर आते हैं एक ऐसा कलाकार जो फिल्मी दुनिया से जुड़ा हुआ है। जब हम बात करते हैं बॉलीवुड के सुनहरे दौर की, यानी 60 के दशक की, 70 या फिर 80 के दशक की, तो हमारे दिमाग में ना एक से बढ़कर एक हिट फिल्मों के पोस्टर्स जो है ना वो आने लगते हैं। और कुछ ऐसी फिल्में होती हैं जो कहीं ना कहीं एक जहन में, एक दिमाग में एक छाप सी छोड़ जाती है। लविंग टोक्यो, जुगनू, ड्रीम गर्ल, आजाद और वॉरेंट, इन सभी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में एक ही बात कॉमन थी, वो था उसका निर्देशन। जी हाँ, उसका डायरेक्शन। इन सभी फिल्मों का डायरेक्शन जो था ना वो बेहद बेहद कमाल था। आज हम बात करने जा रहे हैं हिंदी फिल्मों के, जी हाँ, हिंदी फिल्मों के मशहूर डायरेक्टर प्रमोद चक्रवर्ती के बारे में। शुरुआत करते हैं कार्यक्रम के बेहद खूबसूरत एक फिल्म रही इनकी ड्रीम गर्ल, किशोर कुमार की आवाज के साथ।

जी हाँ दोस्तों, ड्रीम गर्ल फिल्म से गीत रहा किशोर कुमार की आवाज में, और इस गीत को लिखा आनंद बख्शी ने और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। हम बात करें निर्माता निर्देशक प्रमोद चक्रवर्ती के बारे में। जी हाँ दोस्तों, प्रमोद चक्रवर्ती का जन्म 15 अगस्त 1929 को ढाका में हुआ। महज 17 से 20 वर्ष की आयु में आंखों में सिनेमा के सपने लिए मुंबई वो आ पहुंचे। शुरुआत में ना कोई जान पहचान थी और बिल्कुल अनजान शहर, वो भी बेहद भीड़ से भरा हुआ। छोटे मोटे काम कर दिन वो गुजारा करते थे, लेकिन सिनेमा के जो सपना था ना, जी हाँ, फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखने का जो सपना था और जुनून था, उन्हें मरने नहीं दिया प्रमोद जी ने। उन्होंने मशहूर निर्देशक राज खोसला के साथ फिल्म मिलाप 1955 में आई ये फिल्म, और फिल्म सीआईडी जो कि 1956 में थी, इन फिल्मों में उन्होंने बतौर असिस्ट काम किया। और ऐसे ही जैसे हमने बात करी सीआईडी फिल्म की, तो आइए सीआईडी फिल्म से शमशाद बिकम की आवाज में सुनते हैं इस गीत को।

जी हाँ दोस्तों, हमने बताया कि बतौर असिस्ट काम किया प्रमोद चक्रवर्ती ने इस फिल्म में राज खोसला के साथ, और सीआईडी फिल्म से गीत रहा शमशाद बेगम की आवाज में, और इस गीत को लिखा मजरू सुल्तानपुरी ने और संगीत दिया ओपी नैयर ने। बेहद खूबसूरत गीत फिल्म सीआईडी से। और 1956 में बनी सीआईडी फिल्म के बाद आया साल 1958 का। जी हाँ, जब उन्होंने गुरुदत्त और जॉनी वॉकर के साथ सस्पेंस और थ्रिलर से भरपूर फिल्म 12 ओ क्लॉक में बतौर निर्देशन डेब्यू किया।

0: क्या मचल नहीं न खो गया कहीं कहीं जवां है रुख समा हंसे कहां है दिल।
1: जी हाँ दोस्तों, ये गीत रहा 1958 में बनी फिल्म 12 o'clock से। मोहम्मद रफी की आवाज में बेहद खूबसूरत गीत और संगीत दिया इस गीत को ओपी नैयर ने। आप जुड़े हुए एक ही कलाकार से और आज के कलाकार हैं निर्देशक प्रमोद चक्रवर्ती। कार्यक्रम में मैं हूँ आपके साथ चेतना। तो बात को आगे बढ़ाते हैं। जी हाँ, 1958 और की बात चलते हैं 1962 की तरफ। प्रमोद जी ने अपने प्रोडक्शन हाउस प्रमोद फिल्म की नींव रखी 1962 में। 1964 में आई उनकी फिल्म जिद्दी। जी हाँ, इस फिल्म में जॉय मुखर्जी ने काम किया। आशा भोसले के साथ उन्होंने बेहद एक सफल फिल्म दी और खूबसूरत उन्होंने निर्देशन दिया इस फिल्म में। लेकिन 1966 में जो फिल्म आई लव इन टोक्यो, उसने तो इतिहास ही रच दिया।

सबको दीवाना, ये तो शहर मस्ताना जिसका अंदाज माशुकाना।

जी हाँ दोस्तों, अभी आपने गीत सुना 1966 में बनी फिल्म जवान, जी हाँ लव इन टोक्यो फिल्म से। और अगर निर्देशक प्रमोद चक्रवर्ती के निर्देशन के कुछ खास बातों पर ध्यान दें तो विदेशों में जो शूटिंग है, जी हाँ वो पहले भारतीय निर्देशकों में से थे जिन्होंने विदेशों में जैसे कि जापान में व्यापक रूप से शूटिंग की, और हेलीकॉप्टर से उन्होंने बहुत सारे शॉट लेने का भी प्रैक्टिकल एक प्रैक्टिस की। और हर जोनर पर, जी हाँ हर एक फिल्म उन्होंने हर एक टाइप की फिल्म को बनाने का पूरा पूरा उनको श्रेय जाता है। और सबसे ज्यादा जैसे कि रोमांटिक और कॉमेडी से भरपूर फिल्म की बात की जाए तो तुमसे अच्छा कौन है, एक्शन और थ्रिलर से भरपूर फिल्म की बात की जाए तो वो रही वॉरेंट, और सस्पेंस, जी हाँ पासपोर्ट फिल्म को हम कैसे भूल सकते हैं, हर तरह का सिनेमा उन्होंने बनाया। और धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की जोड़ी के साथ तो उनकी काफ़ी ट्यूनिंग को पसंद किया जाता था, वो काफ़ी इनके साथ में कंफर्टेबल रहते थे। उनकी शानदार फिल्में रहीं जुगनू, नया ज़माना, ड्रीम गर्ल और आज़ाद, ऐसी सुपर डुपर फिल्में प्रमोद चक्रवर्ती जी ने हमें दी। तो धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की इस फिल्म, जी हाँ जुगनू फिल्म से इस गीत को सुनते हैं।

जी हाँ दोस्तों, आप जुड़े हुए हैं एक ही कलाकार से और कार्यक्रम में मैं हूँ आज आपके साथ चेतना। हम बात कर रहे थे मशहूर निर्माता निर्देशक प्रमोद चक्रवर्ती के बारे में। जी हाँ, उम्मीद है कि आज का कार्यक्रम आपने पसंद किया होगा। लेकिन अब आपसे विदा लेने का समय आ गया है, लेकिन आपसे मिलूंगी मैं कुछ ही मिनटों में लेकर कार्यक्रम। जी हाँ, लेकर कार्यक्रम मिलेंगे हम मैटिनी मेलोडी से। लेकिन आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए इंद्रप्रस्थ चैनल और मुस्कुराते रहिए। पुरानी फिल्मों के जो गीत हैं उनका मजा लेते रहिए।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही कलाकार और स्टूडियो की घड़ी के अनुसार वक्त दोपहर के 2:59:40 हुए हैं। आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से और ठीक 3 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम मैटिनी मेलोडीज़।

आदाबर्स, ये आकाशवाणी है। अब उर्दू सर्विस की दूसरी मजलिस की नशरियात का आगाज होता है। हमारी नशरियात मीडियम एफ सी 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप यूज़ ऑन एयर और डीडी फ्री डिश पर सुन रहे हैं।

टाइम 4 बजे फिल्मी नगमों का सफर शुरू होगा जो 4:50 तक जारी रहेगा। 4:50 पर आप एक बार फिर खबरें सुन सकेंगे और शाम 5 बजे उर्दू सर्विस की आज की दूसरी मजलिस की नशरियात का इख्तिताम।

0: I mean, ये खराब हमारे यहां से आज शाम 5 बजे तक नष्ट होने वाले प्रोग्रामों का खुलासा। ये आकाशवाणी है, आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस की नशरियात। समय 3:05 में अब खबरें नशर की जाएंगी।
1: ये आकाशवाणी है, अब आप हुसैन अख्तर से खबरें सुनिए। नेपाल तिब्बत में आए अचानक तबाहकुन सैलाब से मरने वालों की तादाद बढ़कर 469 हो गई है। सड़क के दोनों अतराफ 1,500 से ज्यादा लोग लापता हैं। वजारत खारजा ने इत्तला दी है कि नेपाल में 290 भारतीय शहरियों से राबता नहीं हो

0: Yes, I mean, इसी समय के साथ मेरी पसंद प्रोग्राम अब खत्म होता है। आकाशवाणी ही आप सुन रहे हैं और सर्विस की ऐश्वर्यात रिजामिन पेश है मारूफ अदाकार शशि कपूर का लिया गया इंटरव्यू। आपसे गुफ्तगू की है जनाब इकबाल वारसी ने।
1: शशि कपूर साहब, उर्दू सर्विस के लिए आप अनजान नहीं है, इससे पेशतर भी आप तशरीफ ला चुके हैं। आपको शायद याद हो, अब से तकरीबन 7 या 8 साल पहले हमने अपने स्टूडियोज में आपको जहमत दी थी और आपने एक इंटरव्यू अपने हमारे सामने के लिए रिकॉर्ड करवाया था। आज फिर खुशकिस्मती से मौका मिला है आपसे बात करने का, तो सबसे पहले तो हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे कि आपने इतना अपना कीमती वक्त निकालकर मौका दिया हमारे लिए, हमारे सामने के लिए। सबसे पहले मेरे सामने जो सवाल है वो ये है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि वो इंसान को वैसे में मिलती हैं और कुछ खुद इंसान अपनी मेहनत, लगन और जो उसका जहन होता है वो उसे अता करता है। तो आपके साथ जो फन है, आर्ट है, उसकी जो एक रिवायत भी है जिसे आपका वर्षा कहा जा सकता है, यानी खानदान से आपको मिला है, और दूसरा आपका अपना शऊर है, अपना तजर्बा है, अपनी मेहनत है, अपनी लगन है, और इन दोनों के मिलाप से आप शशि कपूर बनते हैं। मेरी मुराद है फिल्म के शशि कपूर। तो आपकी शख्सियत में इन दो चीजों के अलावा क्या कोई और भी चीज है जिसे आप अपनी जात या अपनी पर्सनैलिटी, अपनी शख्सियत या अपने फन का हिस्सा समझते हो?
2: सबसे पहले तो भाई आपके प्रोग्राम जो जो भाई बहन सुनते हैं सबको मेरी तरफ से आदाब। मैं बहुत अच्छी और बहुत प्योर उर्दू बोल नहीं पाता हूं बिकॉज मेरी परवरिश हुई थी बंबई में
1: जी,
2: और मैं मिशन स्कूल में पढ़ा था वहां। खैर, थोड़ी बहुत जो है उर्दू हम लोगों ने सीखी फिल्मों के द्वारा, और हालांकि मैंने जुनून मैंने ही बनाई थी और उसमें उर्दू ही बोली और बहुत सी और पिक्चरों में उर्दू भाषा बोली है, उर्दू जबान बोली है। मैं कोशिश तो करूंगा कि आपके आपके सवालों में जवाब दे सकूं।
1: शुक्रिया।
2: आपने भी ये जो सवाल किया है, ये सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि कोई जरूरी नहीं है कि बहुत ही अच्छे कलाकार या बहुत ही अच्छे इंसान का बेटा बहुत ही अच्छा कलाकार हो या बहुत ही अच्छा इंसान हो। हाँ, मैं ये अपनी खुशकिस्मती समझता हूं, ये बहुत ही अच्छी बात हुई है मेरी जिंदगी में कि मुझे श्री पृथ्वीराज कपूर जैसे पिता मिले और मुझे उनके बेटे का मौका ऊपर वाले ने दिया, बेटे होने का मौका दिया ऊपर वाले ने। खैर साहब, और उनसे मैंने बहुत सी ढेर सारी चीजें सीखी और सबसे सबसे बड़ी चीज, सबसे अव्वल चीज उन्होंने मुझे सिखाई वो ये थी कि इंसान को इंसानियत से ताल्लुक रखना चाहिए।
1: वाह।
2: सबसे पहले द ह्यूमन बीइंग
1: जी,
2: जो कहते हैं या ह्यूमैनिटी कहते हैं, वो आती है।
1: सही।
2: उसके बाद बाकी चीजें आती हैं। बाकी ये जरूर बात है, ये जरूरी बात है कि पापा जी ने, पृथ्वीराज जी ने हमें सारे बच्चों को एक्टिंग सिखाई पृथ्वी थिएटर के द्वारा।
1: सही।
2: और उनके जरिए आज जो भी कुछ हैं वो पापा जी के जरिए हैं। और अब राज कपूर साहब की आप एक्टिंग देख लीजिए, या राज कपूर साहब हमारे बड़े भाई साहब जो हैं, पिता समान हैं, उनके आप पिक्चर देख लीजिए, वो बहुत ही अलग हैं शमी कपूर साहब से। शमी कपूर साहब की आप एक्टिंग देख लीजिए, उनकी पिक्चर देख लीजिए, उनकी पिक्चरें, उनकी बनाई हुई पिक्चरें, उनकी एक्टिंग।

0: एक बात इसी से जोड़ा वही सवाल है कि आपको खुद किस तरह के रोल पसंद है, आप किस तरह के रोल करना चाहते हैं?
1: देखिए आई थिंक यानी जो एक्टर हो या एक्टर अपने आप को कहलाए वो हर किस्म उसे हर किस्म का रोल करना चाहिए।
0: नहीं करना चाहिए से मुराद नहीं है आपकी अपनी पसंद।
1: मेरी पसंद अपनी पसंद क्या है? मेरी अपनी पसंद आप देख लीजिए साहब, मैंने द हाउस होल्डर में काम किया था बहुत साल पहले, उसके बाद शेक्सपियर वाला में काम किया था, फिर पिक्चर आई थी सिद्धार्थ
0: जी,
1: उसमें मुश्किल सा रोल था उसमें भी काम किया था, फिर कलयुग उसमें भी किया था, फिर रोमांटिक साइड में एक मुश्किल किस्म का रोल था, नेगेटिव टाइप का जुनून में भी था
0: जी जी,
1: वो भी किया। अब विजेता में एक मैच्योर्ड फादर का रोल किया है, वो भी एक कैरेक्टर पार्ट है, वो किया है। कभी कभी में भी किया था और अभी बसेरा में भी आया है, तो अलग अलग किस्म के रोल्स हैं। तो क्या कि एक एक थोड़ा बहुत ट्रूथ अगर उसमें आ जाए तो बात बन जाती है कैरेक्टराइजेशन में, जो कि बहुत ही मुश्किल होता है स्पेशली फिल्म में, क्योंकि फिल्म में एक्टर को बहुत डिपेंड करना पड़ता है राइटर पे, फोटोग्राफर पे, साउंड रिकॉर्डिस्ट पे, और इवेंचुअली साहब जाके प्रोजेक्शनिस्ट पे, जो कि सिनेमा में होता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, डिपेंड करने की बात की है आपने दूसरे लोगों पर, तो मेरा ख्याल ये है कि डायरेक्टर का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। तो आप जो फिल्म में काम करते हैं तो पूरी तरह डायरेक्टर के ही कहने पर चलते हैं, या कभी कभी ऐसा भी होता है या आपने कोशिश की है कि खुद आप इजाफा कर लें उसमें, या कुछ घटा लें या कुछ बढ़ा लें?
1: ये तो डिपेंड करता है डायरेक्टर्स पे, बहुत से डायरेक्टर्स हैं जो कि आपको सिर्फ यानी कि एक्साइट करते हैं, आपको मंजिल तक पहुंचने के लिए रास्ता दिखा देते हैं, बाकी चल के नहीं दिखाते हैं। तो डायरेक्टर अगर अच्छा हो तो काम अच्छा हो ही जाता है। और मुझे ये यानी कि बहुत गौरव है, मुझे फख्र की बात है, यानी बहुत फख्र इस बात का कि मैंने अच्छे अच्छे डायरेक्टर्स के साथ काम किया है। शुरू से ही बिमल रॉय साहब के साथ मैंने काम किया था, और यश चोपड़ा साहब के साथ काम किया, फिर इवेंचुअली राज कपूर साहब के साथ काम किया, हालांकि मैंने सबसे पहली पिक्चर राज कपूर साहब के साथ ही की थी, बाद में आवारा भी की थी उनके साथ, और फिर जेम्स आइवरी साहब के साथ काम किए मैंने, और फिर इवेंचुअली जाके शाम बेनेगल साहब के साथ मैंने काम किया, और बहुत ही मजा आया। और वो आप रिजल्ट कलयुग में देख सकते हैं
0: जी,
1: जुनून में देख सकते हैं।
0: शशि कपूर साहब, अभी कुछ अरसे से एक ट्रेंड चला है हमारी हिंदुस्तानी फिल्मी सनत में मल्टी स्टार फिल्में बनाने का, तो आप इस बारे में क्या ये समझते हैं कि मल्टी स्टार जो फिल्में हैं क्या वही कामयाबी की जमानत है, या इसके अलावा अगर फिल्में बनाई जाएं तो वो ज्यादा कामयाब हो सकती है, या मल्टी स्टार फिल्में बननी चाहिए या नहीं बननी चाहिए?
1: देखिए जी, हर स्क्रिप्ट की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, अपनी अपनी यानी कि नेसेसिटीज होती हैं, और उसके हिसाब से ही चलना चाहिए। और ये जो सडनली लोग जो मल्टी स्टार अनाउंस कर देते हैं और स्क्रिप्ट बाद में बनाते हैं, ये सब एक किस्म के प्रपोजल्स होते हैं, एक बिजनेस टैक्टिक्स हैं, सेंसेशनलिज्म हैं, और मैं इन चीजों में बिलीव नहीं करता हूं। हाँ, जबकि आपको अच्छी स्क्रिप्ट मिले और उस स्क्रिप्ट में आपको पता चले कि नहीं साहब इसमें इक्वल आपको स्टार्स चाहिए और ढेर सारे कैरेक्टर्स हैं, इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स हैं, और ये इम्पोर्टेंट स्टार्स अगर इसमें काम करें तो ही जस्टिफाई कर सकेंगे, तब ठीक है, जरूरी है और बड़ी लाजमी चीज है। मगर खामखा बिना किसी फाउंडेशन के, बिना किसी जरूरत के अगर सिर्फ मल्टी स्टारर्स बनाई जाएं तो इट्स अ वेस्ट ऑफ मनी, और ये प्रूव हो चुकी है बात, क्योंकि बहुत सी ढेर सारी मल्टी स्टारर्स चली नहीं है अभी रिसेंटली।
0: आपने अभी स्क्रिप्ट की बात की, तो मुझे स्क्रिप्ट की बात पर एक सवाल जहन में आया है, हालांकि बड़ा अजीब सा लग रहा है मुझे खुद भी पूछते हुए, लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछूंगा जरूर कि क्या फिल्म इंडस्ट्री ऐसी एक आजाद बिल्कुल रविश इख्तियार नहीं कर सकती कि आपके पास सिर्फ कैमरा हो और स्क्रिप्ट ना हो और आप अपने सामने दुनिया को इस तरह देखें कि फिल्म बन जाए लेकिन उसका कोई एक किरदार ना हो बल्कि हजारों जो किरदार हैं वो उस फिल्म का रूप जो है वो धार लें?
1: ये तो आप वो बात कर रहे हैं जो कि फ्रांस में बहुत देर पहले हो चुकी थी, सिनेमा वेरिटी में
0: जी
1: बिना स्क्रिप्ट के पिक्चरें बनाई जाती थी, और कुछ लोगों ने अच्छी बनाई जैसे गोडार्ड थे, शबरॉल थे, और कुछ लोगों ने बहुत

ये आकाशवाणी है, आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस की शुरुआत मीडियम वेव से 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर। जी सामिन, अब शाम के 4 बजने को है और शुरू करते हैं फिल्मी नगमों का सफर।

अनित कुमार और अलका याग्निक की आवाजों में सामीन, जीवन एक संघर्ष फिल्म का ये दो गाना आप सुन रहे थे। आइए अब आज का अर्जुन फिल्म का आवाजें लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की।

चालबाज फिल्म का दो गाना मोहम्मद अजीज और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ों में अभी आपने सुना। ये अब सुनते हैं विनोद राठौड़ को, फिल्म है बाजीगर।

रविदास और अनुराधा पौडवाल की आवाजों में राम लखन फिल्म का ये दो गाना समय आप सुन रहे थे। आइए अब रूप कुमार राठौड़ को सुनते हैं। फिल्म है बॉर्डर।

मीन बिलराम फिल्म का दो गाना आशा भोसले और सुरेश वाडकर की आवाजों में आपने सुना। आइए अब प्रोग्राम के आखिर में आपको सुनवाते हैं कुमार सानू को। फिल्म है फूल और कांटे।

0: मुमताज सरमायाकारों के साथ एक गोलमेज कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगी और प्राइवेट सेक्टर के सरकर्दा सीईओ सुदूर और सीनियर नुमाइंदों के साथ बातचीत करेंगी। एशविल में मोहतरमा सीतारमन G20 की अमरीकी सदारत में G20 के वज़राए खजाना और सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स की मीटिंग में भारतीय वफद की सरबराही करेंगी। न्यूयॉर्क में मोहतरमा सीतारमन न्यूयॉर्क की सरकर्दा कंपनियों के सीईओ और सीनियर नुमाइंदों के साथ सरमायाकारों की एक गोलमेज कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगी। ईरान के वजीर खारजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि अगर अमरीका रवैये में तब्दीली लाए और जबरो दबाव का रास्ता तर्क कर दे तो वाशिंगटन के साथ फिर से सिफारतकारी का रास्ता अपनाया जाना मुमकिन है। जनाब अराग़ची ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अमरीका को एतमाद बहाल करना चाहिए, दूसरों का एहतराम करना चाहिए और हमारे हकूक को तस्लीम करने के अलावा अपने वादों पर बरकरार रहना चाहिए। उन्होंने कतर के वजीर आजम और वजीर खारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान सानी के साथ हालिया बातचीत को मुस्बत और नतीजा खेज करार दिया। अलबत्ता अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ फौरी तौर पर बातचीत के इम्कान को मुस्तरद कर दिया और कहा कि ईरान के खिलाफ अमरीकी फौजी कार्रवाइयां खत्म नहीं की जा सकती। भाइयों और बहनों के दरमियान खुसूसी प्यार और मोहब्बत भरे रिश्ते का त्यौहार रक्षाबंधन आज मुल्क भर में मनाया जा रहा है। इस मौके पर बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रंग बिरंगी राखियां बांधती हैं और उनकी खुशहाली सेहत और भलाई के लिए दुआएं करती हैं। इसके बदले में भाई अपनी बहनों की हिफाजत और उनकी मदद का अहद करते हैं और उन्हें तहाइफ पेश करते हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जमहूरिया CP राधाकृष्णन और वजीर आजम नरेन्द्र मोदी ने इस मौके पर अवाम को मुबारकबाद दी है। भारत के वेलवन सेंथिल कुमार कल रात सेमीफाइनल में अपने हमवतन खिलाड़ी वीर चोटरानी को एक बेहद दिलचस्प मुकाबले में 3-2 से शिकस्त देकर PSA बुडापेस्ट स्क्वैश ओपन के फाइनल में पहुंच गए हैं। आज रात फाइनल में हंगरी के मकामी और आलमी नंबर 55 बालास फरकास का सामना करेंगे। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। नेपाल तिब्बत में आए अचानक तबाहकुन सैलाब से मरने वालों की तादाद बढ़कर 469 हो गई है। सरहद के दोनों अतराफ 1500 से ज्यादा लोग लापता हैं। वजारत खारजा ने इत्तला दी है कि नेपाल में 290 भारतीय शहरियों से राबता नहीं हो पा रहा है। सैलाब से मुतासर इलाकों में राहत और बचाव कार्रवाइयां जारी हैं। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी है, आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस की नशरियात। सामीन शाम का 5 बजे चाहता है उर्दू सर्विस की आज की दूसरी मजलिस की नशरियात का इख्तिताम होता है। रात 9:15 पर आज की तीसरी मजलिस की नशरियात लेकर फिर हाजिर खिदमत होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत।
2: नमस्कार, आकाशवाणी वर्ल्ड सर्विस फैमिली ए पंजाबी सेवाए शाम दे 5 बजे में हो साडी दूजी सभा शुरू हुंदी है। सभा दी शुरुआत सब तो पहला समाज फरमाओ सराय की प्रोग्राम जोक माहिती।

मैं गीता कटारिया तुहाडे सामने हाजिर हाँ सूफी संत मलूक दास जी दे जीवन दे बारे विच जानकारी गिन के। संत मलूक दास जी दा जन्म 1574 विच इलाहाबाद दे कड़ा जिले विच थिया हई। उन्हां दे पिता जी दा नाम लाला सुंदर दास खत्री हई। इन्हां दे त्रै भीरा हन। इन्हां दे बचपन विच उन्हां दा नाम मल्लू हई। छोटे लाल तो ही उन्हां को कविता लिखण दा बहुत शौक हई। ओ बचपन तो ही उदार ते कोमल दिल दे इंसान हन। संत मलूक दास जी किसी भी जाति धर्म दे व्यक्ति को भेदभाव कहना करें दे हन। ओ सबको एक जैसा ही समझते हन। हिना कारण तो ही मुगल सम्राट औरंगजेब ने भी उन्हां को बहुत सम्मान दिता है और दू गांव भी उन्हां को भेंट स्वरूप दिते हन। हिना ने 21 रचनाएं लिखे हन जिंदे विचों कुछ मैं तुहानू दसेंदी हां। अलखवाणी, भगत विरुदावली, गुरु प्रताप, ज्ञान बोध,

पुरुष विलास, भगत बछावली, रतन खान, राम अवतार, लीला, साखी, सुख सागर, दस रत्न। संत मलूकदास जी दा आखना है कि पत्थर पूजन के बजाय अगर ऐसा किसी दुखी इंसान दा दुख दूर कर सकूं ता परमात्मा बहुत खुश थींदन। ऐसा को परमात्मा दे कुल वर्णन दा रस्ता मिलदे। हिना दे जीवन दी है कि यो जी घटना मैं तुहाकू सुणदी हां जिंदे नाल हुना को ज्ञान दी प्राप्ति थई आई। संत मलूकदास जी एक बार अपने गुरु कोल पुछण लगे कि ऐसा नैमिक क्षेत्र विच आ त गए से लेकिन साडे खावा पीवण दा इंतजाम किवें थी से। गुरु ने आख्या भगवान अपने बंदिया को कदा भी भुखा नहीं रावण देंदे, वो अपने आप ही इंतजाम करे दन हुना दे खावण दा। संत मलूकदास जी सोचण लगे कि ये किवें थी सकते, मैं भगवान की परीक्षा गिंदा। एक बार वह जंगल विच वट वृक्ष के उत्ते चढ़ के पै गए। जंगल विच चरवाहा ने अपनी रोटी की पोटलियां वृक्ष की टहनियां ते लटका रखे हैं। सवेरे तो शाम थी गई, संत मलूकदास उथे पेड़ के उत्ते ही बैठे रह गए। शाम के वक्त उथों डाकू का काफिला निकला, वो सारे आराम करने वास्ते वट वृक्ष के थले ही बह गए ते उन्हां को भुख भी लगी है। उन्होंने दिखाया कि वट वृक्ष की टहनिया ते पोटलियां टंगे वेन। उन्होंने पोटली उतार के दिखा तो उनके विच रोटी आई, लेकिन डाकुआ के सरदार ने रोटी खावण वास्ते मना कर दिता। वो आखण लग्या कि थी सकदे ही रोटी दे विच किसी ने जहर मिला के रखा होवे, पहले असा को पड़ताल कर गिननी चाहिए वल ही रोटी को खाना चाहिए। वो पुछण लगे असा किए करे सू पड़ताल ही दी। उन्हां दी नजर गई वट वृक्ष के उत्ते बैठे संत मलूकदास जी के उत्ते। डाकुआ ने उनको थले उतारा और उन्हां को आख्या कि रोटी खा। उन्होंने सोचा कि अगर ये रोटी खावण दे बाद जिंदा रह गया तो असां ये भी रोटी खा गए सू, और अगर इनकी मृत्यु थी गई तो असां रोटी छोड़ दे सू। मलूकदास जी ने रोटी खावण वास्ते मना कर दिता, लेकिन डाकुआ ने मार मार के उन्हां को रोटी खवाई। घटना तो संत मलूकदास जी को ज्ञान की प्राप्ति थी और उन्होंने सोचा कि भगवान चाहे जीए भी होवे अपने भक्तों को भुखा नहीं रहन दे सकता। तो उन्होंने लिखा अजगर करे ना चाकरी, पक्षी करे ना काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। मतलब यह है कि अजगर कोई नौकरी नहीं करेंदा और ना ही पक्षी कोई काम करेंद। मलूकदास जी के आखण का मतलब यह है कि सब दे दाता हुए जेड़े राम है ना, वो धरती ते आवण वाले हर जीव दा पेट भरे ने। चाहे जरिया कोई भी होवे वो किसी नूं भुखा नहीं सुमण देंदे। जेड़े वट वृक्ष दे थले उन्हां को ज्ञान दी प्राप्ति थई है वो सीतापुर जिले विच अज भी मौजूद है। सत्संग सुनण वास्ते उन्हां दे कोल लोगां दी बहुत भीड़ लगी रहिंदी है, जिंदे विच हर जाति धर्म दे लोग हुंदे हन। उन्हां दी प्रसिद्धि इतनी दूर दूर तक है कि लोग इन्हां दी गाल भी मनेंदे हन और इन्हां दा सम्मान भी बहुत करेंदे हन। उन्हां दा जीवन काल 108 साल है। 1682 दे विच ओ परमात्मा दे चरणां दे विच विलीन थी गए। संत मलूकदास जी दे कुछ दोहे इस प्रकार हैं। वहां न कबहु जाइए जहां हरि का नाम, दिगंबर के गांव में धोबी का क्या काम। मलूकदास जी आखदे हन कि उत्थां कदे भी नहीं वड़ना चाहिए जिथा हरि दा नाम नहीं गिदा वेंदा। जिथा परमात्मा दा नाम गिदा वेंदा होवे हमेशा उथे दी राह पकड़नी चाहिदी है। दिगंबर दा मतलब है निवस्त्र जिहड़े रांदन। अगर उन्हां दे गांव विच कोई धोबी चलावे सी तां उनको तां कोई काम ना मिल सी, क्योंकि उथा तां कोई कपड़े गै नहीं पैंदा। आखण दा मतलब यह है कि जिहड़ा व्यक्ति अध्यात्मिक है, साधक है, जिहड़ा परमात्मा दा नाम किंदे हुना लोगां दा साथ नहीं करना चाहिदा जेड़े परमात्मा को कह नहीं मनेंदे और जिन्हां दा परमात्मा दे नाल कोई मतलब ही कह नहीं। जहां जहां बच्चा फिरे तहां तहां फिरे गाए, कहे मलूक जहां संत जन तहां रमैया जाए। मलूकदास जी आखदे न कि जिथा जिथा बछड़ा वेंदे उनकी मां यानी गऊ माता भी उथों उथों वेंदी है। कहे मलूक जहां संत जन तहां रमैया जाए, मतलब कि भगवान राम उत्थां आप ही चले वेंदे जिथा हुना दे भक्त हुंदे, जेड़े परमात्मा को प्रेम करेंदे भगवान आपे ही हुना दे कोल उन्हां दे पिछों पिछों उथे पहुंच वेंदे। परमात्मा दिल दे भाव

0: गिंटन। दया धर्म हृदय बसे बोले अमृत बैन, ते ऊंचे जानिए जिनके नीचे नैन। मलूकदास यखे दिन कि जिन्हें दिल विच हृदय विच धर्म रूपी दया बसती है, हुना दी बोली विच अमृत मिठी वाणी है। ते ऊंचे जानिए मतलब है कि हुना को ही उच्चा समझो, जिंदे अखा हमेशा झुके रावन। आखंड का तात्पर्य है कि ऐसा व्यक्ति ही महान है जिंदे हृदय विच हमेशा दया भावना प्रेम है। वो सब नाल प्रेम नाल गाल करें दे और घमंडी कहनी। हुना ने हिंदू है विच महान व्यक्तियां दी पहचान दसी है। जो तेरे घट प्रेम है तो कहीं कहीं न सुनाओ, अंतर जामी जानी है अंतरगत का अभाव। संत मलूकदास जी कहते हैं तेरे दिल विच अगर परमात्मा दे प्रति प्यार है आराधना है तो हमको डसन की लोड़ क्या नहीं। अंतरयामी परमात्मा हर किसी दे दिल विच वसते। ओ परमात्मा दिल दे भाव जान दे। आखन का मतलब है तो आपको परमात्मा को कुछ ही बार बार दसन की लोड़ क्या नहीं, वो सब जाने जान है। जीती बाजी गुर प्रताप ते माया मोह निवार, कहे मलुक गुरु कृपा ते उतरा भवचल पार। मलुक दास जी कहते हैं कि मैं अपने जीवन रूपी बाजी जीत गीती है। अपने गुरु दे प्रताप तो मेरे गुरु दी इतनी महानता है कि हुना दी वजह ते मैं अपने जीवन दी भी बाजी जीत गीती है। मेको माया मोह तो मुक्ति मिल गई है। मलुक दास जी कहते हैं मैं ही संसारिक जीवन को उद्धार पा गया, भाव सागर तो भी पार थी गया। जीवो ते प्यारे अधिक लागे मोही राम, बिन हरि नाम नहीं मुझे और किसी से काम। जीवन विच जितने भी लोग हैं हुना को सब तो प्यारे मेको राम हैं। बिन हरि नाम नहीं मुझे हिंदा मतलब है कि हरि दे बिना मेरी जिंदगी का कोई मतलब ही कहनी, कोई अर्थ ही कहनी। अगर प्रभु का नाम है मेरा जीवन तार गए। हिंदा मतलब है कि जीवन विच कोई यो जा बंदा नहीं जेड़ा परमात्मा दा नाम गिने ते ना तरे। बेश फकीरी जय करे मन नहीं आवे हाथ, दिल फकीर जे हो रहे साहिब तिनके साथ। संत मलूकदास जी कहते हैं कि फकीर दा सिर्फ भेष बदल गिनना ही ना कुछ के नहीं। अगर उन्हें अपने मन दे अंदर मैल भरया हुआ है तो हुंदा फकीर वाला भेष कोई कम ना आसी। जेड़े परमात्मा दा नाम गिनते वो भगवान हुंदे हमेशा नाल रहंदे। सबको साहिब बंधते हिंदू मुसलमान, साहिब तिनको बंधता जिसका ठोर ईमान। परमात्मा को हिंदू मुसलमान सारे धर्म दे लोग मनेंदे, लेकिन परमात्मा सिर्फ हुंको मनेंदे जेड़े लोगां दे विच ईमानदारी सच्चाई है इंसानियत है। परमात्मा हमेशा हुंको अपना परम भक्त मनेंदे। मलूकवाद ना कीजिए क्रोधे दे बहाए, हार मनु अनजाने बकबक करे मलाए। इना मतलब है कि किसी भी व्यक्ति दे नाल वार वाद विवाद नहीं करना चाहिदा। सारी जगह ते अज्ञानी बने रहो ते अपना गुस्सा पानी दी तरह बहा लियो। अगर कोई अज्ञानी बहस करेंदे तो तुस मौन थी बनो। गलत बोलने वाला व्यक्ति भी आपे ही मौन थी वैसे।
1: सुनन आलियो धार्मिक होवना चीते जरूरी है सूफीवाद। अमीर खुसरो तुंगहिन के बुल्ले शातोड़ी सारा ने धार्मिक होण ते जोर देता है। कविता दे रिवाज विच पाकिस्तानी उर्दू शायरी, पश्तो कविता, पंजाबी शायरी, सिराइकी कविता, बलूची ते कश्मीरी कलाम शामिल हैं। जिथे लोगां दे मन भाव दे सूफी कवियां दी शायरी पढ़न ते गावन भी चाहुंदी है। सूफीवाद को आम किताब वाले कार नहीं पढ़िया वेंदे। हाँ सूफियाना कलाम जडन कलाकार गावदे हैं ना ता एक समा बज वेंदा है। आओ सुनेंदे हाँ नुसरत फतेह अली खान ते साथियां दा गाया एक कलाम।

संतोष कुमार का गाया सुफियाना कलाम। मैं तो हाको दसेंदी हां कि भारत विच पहला तो ही लोग भक्ति संगीत सुनदे हई, ता सूफी संगीत जडन आया हई ता फौरन लोगां दे हां को भावन लगा ता सफला रहा, क्योंकि सूफी कविता सिर्फ गीत जा कविता नहीं होंदी, इस विच उपदेश देते रहंदे हन, जिंदगी को सवारन कीते, सामाजिक बुराइयां मिटावन कीते, इस कीते ए छेती लोगां दे हां को भा गए। अमीर खुसरो को सूफी गीत संगीत दा पियू आखा वेंदा है, उन्हां दे कलाम कवाली अलिकार हन, गजल कता रुबाई उन्हां दे बेरूप हिन। अमीर खुसरो दा एक छोटा जिहा शेर है, जो पै आवन को कह गए अजहू न आए। एक होर शेर है जिस विच अमीर खुसरो ने परिवार ते रिश्तियां दी गाल कीती है, असा तहां बाबुल तेरे पिंजरे दी चिड़ियां, सवेर कीते उड़ जा सा बाबल, मेकू कानू व्याहे परदेस। ते हुण मैं तुहाकू सुनवेंदी हां बीबी नूरां दा गाया सुफियाना कलाम।

0: ਸਮੇਂ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵੱਲ। ਅਗਲਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਝਲਕੀ ਦਾ। ਝਲਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਝਲਕੀ ਪਖੰਡੀ ਬਾਬੇ ਜਿਸ ਦੇ ਰਚਨਾਕਾਰ ਨੇ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਚੰਗੇਰੀਆ। ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ।
1: बाबा जरूरी करवाए आजा मेरे पास आजा।
2: बल्ले बल्ले बाबा जी एक ही होया मंत्र पढ़ी जा रहे हो एक ही होया
1: की करिए बच्चा पुराने मंत्र बोल बोल के बाबा कलेच अक गए ने उपरों कोई गाक भी नहीं आ रहा इसलिए इस मंत्र दा जाप मजबूरन कर रहे हैं बच्चा।
2: बल्ले बल्ले बाबा जी जेकर तुहाडा चंचल मन आकी गया है तो तुसी बाबे क्यों बने कोई होर पखंड मेरा मतलब कोई होर धंधा कर लेंदे।
1: ओए तू साडे डेरे करन की आया है
2: बाबा जी नोट कमाउन नोट बाबा जी दी ओट नोटी नोट नोटी नोट
1: बच्चा बाबा जी भी किसे होर काम लई नहीं आए पर तू कौन है बच्चा ना सदी ना बुलाई ते मैं लारे दी ताई।
2: बल्ले बल्ले बाबा जी पैसे कमाउन कोई होर काम भी तो तुसी कर सकते सी पर मेरा मतलब मेहनत मजदूरी।
1: ओए चेलियो ओए कौन है जो पुठे सीधे सवाल पूछ रहा है ध्यान रखियो किते खुफिया पुलिस दा बंदा ता नहीं बड़ा सलाहकार कोई मार।
3: ओए बाबा जी नु पुठे सीधे सवाल ना पूछ किते ज्वाइन करन तो पहला सस्पेंड ना हो जाई।
1: कौन है जो पुठे सीधे सवाल पूछ रहा है ध्यान रखियो किते खुफिया पुलिस दा बंदा ते नहीं वड्डा

0: जय बाबा जी दी, जय बाबा जी दी। बाबा जी थानू कितना पता चलिया कि मेरा नाम बेबी है? बाबा जी एक ही बुड़बुड़ा रहे हो, मैं कुछ समझी नहीं।
1: बाबा जी तो जानी जान ने, सब कुछ जान जाते ने।
0: बाबा जी तुसी हो बाबा घड़ी च जिन्हा दा बड़ा ही ना है।
2: यस बेबी, जिस दे कम ना होन पूरे उना दा कम कराउंदे ने बाबा घड़ी च।
0: बाबा जी तुसी बहुत पहुंचे हुए जापदे हो सुख नाल।
3: जी बीबा जी ये तो बहुत ही पहुंचे हुए ने, इन्हां नू कोई भी बुलावे भावे ना बुलावे ए ते अपने आप ही पहुंच जांदे ने।
2: बाबे नाल मजाक करदा है, बाबा भस्म कर देंगे या शराब दे देंगे।
1: बाबा जी शांति शांति, कुड़ी नू वेखो ते इस दा इलाज करो।
2: यस बेबी, व्हाट हैपेंड विद यू, की तकलीफ है तेनू?
0: बाबा जी आई एम वेरी टाइट, मैं बहुत तंग हूं।
2: तंग नी कुड़िये, जीन थोड़ी जी खुली पाया कर।
0: व्हाट आर यू सेइंग बाबा जी?
1: बाबा जी वो अपनी मुश्किल दसना चाहती है, तुसी गले ला के मेरा मतलब है ध्यान ला के सुनो।
0: भगत जी आजकल कुंडली दा केड़ा जमाना रहा है, कहो ता आधार कार्ड दिखा देवा, नहीं ता पैन कार्ड दिखा देवा।
2: इधर उधर दिया गला ना कर कुड़िये, तू चोरी की है।
0: बाबा जी मैं जिस मुंडे नु प्यार कर दी हाँ ओ मुंडा मेनू कोई रिस्पांस नहीं दे रहा।
2: असी तेनु फुल रिस्पांस देवांगे, तू सानू प्यार करके ता देख।
1: बाबा जी कोई कड़ी गल करो, मसी मसी लगा कही है बोल रही।
2: बेबी मेरा मतलब असी फुल रिस्पांस देवांगे, फुल बटा फुल तेरा मसला हल करांगे।
0: बाबा जी वेरी गुड न्यूज फॉर मी।
2: बेबी उस मुंडे का नाम की है?
0: बाबा जी उसका नाम है मंगा।
2: मंगा मुंडा बिल्कुल नहीं चंगा, तेरी चॉइस बिल्कुल गलत है, तेरी राशि मुताबिक तेनू उस मुंडे नाल प्यार करना चाहिए जिसका नाम कके ते शुरू हुंदा होवे।
0: बाबा जी तुहाडा मतलब ओ मुंडे दा नाम घुगा होना चाहिए?
2: नहीं बीबी नहीं, घोगा भी नहीं, क्योंकि तेरी राशि मुताबिक घोगा चौर हो सकता है यानी सत्यानाश।
0: अच्छा बाबा जी एक और मुंडा है गुरप्रीत, मेनू प्यार कर दे, ए ना तो ठीक है ना बाबा जी?
2: कुड़िये मेनू समझन की कोशिश कर, जिसका नाम कग्गे तो शुरू होवे ते चचे तो खत्म हुंदा होवे ओ है बाबा क्रिच, दुनिया का सब तो स्मार्ट अते हैंडसम ओ है बाबा क्रिच। जय बाबे दी ओट, नोट छापो नोट।
0: हाय हाय तोर फिटे मुंह, बाबा जी तुसी ते मेरे दादे वर्गे हो, की वाहियात गल्ला कर रहे हो, मैं समझ गई तू कोई बाबा शाबा नहीं, तू एक पखंडी है पखंडी, मैं गलत खा गई हूं, मैं चली।
1: अभी भी, अभी भी, अभी भी, अभी भी।

चंद्र से गुरदासमान दी आवाज गीत और हम अगला गीत सुन दिया हरभजन मान दा गाया होया गीत किसी कुड़ी दी चाया बाबल दे वेड़े च जिथे वड्डी हुई अपना बचपन गुजारिया जवानी दी दहलीज तक आई और उस वेड़े नू छड़ देना बड़ा ही औखा है। आओ सुन दिया

बैंडविड्थ 370.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स, एफएम बैंड 103.6 मेगाहर्ट्स, आकाशवाणी अमृतसर, डीटीएचडी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ए जलंधर केंद्र है। तुसी साडे प्रोग्राम वेव्स ऐप राही भी सुन सकते हो। शाम दे 6:30 बज चुके ने, आओ सुनदे हां देहाती प्रोग्राम।

मन की बात माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता नाल सांझी करेंगे अपनी मन की बात एतवार 30 अगस्त नु दिने 11 बजे आकाशवाणी के सारे केंद्र सारे चैनल इस नु प्रसारित करेंगे।

नाल नाल ही इसका प्रसारण दूरदर्शन दे नेशनल चैनल डीडी न्यूज डीडी भारती डीडी इंडिया ते डीडी किसान चैनल ते भी कीता जाएगा। प्रधानमंत्री दी मन की बात दा पंजाबी रूपांतर तुसी साडे प्राइमरी चैनल मीडियम वेव 343.6 मीटर एफएम 102.7 मेगाहर्ट्ज डीटीएच एआईआर पंजाब सेवा डीआरएम 864 किलोहर्ट्ज एफएम 100.6 मेगाहर्ट्ज विविध भारती एफएम 103.6 मेगाहर्ट्ज अमृतसर एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज एफएम 100.8 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी बठिंडा आकाशवाणी पटियाला विविध भारती लुधियाना ते आकाशवाणी चंडीगढ़ तो सुन सकोगे। इस फौरन बाद पंजाबी रूपांतर दा मुड़ प्रसारण किया जाएगा रात 8 बजे। सुनना जरूर मन की बात दी 137वीं कड़ी।

0: जमा करवानी पैंदी है कि मतलब कि असि सपोज कर लो कि असि 1000 रुपया लेके चले गए ते तुसी इसका खाता खोल दोगे?
1: बिल्कुल, ईद ते तुसी नहीं भी कोई पैसा लेके गए,
0: हां जी
1: 1000 रुपया ते तुसी कह दिता 1000 रुपया दे नाल, हालांकि ई मनाही नहीं है।
0: अच्छा,
1: तुसी ओदे विच पैसे जमा नहीं करवा सकते।
0: अच्छा,
1: पर तुसी बिना किसी राशि दे भी खाता खोल सकते हैं।
0: अच्छा, फिर ए तुसी खाता खोलना है ते फिर केड़े दस्तावेज जेड़े ने ओ चाहिदे ने खाता खोलन वास्ते?
1: ईद विच बहुत घट दस्तावेजा की जरूरत पैंदी है।
0: अच्छा,
1: जे तुहाडे कोल सिर्फ आधार कार्ड है जां फिर तुहाडे कोल ड्राइविंग लाइसेंस है जिहदे तों तुहाडा ई पता लग सके तुहाडा एड्रेस की है और तुहाडा जेड़ा हैगा ओहदे ते जानकारी तुहाडे जिहनूं कहिंदे कि तुसी कौन हो, व्यक्ति दी पछाण होवे और तुहाडा पता तुहाडे रहायशी पता,
0: मतलब पछाण पत्र चाहिदा
1: बिलकुल बिलकुल,
0: जिस तुहानूं पता लग चुके ते तुसी इस थां दे रेजिडेंट हैगे हो, इस जगह रहिंदे हो।
1: बिलकुल, आधार कार्ड इहदे विच सब तों कारगर आपां दस्तावेज मनदे
0: हां जी। बहुत वधिया गल है। और ए दसो कि कौन जाके खाता खोल सकता है? कि बहुत ज्यादा जड़े आर्थिक पक्षों कमजोर ने ओ लोग जा सारे ही खोल सकते ने?
1: इहदा खाता जड़ा कोई भी भारतीय नागरिक खाते खोल सकदा प्रभजोत जी। किसी दा अमीर होना,
0: अच्छा,
1: इहदे वास्ते कोई शर्त नहीं है क्योंकि इहदा असल दे विच मकसद ही ए है कि ओ लोग जिहड़े इस वजह करके बैंक दे नाल नहीं जुड़े, खाता नहीं खुलिया कि उन्हां दे कोल कोई अमाउंट नहीं है, कोई राशि नहीं है, उन्हां वास्ते ते खाता है। इस करके कोई भी व्यक्ति जेड़ा आपां इदां समझिए कि भारतीय नागरिक है, ओहदे कोल कोई आइडेंटिटी कार्ड है, आधार कार्ड है, जां ओहदे कोल कोई राशन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, जेड़ा ओहदी पछाण दस रहा होवे, वो दिखा के खाता खोल सकते
0: हैं। बहुत वधिया गल है जी कि ए योजना हरेक नू लाभ जड़ा दे रही है, पर एक की लाभ दे रही है ए जरूर दसो मनमोती जी।
1: बहुत वधिया सवाल, जड़ा असल दे विच इस स्कीम दा
0: जी
1: असली मकसद है। पहली गल ते उन्हां लोकां नू वित्तीय कावे विच लेना जेहड़े अजे तक बैंक विच इस करके खाता नहीं खोल सके कि उन्हां कोल कोई राशि है
0: जी।
1: दूसरी गल, जदों इस खाते दे खोलण दे नाल बहुत सारे लाभ जेहड़े है उस खाता धारक नू मिलणगे, जिहदे विच की है एक रूपे कार्ड फ्री मिलूगा, नाल दी नाल इहदे विच एक कैशलैस एटीएम दी सहूलत मिलूगी। ते तुहानूं जाण के बड़ी हैरानी होगी कि 2 लाख दा इस खाते दे विच दुर्घटना बीमा है।
0: अच्छा, एक्सीडेंट बीमा
1: जी?
0: जी, बहुत वधिया गल है जी।
1: अगर किसी ने खाता खोलिया है और ओहदे विच उहने कोई ट्रांजेक्शन कीती है ते रब ना करे कि किसी तरह दे एक्सीडेंट विच ओहदी डेथ हो जाती है ते परिवार नूं 2 लाख तक दा जिहड़ा दुर्घटना बीमा ओहदे विच कवर है, और इस दुर्घटना बीमा दा जिहड़ा प्रीमियम है
0: जी
1: ओह भारत सरकार वल्लों दित्ता जांदा।
0: अच्छा
1: जी,
0: बहुत वधिया जानकारी दे रहे हो सानूं कि भारत सरकार वल्लों इहदे जिहड़ा है इंटरस्ट ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।
1: ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਫਾਇਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇਹਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਦੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਮਿਲੂਗਾ, ਏਟੀਐਮ ਕਾਰਡ ਮਿਲੂਗਾ, 2 ਲੱਖ ਦਾ ਦੁਰਘਟਨਾ ਬੀਮਾ ਹੈ
0: ਜੀ,
1: ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ੀਰੋ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ
0: ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ
1: ਕੋਈ ਬੈਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਅਗਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਉਸ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ, ਕਢਾ ਲਏ ਔਰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਓਵਰ ਡਰਾਫਟ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
0: ਅੱਛਾ,
1: ਉਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਲੋਨ ਮਿਲ ਗਿਆ
0: ਜੀ ਜੀ,
1: ਉਹਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਸੇਵਿੰਗ ਖਾਤਾ ਖੁੱਲੇਗਾ ਜ਼ੀਰੋ ਬੈਲੈਂਸ ਤੇ, 10,000 ਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਓਵਰ ਡਰਾਫਟ ਮਿਲ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਚਲਾ ਸਕਦਾ, ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਆਲ ਆਫ ਸਡਨ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਸ 10,000 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਟਾਈਮਲੀ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਗਾ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਬਣੀ ਰਹਿਣੀ।
0: ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜੇ ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਇਹ ਖਾਤਾ ਚਲਾ ਲੈਂਦੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਫਾਰਮ ਭਰਨੇ ਉਹਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਾਤਾ ਹੈ ਉਹ ਖੋਲ ਸਕੇ?
1: ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਜੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਫੋਟੋ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਮੇਰਾ, ਬਹੁਤੀ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਬੈਲੈਂਸ ਖਾਤਾ ਕਹਿੰਦੇ।
0: ਅੱਛਾ,

0: उच्च स्तरीय कार्यबल ने विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों सहित सभी हितधारकों से सुझाव आमंत्रित किए हैं। सुझाव 13 सितंबर तक वेबसाइट, व्हाट्सएप या फोन नंबर 1800-1804747 के माध्यम से भेजे जा सकते हैं। ये सुझाव ईमेल एग्जाम रिफॉर्म्स टास्क फोर्स @dopt.gov.in के माध्यम से भी भेजे जा सकते हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना के आज 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये देश में वित्तीय समावेशन की दिशा में प्रमुख पड़ाव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जनधन योजना वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और देश के लोगों को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। योजना के अंतर्गत अब तक 59 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की यात्रा पर कल उज्बेकिस्तान जाएंगे। श्री मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद जा रहे हैं। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से 6 दिन की अमरीका यात्रा पर हैं। यात्रा के दौरान वित्त मंत्री शिकागो, एशविल और न्यूयॉर्क जाएंगी। वे शिकागो में प्रमुख निवेशकों के साथ गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगी। एशविल में श्रीमती सीतारामन की अध्यक्षता में G20 सदस्य देशों के वित्त मंत्री, केंद्रीय बैंक के गवर्नर तथा वरिष्ठ आर्थिक अधिकारी वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। भारत के वेलवन सेंथिल कुमार आज रात पीएसए बुडापेस्ट स्क्वाश ओपन फाइनल में हंगरी के खिलाड़ी बालास फारकश से खेलेंगे। सेमीफाइनल में कल सेंथिल कुमार ने भारत के ही वीर चोटरानी को हराया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। शाम के 7 बजे हैं, प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कृषि जगत सुनने वाले सभी ग्रामीण बहनों भाइयों को राम राम। वीनस बहन, आज रक्षाबंधन है और हमारे ऐसे तो पूरे देश में लेकिन गांवों में इसका खास उमंग है, इसलिए कि रक्षा के जो सूत्र हैं, रक्षा की जो संवेदनाएं हैं, गांवों में कुछ ज्यादा ही प्रसरित हो जाती हैं। एक एक चीज से किसान को अपने खेत खलियानों से, यंत्रों से, अपने पशुपालकों को जो है कि पशुओं से, और घर के हर सदस्य को जो उनका रिश्ता है ना, वो एकदम से कह लीजिए कि अति आत्मीयता का हो जाता है। और आज के दिन वो देखने को मिलता है, वो महसूस किया जाता है।
1: बिल्कुल, त्योहारों के माध्यम से हमें बहुत सारी चीजें होती है, एंजॉय भी करते हैं लोग, मजे भी करते हैं, दूसरे से मिलते जुलते हैं और स्वादिष्ट पकवानों का भी खूब मजा लेते हैं। लेकिन हमारे प्यारे भाइयों, आपको इस चीज का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि मौसम के बदलाव को भी ध्यान रखना है, त्योहारों के साथ साथ आपकी सेहत, आपके स्वास्थ्य का भी खास ख्याल रखना है, क्योंकि प्रकृति ने वैसे तो हमें बहुत कुछ खाने के लिए दिया है, फल, सब्जियां, नए नए तरीके के व्यंजन बनाते हैं उनसे, तो आप वो बनाएं जो कि आपके लिए हेल्दी हो।
0: जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप, क्योंकि त्योहारों पे व्यंजन बनाना तो भारतीय संस्कृति का अटूट अभिन्न हिस्सा है और इसमें कई तरह के व्यंजन बनते हैं। आप साउथ में जाएंगे तो वहाँ के हिसाब से, नॉर्थ में जाएंगे वहाँ के हिसाब से, आप जो है कि राजस्थानी कल्चर में चले जाएं तो वहाँ की संस्कृति जो है, वहाँ की पकवानों में वो दूध दही और बिल्कुल शुद्ध देशी घी जो होती है ना उसका, और आप इसी तरीके से जो है कि पूरब में चले जाएं तो वहाँ मिठास और कई चीजें होती हैं। तो ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है और खान पान जो है इसको हम अलग कर ही नहीं सकते, लेकिन खान पान का सीधा जुड़ाव जो है वो स्वाद से होते हुए सेहत से जाता है, जाके मिलता है। तो जरूरी ये है कि हम जो भी खाते हैं शुद्ध खाएं, अच्छा खाएं, बेहतर है कि ताजा खाएं, और फल सब्जियां जो हैं वो हमारे यहाँ प्रकृति ने प्रचुर मात्रा में दी हैं हर सीजन के लिहाज से।

0: हर मौसम के लिहाज से, हर जरूरत के लिहाज से, और यहाँ तक कि आप देखेंगे कि हमारे जो अन्न और फल हैं वो कई बीमारियों के लिए औषधि है।
1: बिल्कुल, हमें अपने रोज के खाने में फल सब्जी और ये सब भरपूर मात्रा में लेना चाहिए। मतलब जो हमारे सेहत के लिए, हमारे शरीर के लिए के अनुकूल हो वो हम ले, और मौसम के अनुकूल हो तो त्योहार के साथ, मौसम के साथ अपनी सेहत का खास ध्यान रखें। वो खाएं जो आपको विटामिन दे, जो आपको कार्बोहाइड्रेट दे और प्रोटीन दे, जो आपको इस मौसम में जो कई तरीके की बीमारियां हो जाती है उनसे बचाने की भी आपको ताकत मिले।
0: वीनस बेन, आपने बिल्कुल सही कहा, आपने बीमारियों की बात की। तो दरअसल बीमारी होती कैसे है, जब भी कोई खाद्य है जो भी कुदरत ने दिया है, जो भी हम मनाते हैं, जो भी हम प्रसंस्कृत करते हैं, उसमें क्या होता है कि कुछ घंटे के बाद दूध वाली चीजें हैं, दही वाली में जो है कि घी वाली चीजें हैं, कार्बोहाइड्रेट की है, जितने भी तरह के खाद्य हैं, कुछ घंटों के बाद उनमें फर्मेंटेशन शुरू होता है, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैदा हो जाते हैं, फंगस हैं, बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं, ये पैदा होने लगते हैं और वही एक लेवल तक जाने के बाद रोग पैदा करते हैं। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि ताज़े फल हों, सब्जियां हों और चाहे दूसरे खाद्य पदार्थ हों, ताज़े खाएं।
1: और खास करके मोटा अनाज तो बहुत कोशिश करें कि अपने रोज के खाने
0: भाई
1: में ना
0: मोटा
1: हो।
0: अनाज तो आज के नहीं, मिलेट्स को तो आज के दौर में हम यूं कह सकते हैं कि खाद्य का अमृत है।
1: अरे बहुत सारी व्यंजन है जो कि अभी मोटे अनाज से, मिलेट से बनाई जा रही है, आप मजे से बनाएं और खूब खाएं और परिवार वालों को भी खिलाएं।
0: बिल्कुल खिलाएं, लेकिन अभी क्या काम करते हैं कि हम अपने बहनों भाइयों को एक अच्छा सा लोकगीत सुनाते हैं, क्योंकि मनोरंजन का उनको रहता है बड़ा इंतजार।

0: क्रांतिकारी शहीद आजम भगत सिंह के बारे में अपने रिश्तों का, एक भाई के तौर पे, एक बहन के तौर पे, कि वो शहीद हुए तो कैसे हम राखी बांधेंगे, देश कहाँ होगा, कैसे होगा, ये बहुत सारी बहुत तरह की भावनाएं व्यक्त की हैं अनुराधा शर्मा और सुंदर ने, बड़ी सुंदर आवाज में। इसी के साथ वीरस बहन याद आता है कि भगत सिंह जब बचपन में थे और अपने परिवार के साथ खेतों में काम कर रहे थे तो कुछ लकड़ियाँ, कुछ पत्ते जो है चुन चुन के खेतों में गा रहे थे, और वो उनका जो है कि गोदना, उसमें जो है कि मिट्टी में लगाना। काका ने पूछा कि क्या कर रहा है, तो उन्होंने कहा कि बंदूकें बो रहा हूँ। ये उस वक्त क्रांति, एक बचपन में, एक मासूम मन में देश की आज़ादी के लिए ये देशभक्ति का जज्बा था, और वो जज्बा जो है कि आज भी किसी न किसी रूप में याद किया जाता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही बात की है, क्योंकि कृषि यंत्रीकरण उप मिशन के बारे में हम बात करने वाले हैं, क्योंकि ये आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है।
0: बिल्कुल, ये भी एक क्रांति है, और आज के दौर में यंत्रीकरण, वहाँ पे बंदूकों की क्रांति थी, बंदूकें बो रहे थे, और आज जो है कि कृषि की क्रांति हो रही है, और इसमें कृषि यंत्रीकरण जो है ये एक बड़ी भूमिका निभा रहा है। ये दरअसल केंद्र सरकार की योजना है जिसमें हमारे किसान भाइयों बहनों को मैकेनाइजेशन के लिए, वो कृषि यंत्र हैं कई तरह के, छोटे बड़े ना, कुछ जो है कि उन्नत तकनीक वाले हैं, उनके लिए सरकार क्या करती है, कई तरह की मदद देती है, ऋण और सब्सिडी देती है, जिससे कि हमारी जो पारंपरिक खेती है वो और उन्नत बन सके और मैकेनाइज हो सके। और उसका असर भी देखने को मिल रहा है कि किसानों की आय, हमारी जो है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो है वो बढ़ रही है।
1: बिल्कुल, इसका उद्देश्य तो यही है कि किसी भी तरह से जो टेक्नोलॉजी है हमारे कृषि क्षेत्र में अगर आती है तो लोगों को, जो हमारी युवा पीढ़ी है, उनको एक प्रशिक्षण मिले और इस टेक्नोलॉजी के बारे में, कृषि से जुड़ी, इससे आगे हमारे एक कृषि लेवल का जो जो स्तर है जो वो एक ऊपर हो जाए।
0: बिल्कुल, और हो रहा है, ये होता जा रहा है। ये जो सरकार की मंशा है, ये ऐसी बहुत सारी योजनाएं चल रही है, और इस योजना से भी प्रत्यक्ष लाभ मिल रहा है हमारे किसान भाइयों बहनों को, और
1: इससे हमारे कृषि कार्य में जो समय की भी बचत होगी और अधिक मतलब लागत भी मिलेगी इस चीज से।
0: हाँ, वो हो रहा है, और एक काम करते हैं कि अब फिर से अपने बहनों भाइयों का मनोरंजन कराते हैं और ले चलते हैं, उनको सुनवाते हैं ये रागनी।

0: तो भाइयों, अभी आप सुन रहे थे उद्दल की आवाज में ये रागनी और किस्सा था हीर रांझा का।
1: और आइए अब आपको सुनवाते हैं धर्मराज

अभी आप सुन रहे थे ये उपदेश जोगेंद्र सिंह नागर की आवाज में। तो बहनों भाइयों, हमारा कृषि जगत कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। मुझे यानी शाहिद और वीनस को दीजिए इजाजत। आपको राम राम।

यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़। शाम के 7:35 हुए हैं। लीजिए आप सुनते हैं जगजीत सिंह की आवाज़ में ये गज़ल।

0: जगजीत सिंह की आवाज में अभी आपने खूबसूरत गजल सुनी। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंटरप्रेस चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स। अब से कुछ क्षणों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, प्रधानमंत्री जनधन योजना ने गरीब परिवारों के परिश्रम को पहचान और बचत को सुरक्षा दी। महाराष्ट्र के नाशिक से 450 टन प्याज लेकर पहली कांदा एक्सप्रेस दिल्ली पहुंची। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में नेपाल से सुरक्षित वापस आए तमिलनाडु के 21 तीर्थयात्रियों से मुलाकात की। उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रक्षाबंधन पर दिल्ली के लोगों को शुभकामनाएं दी। यातायात पुलिस ने रक्षाबंधन पर राखी का वादा, सुरक्षा का इरादा, सड़क सुरक्षा और यातायात अनुशासन अभियान चलाया और दिल्ली पुलिस ने ISI समर्थित पाकिस्तानी जासूसी नेटवर्क का भंडाफोड़ किया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना ने गरीब परिवारों के परिश्रम को पहचान दी है और उनकी बचत को सुरक्षा दी है। इस योजना के 12 वर्ष पूरे होने पर श्रीमती गुप्ता ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज 59 करोड़ से अधिक जनधन खाते खोले जा चुके हैं। इसमें लगभग 56% हिस्सेदारी महिलाओं की है।
2: मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री जनधन योजना ने महिलाओं को आर्थिक निर्णय लेने में सशक्त बनाया है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि जनधन योजना ने न केवल बैंकिंग की सुविधा दी बल्कि गरीब परिवारों को भरोसा दिलाया कि देश की प्रगति में उनका भी समान अधिकार और समान स्थान है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत अब तक 59 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं। इन खातों में कुल जमा राशि 3,17,000 करोड़ रूपये है। इस योजना का शुभारम्भ प्रधानमंत्री मोदी ने 28 अगस्त 2014 को किया था। ये विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन पहल है। ये योजना सभी भारतीयों के लिए बैंकिंग पहुंच को सुलभ बना रही है। इस योजना के तहत महिलाओं के लगभग 56% खातों सहित 78% खाते ग्रामीण या अर्धशहरी क्षेत्रों में खोले गए हैं। प्रादेशिक समाचार के लिए विशाल शर्मा।
1: महाराष्ट्र के नाशिक से 450 टन से अधिक प्याज लेकर पहली कांदा एक्सप्रेस आज सवेरे दिल्ली पहुंची। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने कहा कि सरकार ने प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतों में स्थिरता बनाए रखने के लिए बफर स्टॉक की सुनियोजित और लक्षित निकासी शुरू कर दी है। कांदा एक्सप्रेस पहल उत्पादन क्षेत्रों से उपभोग केंद्रों तक भारी मात्रा में प्याज पहुंचाने के लिए प्रभावी लॉजिस्टिक उपाय है। सड़क परिवहन के माध्यम से अन्य प्रमुख उपभोग केंद्रों चेन्नई, कोलकाता, एर्नाकुलम, गुवाहाटी, वाराणसी, लखनऊ, पटना, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, अमृतसर तक प्याज की आपूर्ति की जा रही है। मंत्रालय ने बताया कि 2025-26 में 307 लाख टन से अधिक के अनुमानित उत्पादन के कारण आने वाले महीनों में घरेलू मांग को पूरा करने के लिए प्याज की पर्याप्त उपलब्धता है। जनता के लिए कल से मोबाइल वैन और NCCF और NAFED यानी नेफेड के खुदरा आउटलेट के साथ सफल और केंद्रीय भंडारों के माध्यम से 35 रूपये प्रति किलोग्राम की दर से प्याज की बिक्री शुरू की गई है। सरकार ने कहा है कि देश में चीनी की कोई कमी नहीं है और उचित कीमतों पर पर्याप्त मात्रा में चीनी उपलब्ध कराने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जाएंगे। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने बताया कि हाल के दिनों में चीनी की कीमतों में लगभग 20% की गिरावट आई है जबकि खुदरा चीनी की कीमतें भी कम होने लगी हैं। सरकार ने चीनी की समयबद्ध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा

0: मासिक कोटा प्रणाली के स्थान पर अगले महीने की पाक्षिक चीनी आवंटन प्रणाली शुरू करने का निर्णय लिया है। नए सीजन के लिए गन्ने की पिराई 15 अक्टूबर से शुरू होगी। इस दौरान 10 लाख टन से अधिक चीनी उत्पादन की संभावना है। सरकार ने चीनी मिलों को अक्टूबर में उत्पादित चीनी को बिना किसी प्रतिबंध के बेचने की अनुमति दी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि नेपाल में बुधवार को अचानक बाढ़ के बाद 320 भारतीय नागरिकों से संपर्क नहीं हो सका। उन्होंने कहा कि अन्य देशों के भारतीय मूल के लगभग 100 लोगों से भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। श्री जायसवाल ने नई दिल्ली में बताया कि तमिलनाडु के 21 भारतीय नागरिक बाढ़ प्रभावित इलाकों से नई दिल्ली पहुंच गए हैं।
1: 21 भारतीय नागरिक जो फंसे हुए थे कैलाश मानसरोवर की यात्रा पे गए थे, कल काठमांडू पहुंचे उस क्षेत्र से जहां पर ये हादसा हुआ, और कल हमारे राजदूत उनसे मिले, उनका हालचाल पूछा और हमारी एम्बेसी ने उनके लिए ये ट्रैवल अरेंजमेंट बनाया। आज वो दिल्ली पहुंच चुके हैं। उसके अलावा 68 भारतीय नागरिक जो त्रिशूली हाइड्रो पावर में काम करते हैं, त्रिशूली 1, उनको भी वहां से बचाया गया है। 96 भारतीय नागरिक चीन से नेपाल की तरफ आ चुके हैं और ये सभी लोग सुरक्षित हैं।
0: श्री जायसवाल ने कहा कि चीन की तरफ लगभग 400 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और अपने परिवारों के संपर्क में हैं। इस बीच भारत ने नेपाल को मानवीय सहायता बढ़ा दी है। भारत ने बचाव और राहत कार्यों में सहायता के लिए 47 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी है। श्री जायसवाल ने कहा कि सरकार ने विदेश मंत्रालय में 24 घंटे कार्यरत नियंत्रण कक्ष बनाया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में तमिलनाडु के 21 तीर्थयात्रियों से मुलाकात की। इन्हें नेपाल से बचाया गया है। ये तीर्थयात्री कल बाढ़ प्रभावित क्षेत्र से काठमांडू पहुंचे थे और आज दोपहर नई दिल्ली पहुंचे। डॉ जयशंकर ने कहा कि नेपाली सेना और सरकार इसके लिए धन्यवाद की पात्र है। उन्होंने भारत में उनकी सुगम वापसी सुनिश्चित करने के लिए काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास की भी सराहना की। डॉ जयशंकर ने बताया कि भारत सरकार बाढ़ के बाद राहत और बचाव कार्यों में नेपाल की सहायता कर रही है। डॉ जयशंकर ने आज सवेरे नेपाल के विदेश मंत्री से बात की और उन्हें हर संभव सहायता की पेशकश की। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधु और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रक्षाबंधन के अवसर पर सभी दिल्लीवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री संधु ने कहा कि ये पर्व लोगों को एक दूसरे की सुरक्षा, सम्मान और जीवन भर साथ निभाने का संदेश देता है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रक्षाबंधन को स्नेह, विश्वास और कर्तव्य का पर्व बताया। उन्होंने कामना की कि पवित्र बंधन सभी के घरों में सुख, समृद्धि और आत्मीयता बढ़ाए तथा भाई बहन का प्रेम सदैव अटूट बना रहे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज स्कूली विद्यार्थियों से रक्षाबंधन पर्व के मूल तत्व स्नेह, सुरक्षा और संरक्षण के साथ पर्यावरण संरक्षण पर बल दिया। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में देश भर से आए विद्यार्थियों के साथ रक्षाबंधन मनाते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि यह त्यौहार प्रेम के ऐसे बंधन का प्रतीक है जिसे परिवार के सदस्यों, मित्रों और यहां तक कि पेड़ों के साथ भी साझा किया जा सकता है। पर्यावरण के बिगड़ते संतुलन पर चिंता व्यक्त करते हुए राष्ट्रपति ने विद्यार्थियों से जीवन के लिए आवश्यक संतुलन बनाए रखने के लिए पौधों और पेड़ों को राखी बांधने का आग्रह किया। इस विशेष समारोह में लगभग 90 विद्यार्थियों ने भाग लिया, जिनमें 17 राज्यों, एक केंद्र शासित प्रदेश, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय समिति के 13 दिव्यांग बच्चे शामिल थे। दिल्ली यातायात पुलिस ने रक्षाबंधन के अवसर पर राखी का वादा, सुरक्षा का इरादा नामक एक विशेष सड़क सुरक्षा यातायात अनुशासन अभियान चलाया। इसका उद्देश्य शिक्षा, प्रवर्तन और प्रोत्साहन के अनूठे संयोजन के माध्यम से सड़क सुरक्षा का संदेश लोगों तक पहुंचाना है। अभियान के दौरान महिला पुलिस अधिकारियों ने जिम्मेदार सड़क उपयोगकर्ताओं की कलाई पर राखी बांधकर सुरक्षा और संरक्षण के वादे का संदेश दिया। लोगों को हेलमेट पहनने, सीट बेल्ट लगाने, ट्रैफिक सिग्नल का पालन करने, लेन अनुशासन बनाए रखने, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल न करने, शराब पीकर वाहन न चलाने तथा पैदल यात्रियों और अन्य संवेदनशील सड़क उपयोगकर्ताओं का सम्मान करने के लिए जागरूक किया गया। अखिल भारतीय व्यापारी परिसंघ कैट के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने बताया कि इस वर्ष राखियों का कारोबार लगभग 25,000 करोड़ रुपए का हुआ। मिठाइयों, ड्राई फ्रूट्स, परिधानों, फैशन, गिफ्ट पैक, आभूषणों, इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों तथा अन्य उपहारों का लगभग 5,000 करोड़ रुपए का व्यापार हुआ। श्री खंडेलवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल के मंत्र को भी इस वर्ष रक्षाबंधन पर व्यापक समर्थन मिला। देश भर में उपभोक्ताओं ने बड़ी

0: संख्या में स्वदेशी उत्पादों को प्राथमिकता दी। हस्तनिर्मित राखियों, पारंपरिक उपहारों, स्थानीय कारीगरों द्वारा निर्मित वस्तुओं तथा महिला स्व सहायता समूहों और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम के उत्पादों की मांग में महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज हुई। दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने आईएसआई समर्थित पाकिस्तान स्थित एक जासूसी नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। इस मामले में दिल्ली के एक दंपत्ति को गिरफ्तार किया गया। आरोप है कि 2024 से सोशल मीडिया के माध्यम से पाकिस्तानी खुफिया एजेंटों के लिए वो काम कर रहे थे। दिल्ली पुलिस का कहना है कि ये दंपत्ति कथित तौर पर पाकिस्तान के हैंडलर्स को लॉजिस्टिक सहायता प्रदान करते थे। इसमें भारतीय सिम कार्ड खरीदना और उन्हें दुबई के रास्ते पाकिस्तान भेजना शामिल था। इन सिम कार्डों का इस्तेमाल पाकिस्तानी एजेंट्स व्हाट्सएप अकाउंट बनाने और भारतीयों से संपर्क करने के लिए करते थे। इस नेटवर्क में भारतीय सिम कार्ड खरीदने में सहायता के लिए दिल्ली के स्थानीय लोगों को भर्ती किया जाता था। इसके बाद पाकिस्तान में इन नंबरों पर व्हाट्सएप अकाउंट बनाए जाते थे। कथित तौर पर पाकिस्तानी खुफिया एजेंट भारतीय व्हाट्सएप ग्रुप में घुसकर जानकारी जुटाने के लिए इनका इस्तेमाल करते थे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दिल्ली सरकार राजधानी के बुजुर्ग नागरिकों के लिए वयो आनंद योजना शुरू कर रही है। इस योजना के अंतर्गत ऐसे केंद्र विकसित किए जाएंगे जहां बुजुर्ग नागरिकों को खाली समय में आराम करने, इंडोर गेम खेलने, एक दूसरे से मिलने जुलने और सामाजिक गतिविधियों में शामिल होने के लिए बेहतर माहौल उपलब्ध हो सके। एक रिपोर्ट।
1: दिल्ली सरकार ने बताया है कि यह केंद्र सप्ताह में कम से कम 5 दिन खुले रहेंगे और प्रतिदिन न्यूनतम 7 घंटे संचालित होंगे। इन केंद्रों का संचालन सुबह 7 बजे से रात 8 बजे के बीच किया जाएगा। योजना के अंतर्गत मनोरंजन केंद्रों में कम से कम 200 ऐसे सदस्य होना जरूरी है जिनकी उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक हो। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत पात्र मनोरंजन केंद्र को एक वित्तीय वर्ष में 2,40,000 रुपए की सहायता दी जाएगी। वरिष्ठ नागरिकों के लिए इन केंद्रों में योग और ध्यान की कक्षाएं भी आयोजित की जाएंगी। इसके साथ ही इनमें मासिक चिकित्सा शिविर और प्राथमिक उपचार किट की भी व्यवस्था होगी। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को उनके आसपास ही ऐसे सुरक्षित और सुविधाजनक स्थान उपलब्ध कराना है जहां वे अपने हमउम्र लोगों के साथ समय बिता सकें, मनोरंजन और स्वास्थ्य संबंधी गतिविधियों में शामिल हो सकें तथा अकेलेपन से दूर सक्रिय सामाजिक जीवन जी सकें। प्रादेशिक समाचार के लिए सौम्या शरण।
0: सरकार द्वारा सार्वजनिक परीक्षा सुधारों के लिए गठित उच्च स्तरीय कार्यबल ने विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों सहित सभी हितधारकों से सुझाव आमंत्रित किए हैं। ये सुझाव ईमेल एग्जाम रिफॉर्म्स taskforce@dopt.gov.in के माध्यम से भी भेजे जा सकते हैं।
1: परीक्षा के संचालन, सुरक्षा, डिजाइन, मूल्यांकन पद्धति, शासन, जवाबदेही और संस्थागत व्यवस्थाओं के अलावा परीक्षा में अनुचित साधनों का पता लगाने, रोकथाम करने और उनके समाधान सहित अन्य संबंधित क्षेत्रों के बारे में सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। कार्यबल संस्थागत प्रणालियों और प्रक्रियाओं को मजबूत करने, परीक्षा की निष्पक्षता तथा सुरक्षा सुनिश्चित करने, उपयुक्त तकनीकों को लागू करने, परीक्षा अवसंरचना को बढ़ाने और विद्यार्थियों के हितों की रक्षा करने के उपायों की जांच कर रहा है। इसका उद्देश्य मजबूत, सुरक्षित, पारदर्शी, न्याय संगत और भविष्य के लिए तैयार सार्वजनिक परीक्षा प्रणाली विकसित करना है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA द्वारा आयोजित परीक्षाओं सहित सार्वजनिक परीक्षाओं से संबंधित व्यापक सुधारों की जाँच और सिफारिश करने के लिए प्रसिद्ध प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ नंदन निलेखनी की अध्यक्षता में कार्यबल का गठन किया गया है। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से मैं जसपाल कौर।
0: दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन विश्वास के अंतर्गत 300 से अधिक मोबाइल फोन बरामद किए हैं। पुलिस ने बताया कि इन मोबाइल फोन को हरस खास स्थित NCUI ऑडिटोरियम में आयोजित विशेष कार्यक्रम में नागरिकों को सौंपे जाएंगे। मीडिया से बातचीत में दक्षिण दिल्ली पुलिस उपायुक्त आनंद मित्तल ने लोगों से आग्रह किया है कि फोन खोने पर दिल्ली पुलिस की वेबसाइट पर मोबाइल फोन खोने की रिपोर्ट लिखवाएं।
2: जिला दिल्ली पुलिस ने करीब 300 मोबाइल फोन आज उनके राइटफुल ओनर्स को जो खोए हुए थे अलग अलग जगहों से वापस ला करके सौंपे हैं। निरंतर हमारी कोशिश ये रहती है कि जो भी मोबाइल फोन खोया जाए उसका टेक्निकल एनालिसिस करके उसको वापस ढूंढा जाए और दिल्ली पुलिस निरंतर इस पे लगी हुई है। जल्द ही हम इससे भी ज्यादा बड़ी संख्या में और भी लोगों को वापस करें।
0: दिल्ली भारतीय जनता पार्टी ने आज ओबीसी मोर्चा दिल्ली प्रदेश और किसान मोर्चा दिल्ली प्रदेश के नवनियुक्त प्रदेश पदाधिकारियों और जिलाध्यक्षों की घोषणा की है। राजधानी दिल्ली में आज दिन के समय धूप खिली रही। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 35.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग ने बताया कि कल राजधानी में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। वहीं कल का अधिकतम तापमान 35 से 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 से 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, प्रधानमंत्री जनधन योजना ने गरीब परिवारों के परिश्रम को पहचान और बचत को सुरक्षा दी। महाराष्ट्र के नासिक से 450 टन प्याज लेकर पहली कांदा एक्सप्रेस दिल्ली पहुंची। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में नेपाल से सुरक्षित वापस आए तमिलनाडु के 21 तीर्थयात्रियों से मुलाकात की। यातायात पुलिस ने रक्षाबंधन पर राखी का वादा, सुरक्षा का इरादा, सड़क सुरक्षा और यातायात अनुशासन अभियान चलाया। उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रक्षाबंधन पर दिल्ली के लोगों को शुभकामनाएं दी। और दिल्ली पुलिस ने ISI समर्थित पाकिस्तानी जासूसी नेटवर्क का भंडाफोड़ किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़। रात्रि के 8 बजे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम गीत मालिका। गीत मालिका में अपने सभी श्रोताओं का मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं और स्वागत के साथ साथ सभी बहनों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं भी देता हूं। रक्षाबंधन का ये पावन त्यौहार आपके जीवन में खुशियां लाए और आपके जीवन को एक नई ऊंचाई दे और भारत को तमाम बहनें जो है भारत को आत्मनिर्भर बनाने में सहयोग करें, ये भी सबकी कामना है। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ जो रक्षाबंधन विशेष पर्व पर लिया गया है, जिसे आवाज दी है लता मंगेशकर ने।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली है, कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है, विश्व संस्कृत दिवस के अवसर पर लीजिए सुनिए महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय उज्जैन के कुलगुरु प्रोफेसर शिव शंकर मिश्र से एक विशेष भेंट वार्ता। आपसे भेंट कर रहे हैं हिंदू कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय के सहायक आचार्य डॉक्टर सुनील जोशी।
1: नमस्कार। श्रावण पूर्णिमा के इस परम पावन मंगलमय एवं सांस्कृतिक महापर्व पर मनाए जाने वाले संस्कृत दिवस के इस विशेष विचारोत्तेजक और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करता हूँ। संस्कृत केवल विश्व की प्राचीनतम भाषाओं में से एक नहीं, बल्कि भारत की सनातन ज्ञान परंपरा, आध्यात्मिक चेतना, वैज्ञानिक दृष्टि, दार्शनिक चिंतन और सांस्कृतिक अस्मिता की सुदृढ़ आधारशिला है। वेदों, उपनिषदों, रामायण, महाभारत, गीता, आयुर्वेद, योग, ज्योतिष, गणित, खगोल, व्याकरण, नाट्यशास्त्र तथा असंख्य ज्ञान विज्ञान के मूल स्रोत संस्कृत में ही निहित हैं। आज जब विश्व भारतीय ज्ञान परंपरा, योग, आयुर्वेद और सतत विकास के भारतीय दृष्टिकोण की ओर आकर्षित हो रहा है, तब संस्कृत की प्रासंगिकता और अधिक बढ़ जाती है। इन महत्वपूर्ण एवं समसामयिक विषयों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए आज हमारे मध्य उपस्थित हैं महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय के माननीय कुलगुरु प्रोफेसर शिव शंकर मिश्र जी, जो शिक्षा, भारतीय ज्ञान परंपरा तथा संस्कृत के संवर्धन के क्षेत्र में अपनी दूरदर्शी नेतृत्व क्षमता एवं विशिष्ट योगदान के लिए सुख्यात हैं। माननीय कुलगुरु जी, आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन।
2: नमस्कार।
1: जैसा कि हम सभी जानते हैं, संस्कृत दिवस मात्र एक स्मृति दिवस नहीं है, बल्कि हमारी प्राचीन ज्ञान परंपरा, ऋषि संस्कृति, सांस्कृतिक अस्मिता और राष्ट्रीय गौरव का भी उत्सव है। आपके विचार से संस्कृत दिवस मनाने के पीछे जो ऐतिहासिक, सांस्कृतिक या हम कहें जो राष्ट्रीय महत्व है, उसको हम जानना चाहेंगे।
2: सर्वप्रथम संस्कृत दिवस की समस्त भारतवासियों को मंगल कामनाएं। संस्कृत दिवस समग्र देश में बहुत ही उत्साह के साथ अभी भी संस्कृत के पढ़ने लिखने वाले लोग, संस्कृतानुरागी गण मनाते हैं। भारत में काल का बड़ा महत्व है और हमारे भारतीय जो काल गणना है, उस हिसाब से जो हमारे 12 मास हैं, उनमें से श्रावण का जो मास है वह अत्यंत पवित्र मास है। श्रावण मास में भगवान शिव की आराधना की जाती है और इसी क्रम में श्रावण की जो पूर्णिमा तिथि है, उसमें समस्त भारतवासी उसे संस्कृत दिवस के रूप में मनाते हैं। संस्कृत दिवस के रूप में इस कार्यक्रम के आयोजन का मुख्य जो संदेश है वह यह है कि हम इस तिथि को सभी संस्कृतानुरागी, हम ऋषियों का पूजन करते हैं। पूजन के माध्यम से उन ऋषियों के योगदान का, उनके संदेश का, उनकी ज्ञान परंपरा का स्मरण करते हैं और हम श्रावणी उपाकर्म करते हैं सभी भारतवासी। संस्कृत इस देश की प्राणभूत भाषा है। यदि हमारा देश बोलता है तो उसकी जो वाणी है वह संस्कृत है, और वह संस्कृत है तो वेद है, संस्कृत है तो उपनिषद है, संस्कृत है तो स्मृति है, संस्कृत है तो रामायण है, संस्कृत है तो महाभारत है। अर्थात इन सभी धर्म ग्रंथों की, इन सभी शास्त्रों की भाषा संस्कृत है। तो

0: हम इस तिथि को या जो कार्यक्रम करते हैं वह नई युवा पीढ़ी को यह संदेश देने के लिए कि हमें संस्कृत केवल स्मरण के लिए नहीं बल्कि संस्कृत हमारे भारत की संवाहिका है, संस्कृत हमारे संस्कार की संवाहिका है, संस्कृत हमारे भारतीय ज्ञान विज्ञान की संवाहिका है, संस्कृत योग की संवाहिका है, संस्कृत आयुर्वेद की संवाहिका है, संस्कृत हमारे सदाचरण की संवाहिका है। और यदि संस्कृत है तो भारत है। मेरी दृष्टि में संस्कृत और भारत ये दो नाम नहीं है, संस्कृत ही भारत है और भारत ही संस्कृत है। बिना वेदम बिना गीताम बिना रामायणीम कथाम बिना कविम कालिदासम भारतम भारतम नहीं। कालिदास के बिना, वेद के बिना, गीता के बिना, रामायण के बिना हम भारत की कल्पना ही नहीं कर सकते हैं।
1: जी निश्चित रूप से संस्कृत केवल अतीत की भाषा नहीं बल्कि भारत के उज्जवल भविष्य की आधारशिला है। प्रोफेसर मिश्र जी, आज का यह जो युग है वो विज्ञान का है, प्रौद्योगिकी का है, बल्कि वैश्वीकरण का यह युग है। ऐसे समय में यह प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठता है कि संस्कृत की जो समकालीन प्रासंगिकता है वह क्या है। आपके विचार से वर्तमान भारत और वैश्विक परिदृश्य में संस्कृत भाषा किन किन क्षेत्रों में नई संभावनाओं के साथ उभर सकती है।
0: सुनील जी, बहुत अच्छी जिज्ञासा आपने की है कि संस्कृत ज्ञान और विज्ञान की भाषा है। हमारा समग्र जो दर्शन का साहित्य है वह समग्र विज्ञानमय है। अगर मैं एक संकेत के रूप में न्याय दर्शन की बात करूं तो न्याय दर्शन में सबसे पहले हम अपने विद्यार्थियों को बोधन कराते हैं कि 16 पदार्थ होते हैं, और हम वैशेषिक दर्शन के बारे में चर्चा करें तो कहते हैं कि 7 पदार्थ होते हैं। तो 16 पदार्थ हैं प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, छल, जाति और निग्रह स्थान। ऐसे ही हम वैशेषिक दर्शन के 7 पदार्थों की चर्चा करते हैं तो कहते हैं द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, अभाव। कल्पना कीजिए कि संस्कृत के इन ग्रंथों में कितनी बड़ी ज्ञान और विज्ञान की संपदा निहित है। भारत का बहुत सारा ज्ञान विज्ञान, चाहे हम शिक्षा के क्षेत्र में देखें, चाहे हम आयुर्वेद के क्षेत्र में देखें, चाहे हम योग के क्षेत्र में देखें, तो यह सारा ज्ञान विज्ञान पहले से ही संस्कृत में निहित है। तो यह अतीत में हमारा जो ज्ञान विज्ञान था वर्तमान में भी अत्यंत प्रासंगिक है और इसका अत्यंत उत्तम भविष्य भी है। संस्कृत आज AI के लिए अत्यंत उपयुक्त भाषा है क्योंकि इसका बहुत समृद्ध तर्कसम्मत व्याकरण है और भाषा ही बहुत व्यवस्थित और बहुत तर्कसम्मत है। इस भाषा के शब्दों को और इस भाषा का पूरा जो विज्ञान है, पूरा जो इसका साहित्य है, वह भविष्य के लिए अत्यंत उपयोगी है। आज देश में बहुत सारे आधुनिक विषयों के साथ संस्कृत को जोड़ करके रिसर्च की जा रही है, चाहे गीता का मैनेजमेंट के साथ हो, चाहे वास्तुशास्त्र का आर्किटेक्ट के साथ हो, चाहे वह वैदिक गणित का पूरा ज्ञान विज्ञान हो, और AI के साथ भी, जैसा कि अभी हमने सुना है कि केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय ने AI को आधार मान करके BTech का कोर्स प्रारंभ किया है। उन्होंने विधि शास्त्र को दृष्टि में रख करके 1,00,000 का कोर्स प्रारंभ किया है। सिविल सर्विसेज का पाठ्यक्रम भी आरंभ किया है। इससे बहुत स्पष्ट रूप से हम ऐसा अनुभव कर सकते हैं कि संस्कृत जितनी पुरातन है उतनी अधुनातन भी है और इसका प्रभाव भी लोगों के बीच में बहुत अच्छे से जा रहा है। लोग इधर उन्मुख भी हो रहे हैं और संस्कृत पढ़ने के प्रति बहुत अच्छी प्रवृत्ति भी आ रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने मन की बात में भी AI के इस पाठ्यक्रम की चर्चा की है। वो लगातार संस्कृत को समग्र विश्व में प्रचारित करते हैं। विदेशों में जाते हैं तो वहाँ के संग्रहालयों में जाकर के वहाँ की मूर्तियों का अवलोकन करते हैं और वहाँ के लोगों को संस्कृत का संदेश देते हैं। वो सुभाषित के बारे में चर्चा करते हैं। निश्चित रूप से यह भारत के लिए एक अत्यंत स्वर्णिम अवसर है जब भारत का नेतृत्व ही संस्कृत के प्रति इतना समर्पित है।
1: प्रोफेसर मिश्र जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि संस्कृत का जो वैज्ञानिक स्वरूप है वो आधुनिक तकनीकों के साथ समन्वय स्थापित कर मानवता को ज्ञान, संतुलन और सतत विकास की नई दिशा प्रदान कर सकता है और यह परंपरा और आधुनिकता के बीच में एक सशक्त सेतु है। प्रोफेसर मिश्र जी, हम सभी जानते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत भारतीय ज्ञान परंपरा पर विशेष बल दिया जा रहा है। आपके विचार से भारतीय ज्ञान परंपरा की मूल अवधारणा क्या है?
0: सुनील जी, जो शिक्षा की नीतियां बनी उनमें से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इस शिक्षा नीति के आने से पूरे भारत के अध्ययन की परंपरा को एक नई दिशा मिली है। ऐसा इसलिए हुआ है कि भारतीय ज्ञान परंपरा है, उस भारतीय ज्ञान परंपरा को राष्ट्रीय शिक्षा नीति में विशेष रूप से उसको स्थान दिया गया, क्योंकि भारत की जो एक विशद ज्ञान परंपरा है वो विद्याएं धीरे धीरे भारतीय ज्ञान परंपरा की माध्यम से

0: इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में उनको स्थान मिल रहा है। एक अच्छी बात है कि पूरे देश में इस समय नए नए पाठ्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं, जैसे IKS भारतीय ज्ञान परंपरा में PG पाठ्यक्रम संचालित हो रहे हैं। इसी प्रकार हिंदू स्टडीज एक पाठ्यक्रम आया है जो पूरे देश में प्रायः 35 से अधिक विश्वविद्यालयों में हिंदू अध्ययन का पाठ्यक्रम प्रवर्तित हुआ है और उसमें समग्र भारतीय ज्ञान परंपरा का अध्ययन कराया जा रहा है। मैं समझता हूं कि यह जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है और उसमें आज हम भारत के वनस्पति विज्ञान की चर्चा कर रहे हैं, हम आज भारत के भौतिक विज्ञान की चर्चा कर रहे हैं, आयुर्वेद की चर्चा कर रहे हैं और आज विश्वविद्यालयों में इस तरह के पाठ्यक्रम लाए जा रहे हैं कि जो आज फिजिक्स पढ़ा रहा है वो भारतीय फिजिक्स से भी परिचित हो, जो वनस्पति विज्ञान पढ़ा रहा है वो भारत की भी वनस्पति संपदा से अवगत हो। ऋषियों ने जो ज्ञान विज्ञान प्रवर्तित किया था उसको आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से पाठ्यक्रम में स्थान मिल रहा है और ये निश्चित रूप से भारत के लिए बहुत अच्छा संकेत है, भारतीय विद्याओं के लिए बहुत अच्छा संकेत है।
1: जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, भारतीय ज्ञान परंपरा समग्र मूल्यपरक और जीवनोपयोगी ज्ञान की एक ऐसी परंपरा है जिसका मूल आधार संस्कृत है। प्रोफेसर मिश्री जी, जैसा कि हम जानते हैं उज्जैन को भारत की सप्त मोक्षपुरियों में विशेष स्थान प्राप्त है। यह नगरी प्राचीन काल से ही संस्कृत साहित्य, दर्शन, खगोल और आध्यात्मिक साधना का एक प्रमुख केंद्र रही है। आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपके विचार से संस्कृत भाषा और भारतीय ज्ञान परंपरा को जीवंत बनाए रखने में उज्जैन का ऐतिहासिक तथा समकालिक योगदान किस प्रकार का है?
0: बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा है। उज्जैनी में भगवान श्री कृष्ण ने अध्ययन किया था महर्षि शांतिपिनी के गुरुकुल में आकर। उज्जैनी महाराज विक्रमादित्य की वो भूमि है जहाँ उनके दरबार में नौ रत्न थे जो अपने अपने विषय के प्रकांड पंडित थे, जिनके बारे में एक बहुत सुंदर श्लोक प्रचलित है, धनवंतरिक क्षपण कामर सिंह संकु बेताल भट्ट घट खरपर कालिदासः ख्यातो बराह मीरो नृपते सभायाम रत्नानि वै वररुचिर नौ विक्रमस्य। विक्रमादित्य की वह भूमि रही है और विक्रमादित्य के ये नवरत्न वहाँ पर स्थान पाते रहे हैं। वह महाराज भर्तृहरि की भूमि रही है और उस भूमि पर सदियों से ज्ञान विज्ञान की परंपरा रही। वहाँ भगवान महाकाल हैं जो कि विद्या के अधिपति देवता हैं। यह महाकवि कालिदास की भूमि रही है, कालिदास ने वहीं पर अपने काव्य का प्रणयन किया। स्कंद पुराण में एक ऐसा उल्लेख मिलता है कि महर्षि वाल्मीकि ने उज्जैनी में रह करके वाल्मीकि रामायण की रचना की थी, इसलिए उज्जैनी का अत्यंत महत्व है। उज्जैनी सात पुरियों में एक प्रतिष्ठित पुरी है, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी द्वारावती, चैव सप्तयिता, मोक्षदायिका, इन परिगणित सात पुरियों में अवंती का अत्यंत महत्व है, उज्जैनी का अत्यंत महत्व है। ऐसी पावन नगरी उज्जैनी में महर्षि पाणिनि के नाम से विश्वविद्यालय स्थापित है जो संस्कृत के विभिन्न क्षेत्रों में, व्याकरण के क्षेत्र में, दर्शन के क्षेत्र में, वास्तु के क्षेत्र में, विभिन्न विषयों में अध्ययन अध्यापन का कार्य वहाँ हो रहा है। उज्जैनी कुंभ भूमि भी है, यहाँ प्रति 12 वर्ष में सिंहस्थ महाकुंभ का आयोजन होता है।
1: जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि उज्जैन अतीत की गौरवशाली विरासत और भविष्य की ज्ञान यात्रा की प्रेरणादायी संगम है। प्रोफेसर मिश्र जी, आज विश्व समुदाय भारत की संस्कृति, योग, आयुर्वेद, दर्शन और जीवन मूल्यों के प्रति विशेष आकर्षण अनुभव कर रहा है। ऐसे समय में संस्कृत भाषा भारत की जो सांस्कृतिक कूटनीति है, जिसे हम कल्चरल डिप्लोमेसी कहते हैं, उसको किस प्रकार से और अधिक प्रभावशाली बना सकती है? इस दिशा में विश्वविद्यालयों, सांस्कृतिक संस्थानों तथा इसमें सरकार की क्या भूमिका होनी चाहिए?
0: बहुत अच्छी बात है ये कि भारत की जो संस्कृति है वह विश्व की समस्त संस्कृतियों को आत्मसात करके भी आज प्रतिष्ठित है। भारत की संस्कृति ऐसी है जिसमें किसी भी संस्कृति का कोई विरोध नहीं है, क्योंकि यह विश्व बंधुत्व की संस्कृति है, यह सर्वे भवन्तु की संस्कृति है और यह संस्कृति आती है संस्कृत से। संस्कृतम संस्कृतेर मूलम श्रेयसे समुपाश्यताम। संस्कृत संस्कृति की मूल है और कल्याण के लिए उसकी उपासना करनी चाहिए। भारत को जो प्रतिष्ठा मिली है संपूर्ण विश्व में वो भारत की संस्कृति से और भारत की भाषा संस्कृत से मिली है। तो यह जो विश्वविद्यालय है, जिन विश्वविद्यालयों में हम संस्कृत का अध्यापन कराते हैं, अध्ययन कराते हैं, वह वस्तुता से ही पूछिए तो भारत की हम संस्कृति का ही अध्ययन कराते हैं, संस्कृति और परंपरा का ही अध्यापन कराते हैं और हमारी जो संस्कृति है वह सर्व कल्याण मूलक संस्कृति है। विश्व में कोई भी संस्कृति होगी वो हमारी संस्कृति से निश्चित रूप से उसे प्रेरणा मिलेगी और इस कार्य में संस्कृत विश्वविद्यालयों का माननीय योगदान भी है। संस्कृत विश्वविद्यालय के विद्यार्थी का जो जीवन है वह निश्चित रूप से अत्यंत सुसंस्कृत जीवन होता है, क्योंकि जो मूल गुण है, जो नीति है।

0: जो सदाचरण है वह संस्कृत के ग्रंथों से ही आती है। हमें पढ़ाते हैं कि मातृदेवो भव, हमें पढ़ाते हैं कि पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव, ये हमारी संस्कृति का पार्ट है। हम बताते हैं लोगों को कि मातृवत परिवारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत, दूसरी सभी स्त्रियों पर माता की बुद्धि होनी चाहिए और दूसरे के द्रव्य में लोष्ठ की बुद्धि होनी चाहिए। हम अलग से छात्रों को ये बोध नहीं कराते, वो हमारे पाठ्यक्रम का पार्ट है। पढ़ते पढ़ते ही वो चीजें स्वयं सीखते हैं और एक सुसंस्कृत सुसभ्य नागरिक बनते हैं और उनका निश्चित रूप से उनकी उपयोगिता, उनका महत्व केवल अपने क्षेत्र में नहीं है, वो जहां भी जाते हैं दूसरों को भी प्रकाशित करते हैं और दूसरों को भी अपने सद्गुणों से आलोकित करते हैं।
1: जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा प्रोफेसर मिश्र जी की संस्कृत विश्व को शांति, सह अस्तित्व और मानवीय मूल्यों का संदेश देने वाली एक दिव्य भाषा है। प्रोफेसर मिश्र जी, यदि हमें संस्कृत को केवल शिक्षण संस्थानों तक सीमित न रखकर जन जन की भाषा और जीवन का हिस्सा बनाना है तो विशेष रूप से युवाओं में इसके प्रति रुचि और आत्मीयता को कैसे विकसित किया जा सकता है, इस पर हम आपके विचार चाहेंगे।
0: संस्कृत वस्तुतः भारत के किसी एक व्यक्ति की भाषा नहीं है, संस्कृत भारत के समस्त मनुष्यों की भाषा है और इतना ही नहीं, मैं तो कहूंगा कि यह विश्व की भाषा है, क्योंकि संस्कृत भाषा में जो गुण हैं, जो मूल्य हैं, वह किसी व्यक्ति, किसी समुदाय, किसी जाति, किसी धर्म, किसी क्षेत्र के नहीं है, अपितु वह सार्वभौम है। तो संस्कृत कभी थी भी जन जन की भाषा। यदि हम संस्कृत के अतीत के बारे में इसके ऐतिहासिक साक्ष्यों को देखें तो संस्कृत अतीत में जन सामान्य की भाषा थी। शंकराचार्य के समय आपको ऐसा प्रसंग मिलता है कि भगवान शंकराचार्य जब मंडन मिश्र से मिलने गए तो उन्होंने वहां के जन सामान्य लोगों से पूछा कि कुत्रालयो मंडन पंडितस्य, पंडित मंडन मिश्र का घर कहाँ है। संस्कृत जन सामान्य की भाषा थी, इसीलिए हम विश्वगुरु थे, क्योंकि हमारे यहाँ हर व्यक्ति सुसंस्कृत था, हर व्यक्ति सदाचरण संपन्न था, हर व्यक्ति सुसभ्य था, हर व्यक्ति परोपकारी सद्गुणी था। तो हमारे देश में यह संस्कृत को जन सामान्य की भाषा बनानी है और इस समय जो हमारी भारत की नीतियां हैं, जो हमारे भारत का नेतृत्व है, संस्कृत को जन सामान्य में ले जाने के लिए प्रयत्नशील है और इसके सकारात्मक संदेश भी मिल रहे हैं। संस्कृत भारती संगठन के द्वारा भी संस्कृत का प्रचार प्रसार बहुत व्यापक स्तर पर किया जा रहा है। ऐसे ऐसे लोग भी हमें मिलते हैं जो संस्कृत की पृष्ठभूमि से नहीं है, जिन्होंने संस्कृत पढ़ी नहीं है, लेकिन वो संस्कृत बोलते हैं और संस्कृत के सद्गुणों को अपने जीवन में अपनाते हैं। तो निश्चित रूप से एक समय ऐसा आएगा कि भारत के सभी लोग संस्कृत में व्यवहार करेंगे और वस्तुतः वही विकसित भारत होगा।
1: जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, जब संस्कृत आधुनिक जीवन का हिस्सा बनेगी तभी इसका व्यापक जन आंदोलन संभव होगा। प्रोफेसर मिश्र जी, हम जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने की जिस संकल्पना के साथ जुड़े हैं और जिसके साथ पूरा देश जुड़ रहा है, ऐसे में शिक्षा, अनुसंधान, नवाचार, भारतीय ज्ञान परंपरा, सांस्कृतिक पुनर्जागरण और वैश्विक नेतृत्व के संदर्भ में आप संस्कृत की भूमिका को किस प्रकार देखते हैं?
0: माननीय प्रधानमंत्री जी के इस दूरदर्शी नेतृत्व का बहुत प्रशंसक हूँ। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि विकसित भारत का अभिप्राय यह है कि हम केवल भौतिकता की दृष्टि से ही विकसित न हो, हमारे भारत की जो ज्ञान परंपराएं हैं वो भी विकसित हों, हमारे भारत का जो जीवन दर्शन है, हमारी भारत की जो चिंतन पद्धति है, हमारी भारत की जो रहन सहन है, हमारी भारत की जो व्यंजन है, हमारे भारत के जो त्योहार हैं, हमारे भारत की जो जीवन शैली है, वो सब विकसित होगी तभी भारत देश विकसित है, ऐसा मैं समझता हूँ। वही विकसित भारत देश होगा। हमारे संस्कृत के इस प्रभाव से जो 2047 तक मुझे ऐसा लगता है कि समस्त शिक्षा पद्धति में संस्कृत संस्कृत भाषा के रूप में भले न प्रवेश करे, लेकिन संस्कृत के जो विचार हैं, संस्कृत का जो चिंतन है, वह हिंदी भाषा के रूप में, बंगला भाषा के रूप में, उड़िया भाषा के रूप में, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ भाषा के रूप में हमारे साहित्य में प्रवेश कर जाएगा। निश्चित रूप से संस्कृत का जो ज्ञान विज्ञान है वह संस्कृत मुखेन और अन्य भाषा मुखेन हमारे जीवन में उसका अवश्य अवतरण होगा।
1: जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि भविष्य का भारत तभी आत्मनिर्भर और विश्वगुरु बन सकेगा जब अपनी प्राचीन ज्ञान परंपरा को आधुनिक दृष्टि के साथ आत्मसात करेगा। माननीय कुलगुरु जी, आपने अत्यंत सरल, सारगर्भित और दूरदर्शी विचारों के माध्यम से संस्कृत दिवस के ऐतिहासिक महत्व, भारतीय ज्ञान परंपरा की वैश्विक प्रासंगिकता, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, सांस्कृतिक कूटनीति, युवा शक्ति तथा विकसित भारत 2047 के संदर्भ में संस्कृत की भूमिका पर अत्यंत प्रेरणादायक दृष्टिकोण हम सभी श्रोताओं के समक्ष प्रस्तुत किया है। निसंदेह आपके विचार हमें यह संदेश देते हैं कि संस्कृत केवल अतीत की धरोहर नहीं बल्कि भविष्य के भारत के

0: निर्माण की एक सशक्त आधारशिला है। हम आपके अमूल्य समय, प्रेरक विचारों और इस सार्थक संवाद के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
2: विश्व संस्कृत दिवस के अवसर पर अभी आप महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय उज्जैन के कुलगुरु प्रोफेसर शिव शंकर मिश्र से ये विशेष भेंट वार्ता सुन रहे थे। आपसे भेंट कर रहे थे हिंदू कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय के सहायक आचार्य डॉक्टर सुनील जोशी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।

श्रोताओं, सुनते हैं फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम गीत मालिका, और अगला गीत हम सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज में।

दोस्तों अभी आपने एक खूबसूरत गीत सुना भाई बहन के प्यार पर। और दोस्तों रिश्ते तो बहुत होते हैं हमारी जिंदगी में, लेकिन कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जो बहुत ही खास होते हैं। भाई बहन का रिश्ता भी एक ऐसा ही रिश्ता है। और आज चूंकि रक्षाबंधन का भी दिन है, और ये रिश्ता जो है जिसमें शिकायतें होती हैं, नोकझोंक होती है, रूठना होता है, मनाना होता है, लेकिन इन सबसे ऊपर इसमें एक दूसरे के लिए हमेशा खड़े रहना और एक भरोसा कायम रहता है। क्योंकि भाई बहन का जो रिश्ता होता है वो एक भरोसे का रिश्ता है और एक दूसरे के लिए हमेशा साथ खड़े रहने का रिश्ता है। तो राखी केवल एक त्योहार नहीं बल्कि बचपन की यादों, प्यार और विश्वास तथा जिम्मेदारी का प्रतीक है। इसी को कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं अगला गीत।

दोस्तों, भाई बहन का रिश्ता ऐसा रिश्ता होता है जो कभी खत्म नहीं होगा। आप सभी श्रोताओं को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं, और आइए इस रक्षाबंधन एक संकल्प लें कि रिश्तों में प्यार बढ़ाएंगे, एक दूसरे का सम्मान करेंगे और अपने भाई बहनों के सपनों को ऊंची उड़ान देंगे। इसी खूबसूरत संदेश के साथ मुझे यानी अमित को दीजिए इजाजत। नमस्कार, और सभी को फिर से रक्षाबंधन की बंधन की ढेरों

0: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आपसे कुछ क्षणों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। भारत ने बाढ़ प्रभावित नेपाल के लिए तीसरी उड़ान से 10 टन मानवीय सहायता भेजी। विदेश मंत्रालय ने कहा 320 भारतीय नागरिकों से अब भी कोई संपर्क नहीं। नेपाल तिब्बत में विनाशकारी बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 547 हुई। सीमा के दोनों तरफ 1500 से अधिक लोग अब भी लापता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। सरकारी उपायों से बाजार में चीनी की उपलब्धता बढ़ी। मिलों से सीधे प्राप्त चीनी की कीमतों में लगभग 20% की गिरावट। देश के औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर इस वर्ष जुलाई में 6.7% रही। और बुडापेस्ट स्क्वाश ओपन के फाइनल में आज रात भारत के वेलवन सेंथिल कुमार का सामना हंगरी के बालाज फारकश से। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया है कि नेपाल में बुधवार को अचानक बाढ़ के बाद 320 भारतीय नागरिकों से कोई संपर्क नहीं हो सका है। उन्होंने कहा कि अन्य देशों के भारतीय मूल के लगभग 100 लोगों से भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। श्री जायसवाल ने नई दिल्ली में बताया कि तमिलनाडु के 21 भारतीय नागरिक बाढ़ प्रभावित इलाकों से नई दिल्ली पहुंच गए हैं।
2: 21 भारतीय नागरिक जो फंसे हुए थे कैलाश मानसरोवर की यात्रा पे गए थे, कल काठमांडू पहुंचे उस क्षेत्र से जहां पर ये हादसा हुआ, और कल हमारे राजदूत उनसे मिले, उनका हालचाल पूछा और हमारी एमबेसी ने उनके लिए ये ट्रैवल अरेंजमेंट बनाया। आज वो दिल्ली पहुंच चुके हैं। उसके अलावा 63 भारतीय नागरिक जो त्रिशूली हाइड्रो पावर में काम करते हैं, त्रिशूली 1, उनको भी वहां से बचाया गया है। 96 भारतीय नागरिक चीन से नेपाल की तरफ आ चुके हैं और ये सभी लोग सुरक्षित हैं।
1: इस बीच भारत ने नेपाल को मानवीय सहायता बढ़ा दी है। 10 टन मानवीय सहायता लेकर तीसरी उड़ान काठमांडू के लिए रवाना हो गई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए यह जानकारी दी। डॉ जयशंकर ने कहा कि इस उड़ान में डॉक्टरों, पैरामेडिक्स और टनल रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए रेकी टीम के 11 सदस्य भी शामिल हैं। नेपाल और तिब्बत में विनाशकारी बाढ़ से मृतकों की संख्या बढ़कर 547 हो गई है। 1545 लोग अब भी लापता हैं। राहत और बचाव दल लापता लोगों की तलाश कर रहे हैं। दक्षिण पश्चिम चीन में 5.1 तीव्रता के भूकंप के बाद बाढ़ की आशंका फिर बढ़ गई है। अधिकारियों ने प्रभावित जिलों से 800 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। भोटे कोशी नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण त्रिशूली क्षेत्र के निवासियों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने का आदेश दिया गया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नेपाल से सुरक्षित वापस आए तमिलनाडु के 21 तीर्थयात्रियों से मुलाकात की। ये तीर्थयात्री कल बाढ़ प्रभावित क्षेत्र से काठमांडू पहुंचे थे और आज दोपहर नई दिल्ली पहुंचे। डॉ जयशंकर ने नेपाली सेना और सरकार को इसके लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने नेपाल के विदेश मंत्री से बात की और हर संभव सहायता देने की पेशकश की।
3: उन्होंने मुझे बताया कि उनके साथ असल में क्या हुआ था और बाढ़ कैसे आई थी। ये बहुत आभारी हैं, खासकर नेपाल सेना के, जिन्होंने उस बेहद मुश्किल जगह से निकालने के लिए इतना बड़ा प्रयास किया। इसलिए अभी हमारा प्रयास लोगों की राहत और बचाव कार्यों में नेपाल की मदद करने का है। आज सुबह ही मैंने नेपाल के विदेश मंत्री से बात की है। हमने उन्हें कई तरह की सहायता की पेशकश भी की है।
1: सिक्किम सरकार नेपाल में बाढ़ की स्थिति पर कड़ी नजर रख रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सरकार वहां फंसे सिक्किम निवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए समुचित कदम उठा रही है।
4: सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेमसिंह तवांगोले ने सिक्किम के 8 निवासियों से फोन पर बात की। जानकारी मिली है कि सभी 8 लोग सुरक्षित हैं। फंसे हुए सिक्किम के निवासियों के लिए सिक्किम सरकार ने कल नेपाल फ्लैश फ्लड टास्क फोर्स का गठन किया है। टास्क फोर्स को स्थिति से प्रभावित सिक्किम के नागरिकों के लिए आवश्यक सहायता के समग्र समन्वय, निगरानी और सुविधा प्रदान करने के

0: जिम्मेवारी सौंपी गई है। टास्क फोर्स भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के साथ नियमित समन्वय बनाए हुए है और संबंधित सिक्किम निवासियों तथा उनका परिवारों के साथ भी लगातार संपर्क में है। मोहनक चटर्जी, आकाशवाणी समाचार, गैंगटॉक।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: मेरी बैंक हमेशा मेरे साथ चलती है। सुबह उठती हूँ तो पैसे जमा कराती है, कस्टमर ज्यादा हो जाते हैं तो पूरा गल्ला संभाल लेती है, आधी रात को भी उठा के बताती है कि मैडम लक्ष्मी भर भंडार का पेमेंट आ गया है। जनधन बैंक खाता क्या मिला मुझे, तो उंगलियों के छोर पर बीमा, पेंशन, डीबीटी सारी बैंकिंग सुविधाएं मिल गई हैं। 12 साल में 59 करोड़ जनधन खाते खुले, जिसमें 56% खाते तो सिर्फ महिलाओं के हैं। पीएम जनधन योजना के 12 साल, ज्यादा बचत, ज्यादा काम।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री जन धन योजना के आज 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये देश में वित्तीय समावेशन की दिशा में प्रमुख पड़ाव है। एक रिपोर्ट।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में जनधन योजना के अभूतपूर्व परिवर्तनकारी परिणामों का प्रभाव बेमिसाल है। श्री मोदी ने कहा कि जनधन योजना वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और देश के लोगों को सक्षम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इस योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में आज ही के दिन किया था। योजना के तहत अब तक 59 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं। ये योजना सभी भारतीयों के लिए बैंकिंग पहुँच को बना रही है। योजना के तहत महिलाओं के लगभग 56% खातों सहित 78% खाते ग्रामीण या अर्ध शहरी क्षेत्रों में खोले गए हैं। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेफ के निमंत्रण पर ताशकंद का दौरा करेंगे। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति मिर्जियोयेफ के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत करेंगे।
3: भारत और उज्बेकिस्तान ने 2011 में अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। तब से द्विपक्षीय संबंध कई क्षेत्रों में व्यापक रूप से बढ़े हैं। प्रधानमंत्री की आगामी यात्रा भारत और उज्बेकिस्तान के बीच करीबी, बहुआयामी और बढ़ते राजनीतिक साझेदारी को बढ़ावा देगी। चर्चा के दौरान आपसी सहयोग के कई इलाकों को शामिल किए जाने और द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के नए रास्ते तलाशने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज्बेकिस्तान।
1: सरकार ने कहा है कि देश में चीनी की कोई कमी नहीं है और उचित कीमतों पर पर्याप्त मात्रा में चीनी उपलब्ध कराने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जाएंगे। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने बताया कि हाल के दिनों में चीनी की कीमतों में लगभग 20% की गिरावट आई है, जबकि खुदरा चीनी की कीमतें भी कम होने लगी हैं।
4: बातचीत कोटा के अंतर्गत चीनी मिलों को आवंटित मात्रा से कम 40% चीनी पहले सप्ताह में और शेष मात्रा अगले सप्ताह में बेचनी होगी। मंत्रालय के अनुसार नए सीजन के लिए गन्ने की पेराई 15 अक्टूबर से शुरू होगी। अक्टूबर महीने के दौरान 10 लाख टन से अधिक चीनी उत्पादन होने की उम्मीद है। सरकार ने चीनी मिलों को अक्टूबर में उत्पादित चीनी को बिना किसी प्रतिबंध के बेचने की भी अनुमति दी है, जिससे नए सीजन का उत्पादन जल्द से जल्द घरेलू बाजार में उपलब्ध हो सके। नवंबर में चीनी का उत्पादन लगभग 45 लाख रहने की उम्मीद है, जिससे घरेलू खपत के लिए चीनी की अतिरिक्त आपूर्ति में पर्याप्त वृद्धि होगी। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: कृषि, किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंजाब के किसानों को आश्वासन दिया है कि केंद्र सरकार उनके हितों से कोई समझौता नहीं करेगी और किसी भी देश के साथ किए गए हर समझौते में किसानों के हितों को सर्वोपरि रखा जाएगा। अमृतसर जिले के बाबा बकाला में आज एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी समेत विपक्षी दल ये झूठा प्रचार कर रहे हैं कि केंद्र सरकार किसानों के हितों के खिलाफ समझौते कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। कृषि मंत्री ने विशेष रूप से पंजाब सरकार को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू न करने के लिए जिम्मेदार ठहराया।
5: लेकिन आपकी भ्रष्ट सरकार के कारण हमारी कोशिशें सफल नहीं हो रही। पंजाब के कृषि के लिए एक नया रोड मैप आपके साइंटिस्टों की टीम बनाएगी। हम पंजाब की कृषि की दशा बदलेंगे, दिशा बदलेंगे और किसान की हालत बदलेंगे।
1: परीक्षा सुधारों के लिए गठित उच्चस्तरीय कार्यबल ने विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों सहित सभी हितधारकों से सुझाव आमंत्रित किए हैं। सुझाव 13 सितंबर तक वेबसाइट, व्हाट्सएप या फोन नंबर 1800 1800 4747 के माध्यम से भेजे जा सकते हैं। ये सुझाव ईमेल एग्जाम रिफॉर्म्स टास्क फोर्स @dopt.gov.in के माध्यम से भी भेजे जा सकते हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
6: परीक्षा के संचालन, सुरक्षा, जवाबदेही और संस्थागत व्यवस्थाओं के अलावा परीक्षा में अनुचित साधनों का पता लगाने, रोकथाम करने और उनके समाधान सहित अन्य संबंधित क्षेत्रों के बारे में सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। कार्यबल संस्थागत प्रणालियों और प्रक्रियाओं को मजबूत करने, परीक्षा की निष्पक्षता, उपयुक्त तकनीकों को लागू करने और विद्यार्थियों के हितों की रक्षा करने के उपायों की जाँच कर रहा है। इसका उद्देश्य मजबूत, सुरक्षित, पारदर्शी, न्यायसंगत और भविष्य के लिए तैयार सार्वजनिक परीक्षा प्रणाली विकसित करना है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा परीक्षाओं सहित सार्वजनिक परीक्षाओं के सुगम संचालन और प्रशासन से संबंधित व्यापक सुधारों की जांच के लिए प्रसिद्ध प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ नंदन निलेकणी की अध्यक्षता में कार्यबल का गठन किया गया है। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं चंद्रशेखर शर्मा।
1: इस बीच राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने यूजीसी नेट 2026 की 84 विषयों की अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर दी है। उत्तर कुंजी ugcnet.nta.nic.in पर उपलब्ध है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया है। ये नोटिस मालदा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में इस महीने 60 नवजात शिशुओं की मौत की खबर पर जारी किया गया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने उत्तर प्रदेश में बलिया जिले के सरकारी स्कूल में पिछले दो वर्षों से छठी से आठवीं कक्षा के विद्यार्थियों को दोपहर का भोजन नहीं परोसे जाने के मामले में मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया है। आयोग ने संज्ञान लेते हुए दो सप्ताह के भीतर इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
7: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, एक्स पर @AIRNews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए न्यूज ऑन AIR.gov.in पर जाएं।
1: ये आकाशवाणी है। देश में इस वर्ष जुलाई में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP द्वारा मापी गई औद्योगिक उत्पादन वृद्धि दर वार्षिक आधार पर 6.7% रही। इन आंकड़ों से संकेत मिलता है कि इस दौरान औद्योगिक गतिविधियों में अच्छी गति से वृद्धि जारी रही। हालांकि इस अवधि में विकास की गति जून के संशोधित स्तर से कम रही। एक रिपोर्ट।
8: जून में IIP वृद्धि दर 7.3% से बढ़कर 8.8% पहुंच गई थी, जो यह भी संकेत देती है कि जुलाई तिमाही में प्रवेश करने वाली औद्योगिक गति शुरू में अनुमान से अधिक मजबूत रही। आज जारी सरकारी आंकड़ों के अनुसार IIP सूचकांक में सबसे अधिक महत्व रखने वाले विनिर्माण क्षेत्र में जुलाई में 7.3% की वृद्धि हुई, जबकि बिजली और गैस की आपूर्ति में 8.7% की वृद्धि दर्ज हुई। जल आपूर्ति, सीवरेज और अपशिष्ट प्रबंधन में 7.4% की वृद्धि हुई। हालांकि खनन क्षेत्र पिछले महीने 0.9% की नकारात्मक वृद्धि दर्ज करते हुए पिछड़ गया। इंतखाब की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष विशेष शुक्ला।
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से 6 दिन की अमेरिका यात्रा पर हैं। यात्रा के दौरान वित्त मंत्री शिकागो, एशविल और न्यूयॉर्क जाएंगी। एशविल में श्रीमती सीतारामन की अध्यक्षता में G20 सदस्य देशों के वित्त मंत्री, केंद्रीय बैंक गवर्नर तथा वरिष्ठ अधिकारी वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। जम्मू कश्मीर में वार्षिक श्री अमरनाथ जी यात्रा आज पारंपरिक छड़ी मुबारक की रस्मों के साथ संपन्न हो गई। ये यात्रा 3 जुलाई को शुरू हुई थी। इस वर्ष 4,80,000 से ज्यादा तीर्थयात्रियों ने पवित्र गुफा में दर्शन किए। भारत के विल्वन सेंथिल कुमार आज रात बुडापेस्ट स्क्वाश ओपन के फाइनल में हंगरी के खिलाड़ी बालाज फारकश से खेलेंगे। सेमीफाइनल में कल सेंथिल कुमार ने भारत के ही वीर चोटरानी को हराया था। नॉर्वे के सम्राट हैरोल्ड पंचम का आज ओस्लो में निधन हो गया। वे 89 वर्ष के थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने इस वर्ष की शुरुआत में नॉर्वे की यात्रा के दौरान सम्राट हैरोल्ड पंचम से अपनी मुलाकात को याद किया। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने ओडिशा के कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कल बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, मैदानी पश्चिम बंगाल, झारखंड, उत्तराखंड और उत्तर पूर्वी राज्यों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इस बीच दिल्ली के कुछ हिस्सों में आज हल्की बारिश हुई। कल राजधानी में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने बाढ़ प्रभावित नेपाल के लिए तीसरी उड़ान से 10 टन मानवीय सहायता भेजी। विदेश मंत्रालय ने कहा 320 भारतीय नागरिकों से अब भी कोई संपर्क नहीं। नेपाल तिब्बत में विनाशकारी बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 547 हुई। सीमा के दोनों तरफ 1500 से अधिक लोग अब भी लापता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। सरकारी उपायों से बाजार में चीनी की उपलब्धता बढ़ी। मिलों से सीधे प्राप्त चीनी की कीमतों में लगभग 20% की गिरावट। देश के औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर इस वर्ष जुलाई में 6.7% रही। और बुडापेस्ट स्क्वाश ओपन के फाइनल में आज रात भारत के वेलवन सेंथिल कुमार का सामना हंगरी के बालाज फारकच से होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
9: Good evening. This is Akashvani. I am Manoj Singh Rana with the news at 9. The headlines. India sends third flight carrying 10 tons of humanitarian assistance to flood-hit Nepal. External Affairs Ministry says 320 Indian nationals remain uncontactable. Death toll in devastating Nepal-Tibet flash floods rises to 547. Over 1,500 people remain missing on both sides of the border. Prime Minister Narendra Modi to embark on a 4-day visit to Uzbekistan and Kyrgyzstan tomorrow. Government measures improve market availability of sugar, ensure faster movement, ex-mill sugar prices fall by around 20%. India's index of industrial production records growth of 6.7% in July this year. And India's Belawal Senthil Kumar to take on Hungary's Balázs Farkas in the final of PSA Budapest Squash Open tonight. India has stepped up humanitarian assistance to Nepal affected by flash floods as a third flight carrying 10 tons of humanitarian assistance has departed for Kathmandu. External Affairs Minister Dr. H. J. Shankar informed this in a social media post. The minister said that the assistance includes portable generator sets, dignity kits, food packets and water purification tablets. Dr. Jayashankar said that an 11-member team of doctors, paramedics and recce team for tunnel rescue operations is also on board. He also reiterated India's support to Nepal's ongoing relief and rescue efforts. Earlier, India had sent more than 47 tons of emergency relief supplies in 2 flights. Meanwhile, the death toll from devastating flash floods in Nepal and Tibet has risen to 547, with 1,545 people still missing as rescue teams search riverbanks and isolated settlements for survivors and bodies swept downstream. Authorities have evacuated more than 800 people from affected districts and issued fresh warnings after a 5.1 magnitude earthquake struck southwestern China, raising fears of further flooding. India has launched a major rescue and relief operation. The Ministry of External Affairs has said that 320 Indian nationals remain uncontactable or are reportedly missing following the flash flood tragedy on Wednesday. External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said around 100 people of Indian origin holding both nationalities also remain uncontactable. Addressing the media in New Delhi today, Mr. Jaiswal said that 63 Indian nationals working at the Shuli 1 hydropower project were rescued from the affected area. He said another 96 Indian nationals who were stranded on the Chinese side have safely crossed into Nepal by land and efforts are underway to evacuate them. Mr. Jaiswal informed the media that 21 Indian nationals from Tamil Nadu who had reached Kathmandu from the flood-affected area yesterday have arrived in New Delhi this afternoon.
10: 21 Indian nationals who had yesterday arrived in Kathmandu from the area that was affected by this flood. They have today landed in Delhi. These 21 Indian nationals, they are from Tamil Nadu and they arrived by Indigo flight which just landed in Delhi. Yesterday, our ambassador had met them in Kathmandu and inquired about their well-being.
9: External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar today met the group of 21 pilgrims belonging to Tamil Nadu in New Delhi who were rescued from Nepal. Later talking to the media, he thanked the government of Nepal and its army for the rescue efforts.
11: They told me about exactly what happened to them, how the floods came, and they were very thankful, particularly to the Nepal army, which made this great effort to get them out of that very difficult place where they were. So right now, our effort is on supporting Nepal in the relief, in the rescue of people. So

महाराज का 10 मिनट पर क्लास की मौसीकी के बज में आज आप सुनेंगे विचित्र वीणा पर बजाया हुआ राग तोड़िए। फनकार होंगे पंडित गोपाल कृष्ण। आखिरी शब प्रोग्राम के तहत सदाबहार फिल्मी नगमे हम आपकी खिदमत में पेश करेंगे। शब के 12:30 पर 12:50 पर खबरें नष्ट की जाती हैं। इसके साथ ही रात के 1 बजे हमारी आज की तीसरी और आखिरी मजलिस की नशात इख्तिताम पजीर होंगी। सामीन, ये था मुख्तसर तारुफ आज की तीसरी मजलिस में पेश किए जाने वाले प्रोग्रामों के हवाले से। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है।

वीडियो वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत एक फनकार सिलसिले के तहत चंद सदाबहार, एक फनकार सिलसिले के तहत चंद गैर फिल्मी गजलें।

0: मकसद रही। और आज रात पीएसए बुडापेस्ट स्क्वाश ओपन टूर्नामेंट के फाइनल में भारत के वेलवेन संथेल कुमार का मुकाबला हंगरी के बालाज फारकास से होगा। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: डीडी वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़ मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर, ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है।

नींबू पानी पीने के बाद लाजमन 30 मिनट तक भूखा रहना जरूरी नहीं। अगर आप अपने मामूल की सेहतमंद खुराक के मुताबिक नाश्ता करते हैं तो कर सकते हैं। सामिन, उम्मीद करते हैं कि बातें आपको पसंद आएगी। ये सिर्फ मालूमात है। अगर आपको किसी तरह का कोई मसला है या आपकी कोई दवा वगैरह चल रही है तो इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर मशवरा कीजिएगा और हमें अपनी दुआ में जरूर याद रखिएगा।

0: मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़ मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेशे खिदमत है प्रोग्राम मार्केट मंत्रा।
1: अब सुनिए आज शाम 6:30 बजे प्रसारित मार्केट मंत्रा कार्यक्रम का पुनः प्रसारण।

0: This is Akashvani. Good evening and welcome to Market Mantra. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak.
1: नमस्कार मार्केट मंत्र के ताजा रूप में आपका स्वागत है. आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम देश और दुनिया की चुनी हुई कारोबारी आर्थिक और शेयर बाजार से संबंधित ताजा खबरों को लेकर हाजिर हैं. हमारे साथ खबरों पर चर्चा के लिए आज इस स्टूडियो में आमंत्रित हैं देश के आर्थिक मामलों के जाने माने विशेषज्ञ एके भट्टाचार्य. श्री भट्टाचार्य जी कार्यक्रम में आपका स्वागत है.
2: नमस्कार धन्यवाद.
1: आइए शुरुआत करते हैं और ऐसी में हेडलाइन से.
0: Benchmark domestic stock market indices rise, Sensex adds over 300 points, Nifty settles near 24,200 level. India's industrial output grows by 6.7% in July this year, and India's foreign exchange reserves surge to a record high of $729.3 billion as of the previous week.
1: घरेलू शेयर बाजार में प्रमुख सूचकांक लाभ के साथ हुए बंद. सेंसेक्स 300 अंक से अधिक उछला. निफ्टी 24,200 के स्तर के नजदीक बंद हुआ. देश के औद्योगिक उत्पादन में इस वर्ष जुलाई में 6.7% की वृद्धि हुई और देश का विदेशी मुद्रा भंडार 21 अगस्त को समाप्त सप्ताह में बढ़कर अब तक के सर्वोच्च स्तर 729 अरब 30 करोड़ डॉलर पर पहुंचा.

0: And before we take our main stories in detail, here is an important disclaimer. The views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: Ab shuru karein share bazaar se khabron ka silsila. घरेलू शेयर बाजार में आज खरीदारी तेज रही, प्रमुख सूचकांक लाभ में रहे। कारोबार के अंत में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 331 अंक यानी 0.43% की बढ़त के साथ 77,265 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 85 अंक यानी 0.35% की तेजी दर्ज करता हुआ 24,176 पर पहुंच गया। विस्तारित बाजार की ओर चलें तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के विस्तृत बाजार में मिड कैप 100 इंडेक्स में मामूली बढ़त देखने को मिली, जबकि स्मॉल कैप 100 इंडेक्स 0.2% लाभ के साथ बंद हुआ।
0: बेंचमार्क डोमेस्टिक इक्विटी इंडिसीज एंडेड इन पॉजिटिव जोन टुडे। सेंसेक्स एडवांस बाय 331 पॉइंट्स 0.43% टू क्लोज एट 77,265। निफ्टी गेन बाय 85 पॉइंट्स 0.35% टू सेटल एट 24,176। इन द ब्रॉडर मार्केट एट द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज द मिड कैप 100 इंडेक्स इक्ड आउट अ मार्जिनल गेन, व्हाइल द स्मॉल कैप 100 इंडेक्स

0: at 8.2%. Earlier, the markets opened with a gap up after falling for two consecutive sessions and traded in a narrow range throughout the day.
1: नजर डालें सेंसेक्स पैक पर तो 30 में से 21 कंपनियों के शेयर आज लाभ के साथ बंद हुए. लाभ उठाने वाली प्रमुख कंपनियों में सबसे अव्वल रही टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जिसके शेयर 4.1% बढ़त के साथ बंद हुए. इन्फोसिस को 3.3% का और टेक महिंद्रा के शेयर 3.2% मुनाफे के साथ बंद हुए. उधर घाटा उठाने वाली प्रमुख कंपनियों में आईसीआईसीआई बैंक के शेयर 1.3% लुढ़क गए. अल्ट्राटेक सीमेंट को 1.2% का नुकसान हुआ जबकि एशियन पेंट्स के शेयर 1.1% नीचे आकर बंद हुए.
0: In the sectoral indices on the Bombay Stock Exchange, 17 out of the 28 sectors edged upward. Among the top gainers, focused IT jumped 3.4%, information technology climbed 3.3%, and PSU banks rose by 1.3%. In contrast, insurance decreased by 0.6%, realty, consumer durables, and oil and gas each dipped by 0.3%, and FMCG as well as energy fell by 0.2%. The overall market breadth at the BSE was positive. A share of 2,308 companies advanced, 2,029 companies declined, and 212 companies remain unchanged.
1: नजर डालें रुपए की स्थिति पर तो अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में एक डॉलर की तुलना में रुपया आज 16 पैसे मजबूत हुआ. 95.39 रुपए के स्तर पर बंद हुआ. एकेबी, आज हम बाजार की गतिविधि पर आपकी प्रतिक्रिया समझना चाहेंगे. बाजार में तेजी रही, क्या प्रमुख कारण रहे आज की तेजी के पीछे?
2: प्रधान जो कारण जो आज हमें दिखने को मिला वो है इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर की जो परफॉर्मेंस जो है उसके ऊपर स्टॉक मार्केट में काफी इसमें प्रकाश डाला है. अगर आपको आपको मालूम होगा कि वैश्विक बाजार में एनवीडिया का जो परफॉर्मेंस रहा है एक दो दिन पहले उसका जो परफॉर्मेंस जो है वो काफी आशाजनक रही है और उस आशाजनक परफॉर्मेंस से अनुप्राणित होकर आज की आईटी सेक्टर में काफी उछाल दिखने को आई है. हालांकि बैंकिंग सेक्टर में भी काफी उछाल आई है पर उतना नहीं आया जितना कि आईटी सेक्टर में आई है. मैं कहूंगा कि जो पिछले दो दिन की जो गिरावट के बाद जो बैंकिंग और मेटल स्टॉक्स में ज्यादा सेंटर्ड थी आज की जो रिवाइवल जो है स्टॉक मार्केट की वो आईटी सेक्टर से ज्यादा जुड़ा हुआ है. करीबन 3% आईटी सेक्टर का एक दिन में बढ़ना ये आईटी सेक्टर का एक नया असेसमेंट मुझे लग रहा है कि हो रहा है कि पहले में जो एआई लेड जो एक हताशा एक छा रही थी मुझे लग रहा है कि वो हताशा को दूसरी तरह से उसका एक आकलन किया जा रहा है. उसी का परिणाम आज स्टॉक मार्केट हुआ था पहली बात. दूसरी बात यह है कि जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हैं वो अभी भी पैसा ले जा रहे हैं पर अगर आप नेट बाई नेट खरीदी और नेट बेचने में अगर उसको देखें कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की जो बेचना जो है उसकी गति थोड़ी कम हुई है और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की जो खरीदना नेट बाई जो हुआ है उसमें भी बढ़ोतरी हुई है. तो उससे जो मार्केट में थोड़ी बहुत एक स्टेबिलिटी आई है वही आज के मार्केट में वो दर्शा रहा है. और तीसरी बात यह है कि मार्केट में शायद कुछ आशा की किरणें को दिखने को आई. वो आशा की किरणें लगा कि मुझे दो तरफ से आई. एक तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के जो नंबर जो आए हैं उसमें हालांकि वो लैगिंग नंबर्स हैं वो फॉरवर्ड लुकिंग नंबर्स नहीं है पर उसमें ये लगा कि शायद फेस्टिवल सीजन के आने वाले में भी शायद इंडस्ट्रियल ग्रोथ स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में वो जो एक स्ट्रेंथ है वो बरकरार रहेगी. और दूसरी बात कि बहुत जो मार्केट के जो खिलवाड़ जो हैं वो समझ रहे हैं कि जो केविन वॉश का जो जैक्सन होल में जो उनका एक बहुत ही एक एक एक घंटे डेढ़ घंटे बाद मेरे ख्याल से जो वायोमिंग में जो हर साल में एक कॉन्फ्रेंस होता है जैक्सन होल में वो उसको सारा विश्व के सारे जो मार्केट विशेषज्ञ हैं वो देखते रहते हैं कि उनका इन्फ्लेशन के ऊपर इंटरेस्ट रेट के ऊपर और वैश्विक परिस्थिति के ऊपर उनकी क्या टिप्पणियां होंगी, क्या उनके इंगित होंगे, उसको देखते हुए और जो खबरें में जो आ रही हैं आज के मार्केट में जो लगा मुझे कि जब मार्केट चल रहा था कि शायद वो एक ऐसा एक संदेश देंगे जो संदेश मार्केट के लिए उतना बुरा नहीं हुआ है, उसके लिए भी एक आशाजनक एक मार्केट का परफॉर्मेंस रहा है।
0: Well, ATV, given us a strong summary of what happened in the market today and what are the influences for the market as well. The IIP figures for the month of July, which has gone up by 6.7% and it covers four sectors, it came after market hours. So clearly, it should have an impact when market reopens next week starting Monday.
2: Well, you are underestimating the market's intelligence mechanism. The market's intelligence mechanism is such that they anticipate these numbers, and these numbers are already doing the rounds that particularly the manufacturing sector has done very well, which is why the market is reacted even before the numbers were officially made public.
0: Because the PMI for July and August is well above 50,
2: absolutely,
0: which shows expansion and not contraction. Okay. So yes, I do agree with what you are saying. Just coming back to what's happened today in the market, despite the closing auction session for the F&O expiry, the market still went up today. What is it about the market today, apart from information technology, that is really, you know, fueling that kind of confidence? You mentioned about banking as well. Bank Nifty fell only by 14 points, that index, but the PSU banks went up by 1.3%. Why is that?
2: Well, there is a certain clouded outlook on credit. The banking sector is, in a sense, split quite wide open, whereas the public sector, the credit outlook is far, far better, and their performance criteria measured by the net NPAs, net non-performing assets, is as good, if not better, than the private sectors. On the contrary, the private sector, private banks are still struggling with how to take care of the credit. You know, the credit demand growth is still very tepid. So, which is why you will see that if you take the overall banking sector, they have done well, I think 1.14% increase. But if you look at the public sector banks, their performance has been far better, as you rightly pointed out, than the private sector bank.
0: What is the scope for mid-cap 100 and the small-cap 100 index? So they have just gone up very marginally. But typically, when you see the large-cap index, Sensex and Nifty go up, then mid-cap and small-cap also go up in a way disproportionately higher, but that's not the case in the market today.
2: That's because the mid-cap and the small-cap had suffered a significant erosion in their value in the previous many sessions, and I think what you are seeing is probably an upside to the mid-cap as well as the small-cap, more with the small-cap, where the upside looks to be on the higher, on a fairly significant than what we are seeing on the large cap. Because if you have noticed that in the previous many sessions, mid cap took a big hit, small cap took a smaller hit, and now it's time for the mid cap and the small cap to probably make some recouping.
0: So typically we talk about FIIs, FPIs finding value in our markets, and they have been the net sellers so far. What is the strategy of the DII, the domestic institutional investors, mutual funds, insurance companies? What are they looking for in terms of valuation in our markets right now?
2: Right now, I think the domestic institutional investors are not really looking at the valuation. On the contrary, they're trying to keep their powder dry in light of many IPOs that are going to hit the market, number one. Number two, the government is going to sell stakes in some of their companies, particularly the IDBI bank. So the domestic institutional investors are actually waiting in the wings, keeping their powder dry, maybe booking some gains and keeping the money so that they can make the right investments in these IPOs as well as the disinvestment offers.
0: Well, let's move on to now some macroeconomic data. India's industrial output growth as measured by the index of industrial production expanded by 6.7% in July this year on an annual basis. The July data indicates that industrial activity continued to expand at a healthy pace, although the pace of growth moderated from the revised June level. The sharp upward revision in June IIP growth to 8.8% from 7.3% also indicates that the industrial momentum entering the July quarter was stronger than initially estimated. According to government data released today, manufacturing, which carries the heaviest weight in the index, grew by 7.3%, while electricity and gas supply posted a 8.7% expansion in July. Water supply, sewerage and waste management rose by 7.4%. However, the mining sector proved to be a laggard, posting a negative growth of 0.9% last month. AKB spoke about strong July numbers and how the market has also managed to predict that there would be strong July numbers as well, again based on what the PMI manufacturing is for July and August. For August is 52.9. My question is, why is mining seeing a negative growth of 0.9%, even though if you look at the index of core industries data for the month of July, which went up by 5.4%, out of the nine sectors, you have iron ore, which actually saw a rise of 29.5% in terms of its output, and coal also saw a rise of 7.6%. These are both commodities and they are both dependent on mining.
2: Well, what is happening is that in July, there was a sudden, especially in the latter half of July, there was a sudden surge of rains and the monsoons had picked pace. And as you would know, that in the month of July, the mining sector and the quarrying sector, they normally, traditionally, do not come up with good numbers. They actually very often shows in a negative contraction. Now, you will naturally point out that it is July last year, also something similar. But this year, the July, the second half, has suddenly surged the monsoon. There was the rains had surged, and almost virtually all activities, but mining, and even some sectors like cement, saw a downtrend, and which is why the mining and the quarrying, the numbers are very unimpressive. But I think it's very important to note that the manufacturing, if you look at the April-July combined number, is still at a very healthy above 6.5%. So it's still not what it ought to be. It should be manufacturing in the country of India's nature and complexity should be in double digit. But still, I would say that reaching a level of 6.5 is a good sign.
1: यहाँ पर एक भी समझना चाहेंगे कि जून की तुलना में थोड़ा सा हम वृद्धि दर में थोड़ा सा हम कमी देख रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर ये आंकड़े क्या विश्वास दिला रहे हैं हमें इस पूरे वर्ष के यदि अवधि को हम देखें तो जुलाई में जो अनुमान था उससे बेहतर प्रदर्शन रहा.
2: जरूर आपने एक अच्छा प्रश्न किया है. मुझे जो ये लग रहा है कि जो आईआईपी नंबर जो है ये वैल्यू बेस्ड नहीं है, ये वॉल्यूम बेस्ड है. इसका मतलब ये है कि ये कितने हजार यूनिट या कितने लाख करोड़ यूनिट प्रोडक्शन हुआ है उसको ये आकलन करती हैं, ना कि इनके दाम आकलन करती हैं. तो उस तरफ से अगर आप देखेंगे वॉल्यूम बेस्ड आईआईपी जो है ये दर्शाती है कि जो एसेंशियल मार्केट में जो डिमांड जो है आपकी, स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की जो डिमांड जो है वो अभी भी काफी स्वस्थ है, काफी अच्छे हैं. और आने वाले महीनों में मुझे लगता है कि अगर ये ट्रेंड को मेंटेन करें तो हमें चिंता की बात शायद थोड़ी कम होगी. जो हम पहले जब वेस्ट एशिया के कॉन्फ्लिक्ट के बाद बारिश न आने के बाद में जो हमारा जो आउटलुक तो था वो इतना था. और सबसे बड़ी बात यह है कि इसका जो पॉजिटिव इम्पैक्ट हमारे जीडीपी ग्रोथ जब आंकलन आएगी, देन फर्स्ट क्वार्टर का और सेकेंड क्वार्टर का हम काफी उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा.
1: आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं. आर्थिक मोर्चे पर अच्छी खबर है. देश का विदेशी मुद्रा भंडार 21 अगस्त को समाप्त सप्ताह के दौरान 12 अरब 40 करोड़ डॉलर बढ़कर अब तक के सर्वोच्च स्तर 729 अरब 30 करोड़ डॉलर पर पहुंच गया. भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार इस दौरान विदेशी मुद्रा भंडार का एक

0: ये सबसे बड़े घटक विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां 9 अरब 40 करोड़ डॉलर बढ़ी और ये स्तर 591 अरब 30 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया। वहीं स्वर्ण भंडार में 2 अरब 80 करोड़ डॉलर की बढ़ोतरी हुई है और ये बढ़कर 114 अरब 20 करोड़ डॉलर पर पहुंच गया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत के सुरक्षित भंडार में 26 मिलियन डॉलर की बढ़ोतरी हुई और ये 4 अरब 90 करोड़ डॉलर के आसपास पहुंच गया है। उधर विशेष आहरण अधिकार यानी एसटीआर में 112 मिलियन डॉलर की बढ़ोतरी हुई और ये 18 अरब 80 करोड़ डॉलर के स्तर तक पहुंच गया है। एकेबी रिकॉर्ड स्तर पर मुद्रा भंडार अपना पहुंचा है, क्या दर्शा रहा ये और किन कारणों से इसमें यह बढ़ोतरी हम देख रहे हैं?
1: अगर जब पश्चिम एशियाई में जब युद्ध छिड़ा उसके बाद तेलों के दाम बढ़े तब हमारे पास उस समय करीबन 722 बिलियन डॉलर की विदेशी मुद्रा कोष था। उसके बाद ये काफी नीचे आ गया था, करीबन 680 तक 685 तक आ गया था। और आपको ये शायद नोटिस करेंगे, ये नंबर जो है ये 21 अगस्त के नंबर हैं और 21 अगस्त तक हमारी जो नई जो स्कीम्स जो थी FCNRB के नेम्स जो NRI के जो पैसे जो आ रहे थे वो पैसे काफी अंदर आए हैं, करीबन 50 बिलियन डॉलर या 56 बिलियन डॉलर की पैसे जो आए अगस्त 31 तक उसका अवधि है वो आएंगे। मुझे लगता है कि ये अभी नहीं है और भी थोड़ा बढ़ेगा और ये बढ़ने का मतलब ये है कि हमारी जो मंथली इम्पोर्ट की जो बिल जो है वो 10 महीने नहीं शायद 11 से 12 महीने तक की हमारी जो कैपेसिटी है उसमें वृद्धि होगी। ये एक मैक्रो इकोनॉमिक दृष्टिभंगी से एक्सटर्नल सेक्टर की ये जो छवि जो है ये मार्केट के लिए इकोनॉमी के लिए ये एक पॉजिटिव एक सिग्नल है।
0: यहां पर श्रोताओं के हित में FCNRB ने किस तरह से भूमिका निभी, बहुत संक्षेप में ये
1: NRI को एक फैसिलिटी दी थी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कि वो अपनी जो विदेश के मुद्रा यहां पे वो जमा कर सकते हैं और उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा उसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक सब्सिडी भी देगी, जिससे कि और जो काफी कमर्शियल बैंकों ने का उनका लेवरेज देकर वो पैसा यहां पे ला सकते हैं। तो जो समस्या नॉर्मल जो FCNR NRI डिपॉजिट में होता है कि एक्सचेंज रेट के जो तारतम्य जो होता है उससे ज्यादा इंसेंटिव वाइज नहीं होते हैं, इस इंटरेस्ट रेट की जो स्ट्रक्चर जो थी वो उससे NRI ने काफी लाभ उनका लाभ उठाया और इसीलिए करीबन 56 बिलियन डॉलर का पैसा अभी तक आ चुका है।
2: In more news, Prime Minister Narendra Modi has said that the Jan Dhan Yojana has delivered unprecedented scale and transformative outcomes with an unparalleled impact in the last 12 years. In a social media post, Mr. Modi said that the Jan Dhan Yojana is playing a significant role in advancing financial inclusion and empowering people across the country. Under the Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana, more than 59 crore accounts have been opened so far, with total deposits amounting to 3,17,000 crore rupees. The scheme was launched by Prime Minister Modi on this day in 2014. As the world's largest financial inclusion initiative, the scheme continues to redefine access to banking for all Indians. We have a report.
3: Under the Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana, more than 59 crore accounts have been opened so far, with total deposits amounting to 3,17,000 crore rupees. As the world's largest financial inclusion initiative, the scheme continues to redefine access to banking for all Indians. The average deposit per account is 5,356 rupees. Under the Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana, 78% of the accounts have been opened in rural or semi-urban areas, and approximately 56% of the accounts are owned by women. Over 41 crore rupee cards have been issued to Jan Dhan account holders. The scheme has also empowered millions, particularly the marginalized sections, to access banking and financial services to improve their socio-economic conditions. Due to initiatives like Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana, India's financial inclusion index has risen from 53.9 in 2018 to 67 this year, showcasing deeper access to credit, insurance, saving and digital payments. Anupam Mishra, Akashwani News, Delhi.
0: आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन तथा कनाडा के वित्त और राष्ट्रीय राजस्व मंत्री फ्रांस्वा

0: फिलिप शैंपेन के बीच कनाडा के टोरंटो में आर्थिक और वित्तीय वार्ता संपन्न हुई। दोनों पक्षों ने संयुक्त बयान में कहा कि यह बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्ने के बीच इस वर्ष मार्च में नई दिल्ली में हुई बैठक में द्विपक्षीय आर्थिक और वित्तीय सहयोग को मजबूत करने के लिए किए गए वादे को आगे बढ़ाती है। दोनों देशों ने 2026 के अंत तक भारत कनाडा व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर बातचीत पूरी करने की अपनी साझा प्रतिबद्धता को दोहराया। मंत्रियों ने वैश्विक आर्थिक घटनाक्रमों और घरेलू नीतिगत प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श किया। उन्होंने द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों को और मजबूत करने तथा दोनों देशों के बीच वित्तीय और वाणिज्यिक संबंधों का विस्तार करने के तरीकों पर चर्चा की। मंत्रियों ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $70 बिलियन कनाडाई डॉलर तक बढ़ाने की इच्छा को भी दोहराया। भारत ने जल्द से जल्द द्विपक्षीय निवेश संधि पर बातचीत शुरू करने की अपनी तत्परता व्यक्त की। और आगे बढ़ते हैं
1: टू द एशियन मार्केट्स
0: और नजर डालें एशिया के प्रमुख बाजार दक्षिण कोरिया पर। वहां कोस्पी सूचकांक 1.8% बिकवाली के दबाव में नीचे आ गया। उधर जापान के निक्की 225 सूचकांक में 0.4% की वृद्धि हुई।
1: In more news, Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi said renewed diplomacy with Washington remains possible if the US changes its approach and abandons coercion. Mr. Araghchi said in a social media post that the US should build trust, speak respectfully, acknowledge our rights and uphold commitments. He also described recent talks with Qatar's Prime Minister and Foreign Minister Sheikh Mohammed bin Al Thani as productive and creative. Moving on to the crude oil market, global crude oil prices eased today. Brent crude was trading 0.5% down at $89.30 per barrel in intraday trade. West Texas Intermediate crude was trading 0.8% lower at $82.84 per barrel when reports last came in.
0: भारतीय सराफा बाजार में 24 कैरेट सोने का मूल्य समाचार तैयार किए जाने तक 0.7% बढ़कर 1,59,578 रूपये प्रति 10 ग्राम पर चल रहा था। वहीं चांदी 1.8% बढ़कर 2,43,892 रूपये प्रति किलो पर कारोबार कर रही थी। और बस यहीं पर श्रोताओं की ओर से के भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: नमस्कार।
1: And before we close, a reminder of the headlines. Benchmark domestic stock market indices rise. Sensex adds over 300 points. Nifty settles nearly 24,200 level. India's industrial output grows by 6.7% in July this year. And India's foreign exchange reserves surge to a record high of $729.3 billion as of the previous week. And that's it in this edition of Market Mantra for now. Goodbye.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।

भाई बहन के मुकद्दस त्योहार पर आप सभी दोस्तों को मुबारकबाद। और उसी पे ये नगमा था, लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म अनपढ़ से नगमा निगार आजमीद अली खान तर्ज बनाई थी मदन मोहन ने, और इस नगमे की फरमाइश भेजी थी आप सभी दोस्तों ने। सिद्धेश्वर नगर यतमाल से पंजाब रामटेके, यशोधरा रामटेके, शरिया रामटेके, करनाल से बरविंदर सिंह सोढ़ी, और असलगांव बुलडाना महाराष्ट्र से राजू माटे, गजानन माटे और संजय माटे, उत्तम नगर दिल्ली से कमला रानी, बोधराज खोरवाल और भानु प्रकाश, राहत गांव कैंप अमरावती से अमरावती महाराष्ट्र से दिलीप रमिकर, हर्ष रमिकर और अक्षय रमिकर, जिला अम्बागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, आयशा और सविया, और इसी नगमे को सुना चाहता छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश और राशि राजेश, विजय सुरलकर, रत्नमाला सुरलकर, हर्षल सुरलकर, आप हैं मोताला महाराष्ट्र से, फरियाद हुसैन अंसारी, शकील अहमद इदरीसी और शाहनूर अंसारी, आप ग्राम पोस्ट हरिपुर मठ के लिए जिला बरेली से, शेरवानी स्कूल गंडुनवाड़ा से आफ्ताब अंसारी, रियाज अहमद अंसारी और अरवर मास्टर, और इसी नगमे के लिए नई दिल्ली से इंद्रजीत छावड़ा, स्वीटी छावड़ा और रविंदर छावड़ा, महाराज कीर्तनपुर गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी और मीनाक्षी गोस्वामी, नरगौर छत्तीसगढ़ से, और गौतम गौर, हिमांशु गौर, अवेश गौर, आप हैं उदयपुर राजस्थान से, बोगुर चौक गंगजाला सरसा से राजे राधे कुमार विद्यार्थी, वीर राष्ट्रवीत राधे विद्यार्थी, बुल्की वाली फन्ना झा, और सिद्धार्थनगर दयापुर भावली से गजानन अले, नवदीप अले और अशोक अले, कस्बा बड़ौरा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर और जयप्रकाश राहुल, चंडीगढ़ सिटी से सतीश अनेजा, मिबला अनेजा, सुरेश नारंग, आशु नारंग और विनोदपुरी सहारनपुर से, डॉक्टर तस्नीम कौशल, डॉक्टर इशिता सैनी और डॉक्टर प्रियंका मोदी, एमजीएम मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर से, मनोहर लल्ला पीरजादा, नसरीन मिर्जा और अरबाज शहबाज का ईमेल हमें मिला पश्चिम चौकगंज डुंडवारा से, और नगर निगम वार्ड 28 नाज मंजिल महसौल सीतामढ़ी बिहार से अकरम हुसैन प्रिंस, बेगम शतकम बहुरुबीना वसीम, अजमेर शरीफ राजस्थान से सैयद आलम हाशमी, गुन्नाज सलमा हाशमी और मोहम्मद आलम हाशमी, पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत और किसु तासु, सारोल गंज डुंडवारा से मोहम्मद उस्मान अंसारी, मोहम्मद कलीम अंसारी और शमसुल कमर राही, जामिया गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल और दीपक जायसवाल का ईमेल हमें मिला, तेलंगाना निजामाबाद से शेख अल्लाह बख्श, बेगम रबिया शेख और शेख रहीमुन्ना, वार्ड नंबर 1 पुफाली जिला यवतमाल से जयराम सिंगाकर, दिशांत कुमार सिंगाकर और अर्पिता अलकमश, समीना मुदस्सिर और फिरदौस, आप सो जाए जुम्मा नगर खंडवा के आप बच्चे, और कुमारगंज श्रीरामपुर से अशोक दले, सविता दले और अंकित दले, जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से राम शरवण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा और मंजू, नायवाला जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से वेद मेधा और अलका मेधा, आइए दोस्तों सुनते हैं तेरे घर के सामने फिल्म से ये नगमा मोहम्मद रफी की आवाज में, नगमा निगार है हसरे जयपुरी तर्ज बनाई है एच डी बर्मन ने और पसंद किया है आप दोस्तों ने, साइकिल शिरडी से सुरेश मलोदे, वर्षा मलोदे और शरिया मलोदे, सुशांत प्रेजा, मास्टर नरेश कुमार और लड्डू कुमारी का ईमेल हमें मिला टिम्बर मार्केट कीर्ति नगर नई दिल्ली से, और फ्रॉम निजामाबाद तेलंगाना से इमरिद रूमानी, डॉक्टर मोहम्मद जमीर और मोहम्मद फसी, वाटीडा रोड मंडी डबली से

अरे दोस्तों, आप सुनते हैं दुलारी फिल्म का ये नगमा, शकील बदायूं ने का लिखा हुआ, जिसकी तर्ज बनाई है नौशाद ने, आवाज है शमशाद बेगम की। पसंद क्या है आप दोस्तों ने? अस्तुपुरा होनी चाहिए, भागलपुर से प्रदीप कुमार मंडल, आशीष मंडल और कुंदन मंडल, और इस नगमे के लिए ईमेल आया आतिश रेडियो लिसनर क्लब बिशनपुर गिरडी झारखंड से, इम्तियाज इमाम आतिश, तायर परवीन आतिश और डॉक्टर मोहम्मद आसिफ रजा की जानिब से, बुल्डाना इस्लामपुर महाराष्ट्र से सादिर दमोदर, शशिकला दमोदर और सुमोद कुमार दमोदर, किशनगंज बिहार से रविन्द्र मोहनदास, आशा देवी और कीर्ति भारती, बंगाली पंजा नागपुर से भारती प्रकाश रामभरे, जानवी रामभरे और वैष्णवी हर्ष रामभरे, शमनम अकरम तबरेज, साथ में फरजाना भी, आपने टिकरी मध्य प्रदेश से, या कोर्ट से विनायक बिंडे, श्रीमती मंगला बिंडे, शुभम बिंडे, श्यामनगर यवतमाल से राहुल मनवर, सराल मनवर और बेबी प्रियांशी, और सागर मध्य प्रदेश से चंद्रेश गौहर, श्रीमती वन्ना गौर और जयपाल यादव, और एन सिटी नागपुर महाराष्ट्र से विठल जाधव, अनुसुईया जाधव और पवन राजे जाधव, राजावत कम्प्लेक्स में शौक एमपी शाजापुर से है ये राजावत राज, मधु

राजवत और सुरक्षित। कल्पना मदन झा, मानव मैं आपका पता थर्ड विंग्स शशि क्लब अपार्टमेंट सिलवासा दादरा नगर हवेली। आपने कुछ और पता लिखा है दोस्त, आज मैं रह रहा दरवाजा एटा से, नवी हसन अब्बासी, शहनवाज अब्बासी और नवीद हसन अब्बासी। जरूर वरुदू से बाबा साहब वरुदय, आदिचर पे चंद प्रभा वरुदय का ईमेल हमें मिला। और स्टेट बैंक ईश्वर कॉलोनी नगली डायरी नजफगढ़ से मैथिली कुमारी लड्डू कुमारी टुक टुक। बरखेर से फरहान खान, आयशा खान और सरोज खान। जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डी क्रिस्टो, रोजी डी क्रिस्टो, विलियस डी क्रिस्टो का ईमेल हमें मिला। और घर मोहल्ला मालिंगपुर से अनुदीन बनहाटी, मुमताज बनहाटी और रियाज बनहाटी। स्वर्ण सिंह गांव दौले वाला जिला मोगा पंजाब से शुक्रिया के साथ आप आए, आपका खैर मकदम। उपरकोट मोहल्ला चौखंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन अब्बासी, शाहनवाज सरफराज अब्बासी। और कॉलोनी हांसी से सुभाष योगी, राजू मिगलानी और बब्बू डब्बू का ईमेल हमें मिला, इस नगमे को पसंद करते हैं। और उमाली से अनूप कुमार और उद्धव पाटिल। गांव लसुडिया पता है तहसील नरसिंहगढ़ होनी चाहिए, नरसिंह हाँ हर लिखा आपने। जिला राजगढ़ मध्य प्रदेश से गोविंद वैष्णव, दिव्या और सुमन। खाजीपीर उदयपुर से जब्बार मोहम्मद, नजीब खान और मंजू। नोएडा जिला बागपत से जगमोहन सिंह प्रजापत, अर्जुन भारती और प्यारी सिपोती भुवनेश्वरी देवी का भी ईमेल हमें मिला। और किशोरनगर अमरावती से हीरामन शिंदे, शीला देवी शिंदे और सिद्धार्थ गोडाने। आप दोस्तों का शुक्रिया। सुनिए अपनी पसंद का ये नगमा शमशाद बेगम की आवाज में फिल्म दुलारी से।

आइए दोस्तों, आप सुनते हैं मुक्ति फिल्म का ये नगमा मुकेश की आवाज में, जिसकी तर्ज बनाई है आर डी बर्मन ने, बोल हैं आनंद बख्शी के, और सुनना चाहते हैं आप दोस्त। ऐशबाग लखनऊ से रानी मुकेश गुप्ता और कृष्णेश्वर कांति गुप्ता, दादा ठाकुर रुद्र गुप्ता, और पसंद किया इस नगमे को। कालका से सुभाष बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज ने, अलका डबली से वसंत सिंह चैन, राजकुमार और कुलदीप गांधी, कस्बा बराना जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर और जयप्रकाश राहुल हरियाणा से, अंकित कांगड़ा, मोनी कांगड़ा और साहिल कांगड़ा, बजारो मंगीसापुर से यह मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमर निशा और शबीता, ऐसे कुछ लिखा है मोहम्मद, मेन रोड वेस्ट बंगाल से ये अभिजीत प्रसाद मेहरा, मिथुन सांगा और अशोक जाटव, टीवी टावर नागपुर मारा से नाना डोंगर दिवे, रामाताई डोंगर दिवे, दीक्षा डोंगर दिवे और नाला पार बाग छोटे साहब रामपुर से नवाबुद्दीन, निजामुद्दीन और मोहम्मद जमालुद्दीन, पिंजौर से चंद्रमोहन और इंद्रमोहन, मुलानपुर दाखा से राजेश जैन, बिटू जैन और संजीव जैन, कैथल हरियाणा से जयवीर सिंह ठाकुर और अनिल शर्मा, सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा और प्रतीक मल्होत्रा।

सैन्यगढ़ अरबी मारा से नरेंद्र मिलके, प्रियदर्शन मिलके, डॉक्टर प्रियंका काल पांडे और देवकी नगर भोपाल से चंपालाल दुबे, आनंद और दर्शित। सांगली जिला जत शहर से अल्ताफ हुजरे, सफुल्ला और सबात हुजरे। रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी, ठाकुर साहब, कुलदीप सिंह। भोपालगढ़ राजस्थान से धरण छिपा, कपिल छिपा और पूजा परिहार। जयराज पलोटरा से ये है मधुसूदन भट्ट, आरती और प्रयागराज भट्ट। नागचुन रोड संजय कलून खंडवा से अब्दुल गफ्फार डावर, खुश नसीब अब्दुल हक डावर और जारुल हक डावर। कर्नाटक गुलबर्गा से मोहम्मद रुकमुद्दीन मंथाल, आसिफ इकबाल और शबीर बनहटी और पुराना तलाक बुमराह से आसमा नाज अंसारी, वलीउल्लाह अंसारी और सुल्तान अंसारी। छत्तीसगढ़ पलाड़ी से प्रकाश वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा। राम रतन टाकिस कुंडलवाड़ी से गंगाधर सोनकर, विजय लक्ष्मी सोनकर। गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी, कलवती सोनी और प्रथम सोनी। आइए दोस्तों आप सुनते हैं तलत महमूद की आवाज में ये प्यारा सा नगमा, फिल्म संदिल और इस नगमे के लिए फरमाइश आप दोस्तों की जानिब से हमें मौसूल हुई। रायगढ़ छत्तीसगढ़ से विनोद वडलकर, वीना वडलकर, विदा वडलकर और सुरज चौधरी कोलकाता से, जामिया गाजीपुर से सूरज जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक जायसवाल, अमीर खुसर रोड गंजुनवाड़ा से डॉक्टर दबीर हसन, बेगम शबनम अनवर और भुवन प्रकाश गौतम, सिटी सेंटर खंडवा से भाई मनोज सेन, पूनम सेन और दीपक सुमैया सेन। पर्ल सिटी बरकाकाना से अफजाल ताज, शाहिन सुल्ताना सोनू तस्नीम, पुटिया कलादुर से संजय साहू, सुजाता साहू, शशांक साहू और हनुमानगढ़ राजस्थान से रजाक मोहम्मद, इमरान खान और इरफान खान। झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया और मयंक भाटिया। कस्बा बिलराम से इरशाद अहमद शाह, शाहजहां बेगम और मरियम जैन और जैनब भी। और इसी नगमे के लिए है जनाब ये मॉडल टाउन करनाल से सुदीन नूतन, किरण ठाकुर और पदम शर्मा। मदरसा गेट भावपुर मरियम, जौनपुर से इरशाद अहमद अंसारी, कमरा निषाद और आजरा तबस्सुम।

आइए दोस्तों सुनते हैं लाट साहब फिल्म का ये दो गाना, मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में। मौसीकार ने इस नगमे के शंकर जयकिशन और पसंद किया है आप दोस्तों ने। पश्चिम का गंजवाड़ा से मास्टर अली रजा सिद्दीकी, मास्टर मुनव्वर हुसैन अंसारी और फैजुल अलीम सिद्दीकी, यसिन जावेद और शगुफ तंजुम, गुमला झारखंड से दाऊद सराय सहारनपुर से अनवर साबरी, शम्मा साबरी और मुदस्सिर साबरी, सेरा लियोन वेस्ट अफ्रीका से ये है शहजाद रहमान और इस नगमे को सुनना चाहा है अहमदाबाद सिटी से उस्मान वोरा, शहनाज के साथ शिरीन भी हैं। और पहाड़गंज मुल्तानी ढाणा से अनिल मोहन, उषा मोहन और टीनू नायक का ईमेल हमें मिला इस नगमे के लिए। और राहत कैंप अमरावती महाराज से श्याम केटे, वन्ना केटे और कार्तिक केटे, पदवई नगर सिपुरा टाउन से जुबैर अली खान, सबिया जुबैर और अर्जुमन खान, कुली सेक्टर 5 सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोनी चौहान और कल्पित चौहान, अरविंद कुमार, गुड़िया कुमारी, भव्य कुमारी आप हैं बेनपट्टी मधुबनी बिहार से। आवास विकास कॉलोनी कासगंज से पवन गौड़, तनयपुर गौड़ और स्वेस आशीष गौड़ और जंक्शन प्लॉट राजकोट से प्रभुदास कोटेचा, हंसा कोटेचा और आशीष कोटेचा, मोहनपुर कमलागंज फरुखाबाद से तस्नीम अहमद फारूकी और मेन बाजार कुंडलवाड़ी महाराष्ट्र से गंगाधर यमेकर, प्रमोद यमेकर और प्रदीप यमेकर का ईमेल हमें मिला। विजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली विश्वकर्मा आप हैं बने बुजुर्ग पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से। और ऑक्सीजन पार्क रामनगर अमरावती महाराष्ट्र से सिद्धार्थ गुंडाने, अर्चनता गुंडाने और हिरामन शंडे। सुनिए दोस्तों अपनी पसंद का ये नगमा मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में।

आइए दोस्तों सुनते हैं टार्जन एंड सर्कस फिल्म का ये नगमा, आशा भोसले की आवाज में नगमा। मौसिकार हैं हंसलाल भगत राम, पसंद है आप दोस्तों की। छत्तीसगढ़ से मुकेश शर्मा, गौरव शर्मा, गरिमा शर्मा और तख्तपुर छत्तीसगढ़ से मिश्राल विश्वकर्मा, इंद्रादेव विश्वकर्मा और चेतन विश्वकर्मा। पंचसराय संभल से छोटे अंसारी, आलम अंसारी और असद अंसारी। कनेरा मोहल्ला पटियाला से मुकेश भत्ता, मलम भत्ता और निहारिका। जैन मंदिर वाली गली कुरावली से राशिद हुसैन अंसारी, आसन अंसारी और मोहम्मद कैफ अंसारी। घंटाघर चौखंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया और संप्रीत पंचोलिया की।

ये दोस्तों सुनते हैं पार्कर रफी का ये दो गाना लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों ने बजरू सुल्तानपुरी के बोल को मौसीकी से सजाया है के भोपाली ने और पसंद क्या है आप दोस्तों ने। रमेश कामले दिव्यानी साथ में गणेश कामले महाराष्ट्र से आप हैं और इस नगमे को सुनना चाहे विजय चौहान इंदुरकर तेजस्वी चौहान अंकित अंकित चौहान और नूर महल सीतामढ़ी बिहार से मुसरजानाज तलाजानाज और फराजानाज वाड़ीखेड़ा पंजाब से मिंटू टोमस और पिंकी अरोड़ा और नर्मदा पार्क मंगलगढ़ा जिला सोलापुर महाराष्ट्र से मास्टर अलीम पटेल लवंगे वाले मुजाहिद पटेल और नदीम पटेल। सामीन सुनिए अपनी पसंद का फिल्म पाकिजा से ये नगमा और इस नगमे के साथ ही आज का तामिल प्रोग्राम खत्म करने की अपने मेजबान मोहम्मद इमरान को दीजिए इजाजत।

0: سامعین، ابھی آپ سن رہے تھے فرمائشی فلمی نغموں کا پروگرام تامل ارشاد، یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. پیش خدمت ہے پروگرام سرخیوں میں.
1: سرخیوں میں
2: یہ آکاشوانی ہے. प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में. इसके अंतर्गत सुनिए हिमालय क्षेत्र में प्राकृतिक आपदाओं से निपटने में पूर्व चेतावनी, आपदा प्रबंधन और क्षेत्रीय सहयोग के महत्व पर चर्चा. इसमें भाग ले रहे हैं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के प्रोफेसर सूर्य प्रकाश और आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार.
3: प्रोफेसर सूर्य प्रकाश जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है.
4: धन्यवाद.
3: प्रोफेसर साहब, सबसे पहले अगर हम बात करें तो हिमालयी क्षेत्र जो है, जो ये इलाके हैं, यहां पर फ्लैश फ्लड्स यानी कि अचानक आने वाली बाढ़ है, तो ये अब इतनी गंभीर और अनिश्चित क्यों होती जा रही है? इसमें जलवायु परिवर्तन की क्या भूमिका है और ग्लेशियर के पिघलने या फिर जो निर्माण कार्य चल रहे हैं उनकी या फिर भूमि के इस्तेमाल में जो बदलाव हो रहा है, कौन से ऐसे मूल कारण हैं?
4: देखिए, ये जो हमारी तीव्र गति की बाढ़ है, ये जो पहाड़ी क्षेत्रों में होती है ज्यादातर और सडन आकस्मिक होती है और काफी सीवियर भी होती है इसके इम्पैक्ट्स. और जलवायु परिवर्तन की वजह से जो हमारी वर्षा की इंटेंसिटी बदल रही है, माप बदल रहा है और उसका डिस्ट्रीब्यूशन बदल रहा है, उसकी वजह से काफी इम्पैक्ट आ रहा है. और दूसरा जो टेम्परेचर चेंजेज हो रहे हैं, जिसकी वजह से ग्लेशियर भी पिघल रहे हैं, ग्लेशियर मेल्ट भी बढ़ रहा है, डिस्चार्ज बढ़ रहा है रिवर्स में. और इसके अलावा हाई अल्टीट्यूड लेवल्स में जो है भूस्खलन की घटनाएं भी काफी घटित हो रही हैं. तो इस तरह से मिलकर एक तो ग्लेशियर का पिघलना जलवायु परिवर्तन की वजह से, जिसमें हमारे एवरेज टेम्परेचर राइज कर रहे हैं, दूसरा हमारे यहाँ जो वर्षा अधिक मात्रा में हो रही है जिसको हम क्लाउड बस्ट बोलते हैं, और तीसरा भूस्खलन भी हो रहे हैं इनके साथ. तो बड़े रॉक डिटैचमेंट्स में, जैसे कि हमारी धौली गंगा रिवर में भी हुआ था पहले, ऋषि गंगा और धौली गंगा में 7 फरवरी 2021 में, और ऐसे ही सिक्किम में लोनाक लेक में हुआ था 4 अक्टूबर 2023 में. तो इसी तरह की घटना इस बार नेपाल में घटित हुई है. मौसम के पूर्वानुमान के बावजूद भी संभावनाएं नहीं पल लगा पाए कि इस तरह की तीव्र गति की बाढ़ आ सकती है, जो जिसका ओरिजिन जो है चाइना से हुआ और उस

0: टाइमली इंफॉर्मेशन ना होने की वजह से काफी लोग उसमें मौत का शिकार हुए और आपदा से ग्रसित हुए। अभी भी काफी लोग लापता हैं और इस तरह की परिस्थितियां ऐसा नहीं है कि हमारे सामने पहली बार आई हैं। कई बार, जैसे मैंने आपको उदाहरण के तौर पे चमोली का दिया, सिक्किम का दिया, और ऐसे ही और कई इलाकों में भी बाढ़ आती रही है। हिमाचल में भी आई है और जम्मू एंड कश्मीर में भी आई है। तो इस तरह का प्रक्रियाएं प्राकृतिक हैं, परंतु इसमें हमारी मानवीय दखल अंदाजी जो है ज्यादातर हमारे शिकार होने का कारण बनती है, क्योंकि हम ऐसे क्षेत्रों में अपने निवास स्थल भवन बना रहे हैं, संरचनाएं बना रहे हैं जो बाढ़ आपदा से ग्रसित रहती हैं। यहाँ पर अक्सर बाढ़ आती है और सामान्य मौसम की जानकारी होते हुए भी, जो कि हमारा भारतीय मौसम विभाग जैसे अक्सर 7 दिन पहले या पूरे मानसून सीजन का पूर्वानुमान देता है और उसके 3 दिन का भी देता है, फिर डेली बेसिस और ओवरली बेसिस पे भी डॉपलर वेदर रडार के जरिए वो सूचनाएं प्रदान करता रहता है।
1: ये जो ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड है, यानी कि जैसे हम हिंदी में कह सकते हैं कि हिमनदीय झील के अचानक फटने से आने वाली बाढ़ है, तो इसको क्या मॉनिटर करना इतना कठिन है, या फिर इसकी इंटेंसिटी इतनी बढ़ जाती है कि हम इसे जल्दी से पता नहीं लगा सकते हैं, तो ये बड़े पैमाने पर नुकसान अचानक से आकर पहुंचा देती है?
0: देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा कि हम आकस्मिक ऐसी तीव्र बाढ़ में क्यों फंस जाते हैं, जबकि हमारे पास मौसम का तो पूर्वानुमान है, परंतु जो हाई अल्टीट्यूड के, जैसे मैंने कहा, भूस्खलन होते हैं, उनकी सही हमारे पास जानकारियां कई बार नहीं होती हैं। और ग्लेशियर बॉडी, जैसे मैंने बताया चमोली में भी ऐसा ही ग्लेशियर बॉडी डिटैच हुआ था एक बड़े रॉकफॉल के साथ, इसी तरह से ये इस बार भी हुआ कि 1 किलोमीटर से ज्यादा का सरफेस गिरा और उसके साथ ग्लेशियर बॉडी भी आई और उसके बाद एक लेक बनी और सडन उसका ब्रेचिंग हुआ। तो ये जानकारी भूस्खलन व संबंधित जो समय अवधि के अनुसार, ये थोड़ा सा मुश्किल होती है। अदरवाइज मौसम की और ग्लेशियर मेल्ट की जानकारियां डिस्चार्ज और एटमोस्फेरिक मॉनिटरिंग के जरिए हम रखते हैं, वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम से।
1: प्रोफेसर साहब, कई बार इस तरह की जब आपदाएं आती हैं तो सवाल ये उठता है कि ये घटना पूरी तरह से प्राकृतिक रही है या इंसानी गतिविधियों ने इसकी इंटेंसिटी बढ़ाई, जिसकी वजह से हमें ऐसी विनाशकारी परिस्थिति देखने को पड़ी है। एक वैज्ञानिक नजरिए से आप इसे किस तरह से देखते हैं? क्या हिमालय में मानवीय हस्तक्षेप के बाद बाढ़ के खतरे बढ़ रहे हैं?
0: आपने बिल्कुल सही बोला है, मानवीय दखलंदाजी बाढ़ ग्रसित क्षेत्रों में बढ़ गई है। हम लोग जो भी बाढ़ क्षेत्र थे, जो जैसे हम 3 जोन में फ्लड जोनेशन में बात करते हैं, एक तो है प्रोविटिक जोन जिसमें नदी को हमेशा आना है जाना है और मानसून में उसका बड़ी मात्रा में डिस्चार्ज वहां पे दिखना है, परंतु उसके बाद हमारा एक रेस्ट्रिक्टेड जोन होता है और एक हमारा होता है परमिटेड, परमिटेड विद रेगुलेशंस। हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रोविटेड जोन में ही बना दे रहे हैं और उसकी वजह से हमारे यहाँ ज्यादा नुकसान। अगर आपने देखा हो इस बाढ़ में भी नदी किनारे बहुत सारे घर थे और नदी के बीचों बीच जो अच्छे ब्रिजेज भी बन रहे हैं ना, वो हम अभी भी शॉर्टेस्ट स्पैन देख के बना रहे हैं, हम सेफ्टी मेजर्स देखते हुए नहीं बना रहे हैं। शॉर्टेस्ट स्पैन में पानी की वेलोसिटी काफी बढ़ जाती है और उसके साथ जब सेडिमेंट आता है तो उसकी इरोजिव कैपेसिटी कई गुना हो जाती है, तो ऐसे में ब्रिज के पियर्स बिल्कुल जो है इरोड हो जाते हैं और साथ ही साथ ब्रिज भी पानी के साथ बहता हुआ जाता है। तो इस तरह की परिस्थितियां आती हैं कि आपके रोप ब्रिज हैं या झूला पुल है या दूसरे पुल बने हुए हैं, बांध बने हुए हैं या फिर सड़कें हैं, ये सब भी आपदा का शिकार बन जाती है, क्योंकि उनका जो डिजाइन प्लानिंग कंस्ट्रक्शन ये उस हिसाब से नहीं है जिसमें एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स का ध्यान दिया गया। तो अगर हम ये नहीं देखेंगे कि किस तरह की आपदाएं से हमारी जो संरचनाएं या भवन प्रभावित हो सकते हैं और उसके लिए क्या बचाव कार्य हमें करने चाहिए और किस तरह का निर्माण कार्य हमें करना चाहिए, विकास कार्य करना चाहिए, तब तक हम सुरक्षित अपने को महसूस नहीं कर सकते हैं। एक चीज और मैं आपको यहाँ पे बताना
1: जी,
0: चाहूंगा,
1: जरूर जरूर।
0: अगर आपने नेपाल की खबरें सुनी हैं तो बहुत सारे लोग हैं जो आउटसाइडर्स होते हैं जिनको इस लोकल फिनोमिनास का आइडिया भी नहीं होता, उन्होंने कभी ऐसी फ्लैश फ्लड्स देखी भी नहीं है, वो इसका ज्यादा शिकार बनते हैं। जो स्थानीय लोग हैं, जन समुदाय होते हैं, उन्होंने कई बार अपने जीवन में इस तरह की प्रक्रियाएं देखी होती हैं तो उनको पता है।

0: हम अपने रेस्पॉन्स फोर्सेज की।
1: जी।
0: तो ये सब प्रक्रियाएं होते हुए इसके अलावा पूर्व चेतावनी उस पर्टिकुलर भौगोलिक क्षेत्र में दी जाती है ताकि वो लोग पहले से अपने सही सुरक्षित स्थान पर रिक्तिकरण कर पाए।
1: प्रोफेसर साहब, आप नेपाल की बात कर रहे हैं तो मैं इस क्वेश्चन पर आने वाला था। हम अगर नेपाल की बात करते हैं तो ये जो अचानक से बाढ़ आई जिसके बाद हमने देखा बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ, जानमाल का भी वहां पर लॉस हुआ है, तो राहत और बचाव अभियान शायद उस लेवल तक नहीं पहुंच पाए क्योंकि रास्ता नहीं मिला, सड़कें तबाह हुई, पुल और संचार व्यवस्था सब एक साथ बाधित हुए। तो भारत के नजरिए से अगर हम इस फ्लड को देखते हैं तो हमें क्या समझना चाहिए, किस तरह की रणनीति अपनानी चाहिए?
0: देखिए, जैसे मैंने कहा आपका सारा एक्सेसिबिलिटी उतना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए हमें पहले से ये जो रेड अलर्ट देते हैं और जो हाई रिस्क जोन में हम डिफाइन कर देते हैं एरिया को, वहां के लिए पूर्व तैयारी की बहुत जरूरत होती है। आपदा के दौरान हम कुछ ज्यादा नहीं कर सकते अगर हमने पूर्व तैयारी नहीं की है, तो उसके हिसाब से एरिया से हेल्प इजीली आ सकती है, डाउन स्ट्रीम एरिया कट ऑफ हो जाते हैं। तो ऐसे में जो नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे तो जो जल का प्रवाह भी बढ़ जाता है और उसकी मात्रा भी बढ़ जाती है और उसका कटाव भी बढ़ जाता है। तो इस वजह से नीचे से ऊपर की तरफ को मदद पहुंचाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, परंतु ऊपरी क्षेत्र है जहां पर हमने पहले से इस तरह की सामग्री एकत्रित की हो, जो हम आपदा से जो प्रताड़ित लोग हैं उनको मदद के लिए पहुंचा सके तो ज्यादा अच्छा रहता है। तो इसीलिए ये प्री पोजिशनिंग की जो मैंने कहा, रिसोर्सेज की भी और पर्सनल की भी, ये बहुत जरूरी होता है।
1: प्रोफेसर साहब, अभी अगर हम वर्तमान चीजों की बात करते हैं तो उपग्रह चित्र होते हैं हमारे पास, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ड्रोन है, दूर संवेदी तकनीक है, इन सब का काफी विकास हो रहा है और इन तकनीकों की मदद से मौसम से संबंधित जो गतिविधियां होती हैं उन पर नजर रखी जाती है, लेकिन क्या आपको लगता है कि अभी भी हमें इस दिशा में बहुत कामकाज करने की जरूरत है क्योंकि अचानक से जो बाढ़ आ रही है उसकी जानकारी इकट्ठा कर पाना शायद अभी उतना आसान नहीं हो पाया है?
0: बाढ़ एक वार्षिक प्रक्रिया है। मौसम की जानकारी जैसे आपने भी बोला काफी अच्छे तरह से आज के दिन में हम कर पा रहे हैं, परंतु जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं, जो पर्वतीय क्षेत्रों की ढाल की जो स्थिरता की परिस्थितियां हैं उसके बारे में हमें कंप्लीट जानकारी नहीं। हालांकि हम स्थिरता निर्धारित कर देते हैं कि स्थिर है या कम स्थिर है या एवरेज औसत स्थिरता है या अस्थिरता है, ये सारी चीजों का हमें एक भूस्खलन जोखिम प्रबंधन के लिए हम जनरेशन मैपिंग करते हैं उसके जरिए आइडिया लगा लेते हैं, परंतु किस समय इस तरह के भूस्खलन होंगे जिनसे नदियां बाधित हो सकती हैं, जिनसे ग्लोफ या लॉफ जिसको हम बोलते हैं ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड और लॉफ बोलते हैं लैंडस्लाइड लेक आउटबर्स्ट फ्लड, वो बन सकती हैं और उससे फ्लैश फ्लड्स हो सकती हैं। तो ये गंभीर परिस्थिति है जिसके बारे में हमें और अच्छा रिलायबल क्रेडिबल पूर्व चेतावनी तंत्र लगाने की जरूरत है। इसके अलावा ये एरियाज काफी कठिन होते हैं पहुंच के हिसाब से और वहां पर एक कार्य करना, तकनीक का इस्तेमाल करना और भी मुश्किल होता है, तो इसलिए हमको वहां पर समुदाय आधारित जोखिम आपदा प्रबंधन की ज्यादा जरूरत है। वहां पर समुदाय आधारित पूर्व चेतावनी तंत्र लगाने चाहिए जो लोकल कम्युनिटी खुद से ऑपरेट कर सके और पहले से अलर्ट्स अपने आप से जारी कर सके और वहां के लोगों को इवैक्यूएट कर सके। तो स्थानीय कम्युनिटी बेस्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम्स की भी जरूरत है जहां हम सैटेलाइट बेस्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम या एआई बेस्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम को प्रमोट करें। एआई हमारे लिए हेल्पफुल है क्योंकि हम पे इसमें बहुत सारा डाटा एक साथ मल्टीपली और डिफरेंटली यूज कर सकते हैं प्रेडिक्शंस के लिए, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स के लिए, परंतु सैटेलाइट हो, एआई हो या और कोई भी सिस्टम हो उसका फायदा तब है जो स्थानीय जो जनता है, जन समुदाय है, उस तक वो सूचना पहुंचे जो उससे प्रभावित होने वाले हैं ताकि वो अपने बचाव के लिए उचित कार्रवाइयां कर सके।
1: प्रोफेसर सूर्यप्रकाश, जैसे आपने जिक्र किया कि लोकल कम्युनिटी का सहयोग बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस चीज में, तो हमें इस चीज की जरूरत है कि हम ज्यादा से ज्यादा जानकारी उन तक पहुंचाएं और साथ में ही ऐसी व्यवस्था करें कि अगर इस तरह की कोई आपदा आती है तो सबसे पहले मानवीय और तकनीकी सहायता जल्द से जल्द उपलब्ध कराई जा सके।
0: बिल्कुल सही बोला आपने। हमारे यहाँ राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जो है वहां से एक ऐप को लॉन्च किया गया, सचेत ऐप को, जो जियो फेस्ट है और मल्टीलिंगुअल है।

0: लोकल एरियाज के लिए इन्फॉर्मेशन देने के लिए पुश मैसेजिंग स्कीम है। तो इस तरह के जो एप्स हैं जिसको हम कॉमन अलर्ट प्रोटोकॉल के जरिए अपनी आपदा प्रबंधन जो इकाइयां हैं उनको भी देते हैं, और इसके अलावा हर व्यक्ति तक पहुंचाने की हम कोशिश करते हैं, क्योंकि आजकल हर घर में एक ना एक व्यक्ति के पास तो मोबाइल रहता ही है।
1: जी
0: तो मोबाइल के जरिए जो हम ये आउटरीच की कोशिश कर रहे हैं और पूरक चेतावनी देने की कोशिश कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छी है। इसके अलावा कई और भी स्मार्ट एप्स डेवलप हो रही हैं, जैसे तमिलनाडु ने टीएन स्मार्ट बनाया, ऐसे ही आसाम ने फ्लूज करके मॉडल बनाया फ्लड अर्ली वार्निंग सिस्टम के लिए, मुंबई चेन्नई ने भी आई फ्लूज करके बनाया, और हमारे सेंट्रल वाटर कमीशन ने भी एक ऐप लॉन्च करी फ्लड वॉच करके। तो
1: जी
0: इस तरह की सारी ये जो इन्फॉर्मेशन है अगर सबके पास हो, और इसके अलावा अगर आप फंस जाते हो सबके बावजूद भी, तो आप डिजास्टर हेल्पलाइन 112 पे कॉल कर पाए।
1: प्रोफेसर सूर्य प्रकाश जी, इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और हमसे चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी।
2: अभी आप सुन रहे थे हिमालय क्षेत्र में प्राकृतिक आपदाओं से निपटने में पूर्व चेतावनी, आपदा प्रबंधन और क्षेत्रीय सहयोग के महत्व पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के प्रोफेसर सूर्य प्रकाश और आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप NewsOnAIR और यूट्यूब चैनल NewsOnAIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
3: सुर्खियों में
4: सामिन, अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम सुर्खियों में, यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। वक्त हो चुका है कव्वालियों का, तो लीजिए सुनिए करीम साबरी और साथियों से कव्वाली।

नेपाल और तिब्बत में अचानक तबाहकुन सैलाब आने से मरने वालों की तादाद बढ़कर 547 तक पहुंच गई है, जबकि 1545 लोग अब भी लापता हैं। इमदादी टीमें जिंदा बच जाने वाले अफराद और पानी के बहाव में बह जाने वाली लाशों का पता लगाने के लिए दरियाओं के किनारे और दूर दराज की बस्तियों में तलाश के काम में लगी हुई है। जनूब मगरबी चीन के इलाके में 5.1 शिद्दत का जलजला आने के तनाजुर में मजीद सैलाब के अंदेशे से हुक्काम ने मुतासिर जिलों से 800 से ज्यादा अफराद को दीगर मुकामात पर मुंतकिल किया और फिर से वार्निंग जारी की है। इधर भारत ने बचाव और राहत की बड़ी कार्रवाई शुरू की है। वजारत खारजा ने कहा है कि बुध के रोज वहां अचानक सैलाब आने के सानहे के बाद से 320 भारतीय शहरियों से राब्ता कायम नहीं हो सका है या उनके लापता होने की इत्तला मिली है। वजारत खारजा के तर्जमान रणधीर जायसवाल ने बताया कि तकरीबन 100 भारत निजाद अफराद का भी कुछ अता पता नहीं है जो दीगर मुल्कों में आबाद थे। कल नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए जनाब जायसवाल ने कहा कि त्रिशूली वन पनबिजली प्रोजेक्ट पर काम करने वाले 63 भारतीय शहरियों को मुतासिरा इलाके से निकालकर बाहर लाया गया है। जनाब जायसवाल ने बताया कि चीन के इलाके में तकरीबन 400 भारतीय शहरी महफूज हैं और वो अपने घर वालों के साथ राब्ता कायम किए हुए हैं। तर्जमान ने कहा कि बीजिंग में भारतीय सिफारतखाना इन लोगों को बाहर लाने में सहूलत पैदा करने की खातिर मुकामी हुक्काम टीम लीडरों और ट्रैवल एजेंट्स के साथ तालमेल कायम कर रहा है। जनाब जायसवाल ने बताया कि सरकार ने वजारत खारजा में एक कंट्रोल रूम कायम किया है जो दिन रात काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि काठमांडू और पेचिंग दोनों शहरों में भारतीय सिफारतखानों ने भी दिन रात काम करने वाली हेल्पलाइन कायम की है। इधर इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर 10 टन इमदानी सामान लेकर तीसरी परवाज काठमांडू रवाना हो गई है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने एक सोशल मीडिया पोस्ट पर यह जानकारी दी है। डॉक्टर एस जयशंकर ने बताया कि डॉक्टरों, तिब्बी अमले के अहलकारों और टनल में फंसे हुए अफराद का पता लगाकर उन्हें बाहर निकालने के लिए 11 अरकान पर मुश्तमिल एक टीम भी भेजी गई है। उन्होंने नेपाल में जारी राहत और बचाव कोशिशों में भारत की मदद का इरादा किया। वजीर खारजा डॉक्टर जयशंकर ने कल नई दिल्ली में तमिलनाडु से ताल्लुक रखने वाले उन 21 यात्रियों के ग्रुप से मुलाकात की जिन्होंने नेपाल में शदीद सैलाब के तनाजुर में प्रधानमंत्री जन धन योजना को आज 12 साल मुकम्मल हो गए हैं, जो मुल्क के माली शमूलियत के मंजरनामे की काया पलट में एक नुमाया संग मील है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि गुजश्ता 12 साल के दौरान जन धन योजना से लोगों की जिंदगी में बड़ी तब्दीली आई है और इसका बेमिसाल असर हुआ है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि पूरे मुल्क में लोगों को बाख्तियार बनाने और माली शमूलियत के फरोग में जन धन योजना अहम रोल अदा कर रही है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 28 अगस्त 2014 में मस्कूरा स्कीम का आगाज किया था। सनअती पैदावार के इशारे पर मबनी मुल्क की सनअती पैदावार की शरह तरक्की में सालाना बुनियाद पर इस साल जुलाई में 6.7% का इजाफा हुआ है। जुलाई के आदाद व शुमार से जाहिर होता है कि सनअती सरगर्मियों में अच्छी रफ्तार के साथ इजाफा हो रहा है, हालांकि जून के महीने में नजरसानी शुदा सतह के मुकाबले तरक्की की रफ्तार मुतदिल रही। हुकूमत ने कहा है कि मुल्क में शक्कर की कोई कमी नहीं है और मुनासिब कीमत पर शक्कर की खातिर ख्वाह दस्तियाबी के लिए तमाम जरूरी इकदाम किए जाएंगे। सार्फीन के उमूर की वजारत ने कहा है कि हालिया दिनों में शक्कर मिलों से बराह रास्त हासिल होने वाली शक्कर की कीमतों में तकरीबन 20% की कमी आई है, जबकि शक्कर की खुर्दा कीमत में भी कमी आनी शुरू हो गई है। वजारत ने बताया कि उसने शक्कर की खातिरखार दस्तियाबी और घरेलू मंडी में इसकी सप्लाई की मसनूई कमी की रोकथाम को यकीनी बनाने के लिए कई सरगर्म इकदाम किए हैं। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज से उज़्बेकिस्तान का दौरा करेंगे। वो दो रोजा दौरे पर ताशकंद शहर जाएंगे। अपने दौरे के दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी और उज़्बेकिस्तान के

ویڈیوز 1071 किलो हर्ट्ज मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडीफी डिश पर ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत है सदाबहार फिल्मी नगमों का प्रोग्राम आखिरी शब।

आखिरी से प्रोग्राम की अगली पेशकश शमशाद बेगम और सैलिश की आवाजों में ये दोगाना फिल्म आग से। इस नगमे की मौसिकी तरतीब दी है राम गांगुली ने।

आमीन। अभी आप सुन रहे हैं अलबेला फिल्म से ये दो गाना लता मंगेशकर और चितलकर की आवाजों में। नगमा निगार है राजेंद्र कृष्ण, मौसिकार सी रामचंद्र।

रखी है। वजारत खारजा ने कहा है कि बुध के रोज वहां अचानक सैलाब आने के सानहे के बाद से 320 भारतीय शहरियों से राबता कायम नहीं हो सका है या उनके लापता होने की इत्तला मिली है। वजारत खारजा के तर्जमान रणधीर जायसवाल ने बताया कि तकरीबन 100 भारत निजाद अफराद का भी कुछ अता पता नहीं है जो दीगर मुल्कों में आबाद थे। कल नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए जनाब जायसवाल ने कहा कि त्रिशूली वन पन बिजली प्रोजेक्ट पर काम करने वाले 63 भारतीय शहरियों को मुतासिरा इलाके से बचाकर बाहर लाया गया है। जनाब जायसवाल ने बताया कि चीन के इलाके में तकरीबन 400 भारतीय शहरी महफूज हैं और वो अपने घर वालों के साथ राबता कायम किए हुए हैं। तर्जमान ने कहा कि बीजिंग में भारतीय सिफारतखाना इन लोगों को बाहर लाने में सहूलत पैदा करने की खातिर मुकामी हुक्काम टीम लीडरों और ट्रैवल एजेंट्स के साथ तालमेल कायम कर रहा है। जनाब जायसवाल ने बताया कि सरकार ने वजारत खारजा में एक कंट्रोल रूम कायम किया है जो दिन रात काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि काठमांडू और बीजिंग दोनों शहरों में भारतीय सिफारतखानों ने भी दिन रात काम करने वाली हेल्पलाइन कायम की है। इधर इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर 10 टन इमदादी सामान लेकर तीसरी परवाज काठमांडू रवाना हुई है। वजीर खारजा डॉक्टर जयशंकर ने एक सोशल मीडिया पोस्ट पर यह जानकारी दी है। डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि डॉक्टरों, तिब्बी अमले के अहलकारों और टनल में फंसे हुए अफराद का पता लगाकर उन्हें बाहर निकालने के लिए 11 अरकान पर मुश्तमिल एक टीम भी भेजी गई है। उन्होंने नेपाल में जारी राहत और बचाव कोशिशों में भारत की मदद का इरादा भी किया। प्रधानमंत्री जन धन योजना को 12 साल मुकम्मल हो गए हैं जो मुल्क की माली शमूलियत के मंजरनामे की कायापलट में एक नुमाया संग मील है। वजीर आजम नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि गुज़श्ता 12 साल के दौरान जन धन योजना से लोगों की जिंदगी में बड़ी तब्दीली आई है और इसका बेमिसाल असर हुआ है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि पूरे मुल्क में लोगों को बाख्तियार बनाने और माली शमूलियत के फरोग में जन धन योजना अहम रोल अदा कर रही है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 28 अगस्त 2014 में मजकूरा स्कीम का आगाज किया था। सनअती पैदावार के इशारे पर मबनी मुल्क की सनअती पैदावार की शरह तरक्की में सालाना बुनियाद पर इस साल जुलाई में 6.7% का इजाफा हुआ। जुलाई के आदाद शुमार से जाहिर होता है कि सनअती सरगर्मियों में अच्छी रफ्तार के साथ इजाफा हो रहा है। हालांकि जून के महीने की नजरसानीशुदा सतह के मुकाबले तरक्की की रफ्तार मुतदिल रही। जून के महीने में सनअती पैदावार के इशारे में तेजी के साथ इजाफा हुआ और यह 7.3% से बढ़कर 8.8% की सतह पर पहुंच गई, जिससे इस बात का इशारा मिलता है कि जुलाई की सहमाही में सनअती तरक्की की रफ्तार पहले के तखमीने से कहीं ज्यादा मजबूत रही। हुकूमत ने कहा है कि मुल्क में शक्कर की कोई कमी नहीं है और मुनासिब कीमत पर शक्कर की खातिरखा दस्तियाबी के लिए तमाम जरूरी इकदाम किए जाएंगे। सारफीन के उमूर की वजारत ने कहा है कि हालिया दिनों में शकर मिलों से बराह रास्त हासिल होने वाली शकर की कीमतों में तकरीबन 20% की कमी आई है, जबकि शकर की खोरदा कीमत में भी कमी आनी शुरू हो चुकी है। वजारत ने बताया कि उसने शकर की खातिरखाह दस्तियाबी और घरेलू मंडी में इसकी सप्लाई की मस्नूई कमी की रोकथाम को यकीनी बनाने के लिए कई सरगर्म इकदाम किए हैं। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज से उज़्बेकिस्तान का दौरा करेंगे। वो दो रोजा दौरे पर ताशकंद शहर जाएंगे। अपने दौरे के दौरान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्ज़ी योयेव मुख्तलिफ शोबों में ताउन का जायजा लेंगे। वज़ीर-ए-आज़म का दौरा भारत और उज़्बेकिस्तान के दरमियान करीबी कसीर पहलुओं की हामिल और बढ़ती हुई कलीदी शराकतदारी की तौसीख करता है। तवक्को है कि तबादले ख्याल के दौरान बाहमी मुफाद के वसी तर शोबों का अहाता किया जाएगा और बाहमी ताउन को मुस्तहकम करने के नए मौके की निशानदेही की जाएगी। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन अमेरिका के 6 रोजा दौरे पर रवाना हो चुकी हैं। अमेरिका के अपने दौरे के दौरान वो शिकागो, एशविल और न्यूयॉर्क जाएंगी। शिकागो में वजीर खजाना सरकर्दा और मुमताज सरमायाकारों के साथ एक गोलमेज कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगी और प्राइवेट सेक्टर के सरकर्दा सीईओज, सुदूर और सीनियर नुमाइंदों के साथ बातचीत करेंगी। वजीर खजाना अपने दौरे के दौरान शिकागो में

0: भारतीय बिरादरी के अफराद से भी बातचीत करेंगी। एशविल में मोहतरमा सीतारमन G20 की अमरीकी सदारत में G20 के वज़राए खजाना और सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स की मीटिंग में भी भारतीय वफद की सरबराही करेंगी। इस मीटिंग से भारत को हम असर आलमी इक्तिसादी चैलेंजों से मुतालिक अपने तनाजुर में पेशरफ्त करने और G20 मेंबर मुल्कों के साथ ताउन को मुस्तहकम करने का मौका मिलेगा। ईरान के वजीर खारजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि अगर अमेरिका अपना रवैया बदल देता है और डराने धमकाने का सिलसिला तर्क कर देता है तो अमेरिका के साथ सिफारतकारी की बहाली मुमकिन है। जनाब अराग़ची ने एक सोशल मीडिया पोस्ट पर कहा कि अमेरिका को चाहिए कि वो एतमाद कायम करे, महज़ब अंदाज से बात करे, हमारे हकूक को तस्लीम करे और अपने वादों को पूरा करे। इधर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अलबत्ता ईरान के साथ फौरी बातचीत के इम्कान को रद्द कर दिया है और कहा है कि ईरान के खिलाफ अमरीका की फौजी कार्रवाई जारी रह सकती है। सदर ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान शदीद फौजी और इक्तिसादी दबाव में है और इसकी सलाहियत महदूद होकर रह गई है। भारत के वेलावन सेंथिल कुमार का आज रात पीसीए बुडापेस्ट स्क्वाश ओपन के फाइनल में हंगरी के बालाज फारकस से मुकाबला होगा। वेलावन कल रात सेमीफाइनल में वीर चौटरानी को शानदार 2-3 से हराकर फाइनल में पहुंचे हैं, जबकि दुनिया के 55वें नंबर के खिलाड़ी फारकस मिस्र के मुस्तफा को सीधा सेटों में 0-3 से हराकर फाइनल में पहुंचे हैं। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। भारत ने इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर 10 टन इमदादी सामान के साथ तीसरी परवाज सैलाब से मुतासिरा नेपाल भेजी है। वजारत खारजा ने कहा है कि 320 भारतीय शहरियों से अभी तक राब्ता कायम नहीं हो सका है। नेपाल और तिब्बत में अचानक तबाहकुन सैलाब आने से मरने वालों की तादाद बढ़कर 547 तक पहुंच गई है। सरहद के दोनों तरफ 1,500 से ज्यादा लोग अब भी लापता हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान के 4 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। ईरान ने अमरीका के साथ मुजाकिरात की अपील की है, जबकि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फौरी बातचीत के इम्कान को रद्द कर दिया है और पीएसए बुडापेस्ट स्क्वाश ओपन टूर्नामेंट में फाइनल में भारत के वेलवेन सेंथिल कुमार का मुकाबला हंगरी के बालाज फारकस से होगा। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी है। सबका एक बजा चाहता है। अब उर्दू सर्विस की आज की तीसरी और आखिरी मजलिस की नशरात इख्तिताम पजीर होती है। सुबह 9:30 पर हम अपनी पहली मजलिस की नशरात के साथ एक बार फिर हाजिर खिदमत होंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। खुदा हाफिज। शब बख़ैर। जय हिंद।
2: नमस्कार। आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेफ के निमंत्रण पर ताशकंद का दौरा करेंगे। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति मिर्जियोयेफ के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत करेंगे। भारत और उज्बेकिस्तान ने 2011 में अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। तब से द्विपक्षीय संबंध कई क्षेत्रों में व्यापक रूप से बढ़े हैं।
3: भारत और उज्बेकिस्तान ने 2011 में अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। तब से द्विपक्षीय संबंध कई क्षेत्रों में व्यापक रूप से बढ़े हैं। प्रधानमंत्री की यात्रा भारत और उज्बेकिस्तान के बीच करीबी, बहुआयामी और बढ़ते राजनीतिक साझेदारी को बढ़ावा देगी। चर्चा के दौरान आपसी सहयोग के कई इलाकों को शामिल किए जाने और द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के नए रास्ते तलाशने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज्बेकिस्तान।
2: विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नेपाल में विनाशकारी बाढ़ त्रासदी के बाद अब तक 84 भारतीय नागरिकों को बचाया गया है। इनमें त्रिशूली एक परियोजना के 63 कर्मचारी और तमिलनाडु के 21 व्यक्ति शामिल हैं। मंत्रालय ने कहा कि 320 भारतीयों से संपर्क नहीं हो पा रहा है और वे लापता हैं। मंत्रालय ने बताया कि कल 149 लोग चीन से सुरक्षित नेपाल पहुंच गए हैं। उधर चीन की तरफ लगभग 400 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और भारतीय दूतावास उनके संपर्क में है और उन्हें वहां से निकालने के लिए काम कर रहा है। नेपाल और तिब्बत में विनाशकारी बाढ़ से मृतकों की संख्या बढ़कर 547 हो गई है। 1545 लोग लापता हैं। दक्षिण पश्चिमी चीन में 5.1 तीव्रता के भूकंप के बाद फिर से बाढ़ की आशंका बढ़ गई है। उधर नेपाल में आई भयानक बाढ़ के बाद वहां फंसे महाराष्ट्र के 290 लोगों के सुरक्षित होने की पुष्टि हुई है, जबकि 60 लोगों का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। आपदा के समय नेपाल में महाराष्ट्र के जिन 395 लोगों के मौजूद होने की जानकारी मिली थी, उनमें से 105 भारत लौट रहे हैं, जबकि राज्य नियंत्रण कक्ष का बाकी 290 लोगों से संपर्क हुआ है। वे सुरक्षित हैं, लेकिन वहीं फंसे हुए हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना के कल 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। यह देश में वित्तीय समावेशन की दिशा में प्रमुख पड़ाव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में जनधन परियोजना के अभूतपूर्व परिवर्तनकारी परिणामों का प्रभाव बेमिसाल है। श्री मोदी ने कहा कि जनधन योजना वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और देश के लोगों को सक्षम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। सरकार ने कहा है कि देश में चीनी की कोई कमी नहीं है और उचित कीमतों पर पर्याप्त मात्रा में चीनी उपलब्ध कराने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जाएंगे। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने बताया कि हाल के दिनों में चीनी की कीमतों में लगभग 20% की गिरावट आई है, जबकि खुदरा चीनी की कीमतें भी कम होने लगी हैं। परीक्षा सुधारों के लिए गठित उच्च स्तरीय कार्य बल ने विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों सहित सभी हितधारकों से सुझाव आमंत्रित किए हैं। सुझाव 13 सितंबर तक वेबसाइट, व्हाट्सएप या फोन नंबर द्वारा भेजे जा सकते हैं। इस बीच राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने यूजीसी नेट 2026 की 84 विषयों की अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर दी है। देश में इस वर्ष जुलाई में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक आईआईपी द्वारा मापी गई औद्योगिक उत्पादन वृद्धि दर वार्षिक आधार पर 6.7% रही। इन आंकड़ों से संकेत मिलता है कि इस दौरान औद्योगिक गतिविधि में अच्छी गति से वृद्धि जारी रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश में लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 137वीं कड़ी होगी। यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार कच्चे माल और तैयार उत्पादों का परीक्षण, मापांकन और गुणवत्ता मूल्यांकन करने वाली केंद्रीय सरकारी परीक्षण प्रयोगशाला नेशनल टेस्ट हाउस आज बेंगलुरु में अपना 115वां स्थापना दिवस मनाएगा। कार्यक्रम में केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी शामिल होंगे। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: This is Akashvani, the news read by Akhila. India has stepped up humanitarian assistance to Nepal affected by the flash floods as the third flight carrying 10 tons of humanitarian assistance has departed for Kathmandu. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar informed this in a social media post. The minister said that the assistance includes portable generator sets, dignity kits, food packets and water purification tablets. Dr. Jayashankar said that an 11-member team of doctors, paramedics and recce team for tunnel rescue operations is also on board. He also reiterated India's support to Nepal's ongoing relief and rescue efforts. Earlier, India had sent more than 47 tons of emergency relief supplies in two flights. Meanwhile, the death toll from devastating flash floods in Nepal and Tibet has risen to 547, with 1,545 people are still missing as rescue teams search riverbanks and isolated settlements to survivors and bodies swept downstream. Authorities have evacuated more than 800 people from affected districts and issued fresh warnings after a 5.1 magnitude earthquake struck southwestern China, raising fears of further flooding. India has launched a major rescue and relief operation. The Ministry of External Affairs has said that 320 Indian nationals remain uncontactable or are reportedly missing following the flash flood tragedy on Wednesday. External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said around 100 people of Indian origin holding other nationalities also remain uncontactable. The External Affairs Ministry has said that 84 Indian nationals have been rescued so far and need

0: श्रोताओं, गीत सुनहरे कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। रात्रि के 2 बजने को है। आइए अब सुनते हैं हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति

0: शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद का दौरा करेंगे। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत करेंगे। भारत और उज्बेकिस्तान ने 2011 में अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। तब से द्विपक्षीय संबंध कई क्षेत्रों में व्यापक रूप से बढ़े हैं।
1: भारत और उज्बेकिस्तान ने 2011 में अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। तब से द्विपक्षीय संबंध कई क्षेत्रों में व्यापक रूप से बढ़े हैं। प्रधानमंत्री की यात्रा भारत और उज्बेकिस्तान के बीच करीबी, बहुआयामी और बढ़ते राजनीतिक साझेदारी को बढ़ावा देगी। चर्चा के दौरान आपसी सहयोग के कई इलाकों को शामिल किए जाने और द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के नए रास्ते तलाशने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज्बेकिस्तान।
0: विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नेपाल में विनाशकारी बाढ़ त्रासदी के बाद अब तक 84 भारतीय नागरिकों को बचाया गया है। इनमें त्रिशूली एक परियोजना के 63 कर्मचारी और तमिलनाडु के 21 व्यक्ति शामिल हैं। मंत्रालय ने कहा कि 320 भारतीयों से संपर्क नहीं हो पा रहा है और वे लापता हैं। मंत्रालय ने बताया कि कल 149 लोग चीन से सुरक्षित नेपाल पहुंच गए हैं। उधर चीन की तरफ लगभग 400 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और भारतीय दूतावास उनके संपर्क में है और उन्हें वहां से निकालने के लिए काम कर रहा है। नेपाल और तिब्बत में विनाशकारी बाढ़ से मृतकों की संख्या बढ़कर 547 हो गई है। 1545 लोग लापता हैं। दक्षिण पश्चिमी चीन में 5.1 तीव्रता के भूकंप के बाद फिर से बाढ़ की आशंका बढ़ गई है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के कल 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। यह देश में वित्तीय समावेशन की दिशा में प्रमुख पड़ाव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में जनधन योजना के अभूतपूर्व परिवर्तनकारी परिणामों का प्रभाव बेमिसाल है। श्री मोदी ने कहा कि जनधन योजना वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और देश के लोगों को सक्षम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। सरकार ने कहा है कि देश में चीनी की कोई कमी नहीं है और उचित कीमतों पर पर्याप्त मात्रा में चीनी उपलब्ध कराने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जाएंगे। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने बताया कि हाल के दिनों में चीनी की कीमतों में लगभग 20% की गिरावट आई है, जबकि खुदरा चीनी की कीमतें भी कम होने लगी हैं। परीक्षा सुधारों के लिए गठित उच्च स्तरीय कार्य बल ने विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों सहित सभी हितधारकों से सुझाव आमंत्रित किए हैं। सुझाव 13 सितंबर तक वेबसाइट, व्हाट्सएप या फोन नंबर द्वारा भेजे जा सकते हैं। इस बीच राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने यूजीसी नेट 2026 की 84 विषयों की अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर दी है। देश में इस वर्ष जुलाई में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक आईआईपी द्वारा मापी गई औद्योगिक उत्पादन वृद्धि दर वार्षिक आधार पर 6.7% रही। इन आंकड़ों से संकेत मिलता है कि इस दौरान औद्योगिक गतिविधि में अच्छी गति से वृद्धि जारी रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश में लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 137वीं कड़ी होगी। यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। 10वां महिला एशिया कप कल संयुक्त अरब अमीरात के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में आरंभ हो गया है। एशिया कप के 2026 के इस संस्करण में कुल 8 टीमें भाग ले रही हैं, जिन्हें 4-4 के दो समूहों में बांटा गया है। ग्रुप ए में भारत और पाकिस्तान के साथ हांगकांग और थाईलैंड है, जबकि ग्रुप बी में श्रीलंका, बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात और इंडोनेशिया शामिल हैं। महिला एशिया कप का आरंभिक मैच कल थाईलैंड और हांगकांग के बीच खेला गया। ग्रुप ए के मैच में थाईलैंड ने हांगकांग को 6 रन से हरा दिया। आज दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में ग्रुप बी के मैच में श्रीलंका का मुकाबला संयुक्त अरब अमीरात से होगा। इस बीच भारतीय महिला क्रिकेट टीम अपने अभियान की शुरुआत 30 अगस्त को थाईलैंड के खिलाफ करेगी। इसके बाद 3 सितंबर को उसका सामना हांगकांग से होगा। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Akhila. India has stepped up humanitarian assistance to Nepal affected by the flash floods as the third flight carrying 10 tons of humanitarian assistance has departed for Kathmandu. External Affairs Minister

0: इसी गीत के साथ नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक का कार्यक्रम गीत बहार अब यहीं समाप्त होता है। आप हमें सुन रहे हैं एआर लाइव न्यूज 24x7 चैनल पर। रात्रि के 3 बजने वाले हैं, अब समाचार प्रसारित होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्रा। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से तमिलनाडु, कर्नाटक, केरलम, लक्षद्वीप की 3 दिन की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति शिक्षा, जनसेवा, सांस्कृतिक विरासत, उद्योग जगत और शैक्षिक जगत के बीच सहयोग, मत्स्य पालन से जुड़े कार्यक्रमों तथा प्रमुख सार्वजनिक समारोहों में शामिल होंगे। श्री राधाकृष्णन आज तमिलनाडु के इरोड में कोंगु वेल्लालोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रस्ट के स्थापना दिवस में समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति बेंगलुरु जाएंगे, जहां वे विधानसौधा में कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री रामकृष्ण हेगड़े के जन्मशती समारोह में शामिल होंगे। रविवार को उपराष्ट्रपति केरलम के अलापुजा जाएंगे, वे केरल कौमुदी की 115वीं वर्षगांठ के समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद वे पतनमतिट्टा जाएंगे और वहां आरनमुला जल महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। श्री राधाकृष्णन तिरुवनंतपुरम में केरलम के प्रमुख सांस्कृतिक त्यौहार ओणम पेजेंट्री का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद का दौरा करेंगे। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत करेंगे। भारत और उज्बेकिस्तान ने 2011 में अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। तब से द्विपक्षीय संबंध कई क्षेत्रों में व्यापक रूप से बढ़े हैं।
2: भारत और उज्बेकिस्तान ने 2011 में अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। तब से द्विपक्षीय संबंध कई क्षेत्रों में व्यापक रूप से बढ़े हैं। प्रधानमंत्री की यात्रा भारत और उज्बेकिस्तान के बीच करीबी, बहुआयामी और बढ़ते राजनीतिक साझेदारी को बढ़ावा देगी। चर्चा के दौरान आपसी सहयोग के कई इलाकों को शामिल किए जाने और द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के नए रास्ते तलाशने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज्बेकिस्तान।
1: विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नेपाल में विनाशकारी बाढ़ त्रासदी के बाद अब तक 84 भारतीय नागरिकों को बचाया गया है। इनमें त्रिशूली एक परियोजना के 63 कर्मचारी और तमिलनाडु के 21 व्यक्ति शामिल हैं। मंत्रालय ने कहा कि 320 भारतीयों से संपर्क नहीं हो पा रहा है और वे लापता हैं। मंत्रालय ने बताया कि कल 149 लोग चीन से सुरक्षित नेपाल पहुंच गए हैं। उधर चीन की तरफ लगभग 400 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और भारतीय दूतावास उनके संपर्क में है और उन्हें वहां से निकालने के लिए काम कर रहा है। नेपाल और तिब्बत में विनाशकारी बाढ़ से मृतकों की संख्या बढ़कर 547 हो गई है। 1545 लोग लापता हैं। दक्षिण पश्चिमी चीन में 5.1 तीव्रता के भूकंप के बाद फिर से बाढ़ की आशंका बढ़ गई है। सरकार ने कहा है कि देश में चीनी की कोई कमी नहीं है और उचित कीमतों पर पर्याप्त मात्रा में चीनी उपलब्ध कराने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जाएंगे। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने बताया कि हाल के दिनों में चीनी की कीमतों में लगभग 20% की गिरावट आई है, जबकि खुदरा चीनी की कीमतें भी कम होने लगी हैं। परीक्षा सुधारों के लिए गठित उच्च स्तरीय कार्यबल ने विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों सहित सभी हितधारकों से सुझाव आमंत्रित किए हैं। सुझाव 13 सितंबर तक वेबसाइट, व्हाट्सएप या फोन नंबर द्वारा भेजे जा सकते हैं। इस बीच राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने यूजीसी नेट 2026 की 84 विषयों की अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर दी है। अमरीका ने ईरान की सरकार को और वहां की सेना के वित्तीय स्रोत काटने की कोशिश के अंतर्गत ईरान के सबसे बड़े वाणिज्यिक बैंक मेल्ली के एक वरिष्ठ अधिकारी और हांगकांग की एक कंपनी पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। अमरीकी वित्त विभाग ने बैंक मेल्ली की दुबई शाखा के प्रबंधक रजा मोहम्मद तईदी को निशाना बनाया। उसने कहा कि यह बैंक ईरान की सेना, इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर की कुछ फोर्स और रक्षा मंत्रालय को मदद मुहैया करा रहा है। 10वां महिला एशिया कप कल संयुक्त अरब अमीरात के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में आरंभ हो गया है। एशिया कप के 2026 के इस संस्करण में कुल 8 टीमें भाग ले रही हैं, जिन्हें चार चार के दो समूहों में बांटा गया है। ग्रुप ए में भारत और पाकिस्तान के साथ हांगकांग और थाईलैंड है, जबकि ग्रुप बी में श्रीलंका, बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात और इंडोनेशिया शामिल हैं। आज दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में ग्रुप बी के मैच में श्रीलंका का मुकाबला संयुक्त अरब अमीरात से होगा। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Akhila. India has stepped up humanitarian assistance to Nepal affected by flash floods as the third flight carrying 10 tons of humanitarian assistance has departed for Kathmandu. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar informed this in a social media post. The minister said that the assistance includes portable generator sets, dignity kits, food packets and water purification tablets. Dr. Jayashankar said that an 11-member team of doctors, paramedics and recce team for tunnel rescue operations is also on board. He also reiterated India's support to Nepal's ongoing relief and rescue efforts. Earlier, India had sent more than 47 tons of emergency relief supplies in two flights. Meanwhile, the death toll from devastating flash floods in Nepal and Tibet has risen to 547, with 1,545 people still missing as rescue teams search riverbanks and isolated settlements with survivors and bodies swept downstream. Authorities have evacuated more than 800 people from the affected districts and issued fresh warnings after a 5.1 magnitude earthquake struck southwestern China, raising fears of further flooding. India has launched a major rescue and relief operation. The Ministry of External Affairs has said that 320 Indian nationals remain uncontactable or are reportedly missing following the flash flood tragedy on Wednesday. External Affairs Ministry spokesperson Randeep Jaiswal said around 100 people of Indian origin holding other nationalities also remain uncontactable. The External Affairs Ministry has said that 84 Indian nationals have been rescued so far in Nepal following flash flood tragedy. These include 63 workers of the Trishuli 1 project and 21 people from Tamil Nadu. Mr. Jaiswal informed the media that 21 Indian nationals from Tamil Nadu who had reached Kathmandu from the flood-affected areas on Thursday have arrived in New Delhi yesterday. External Affairs Minister Dr. Jaishankar yesterday met the group of 21 pilgrims belonging to the Tamil Nadu in New Delhi who were rescued from Nepal. Later talking to the media, he thanked the government of Nepal and its army for the rescue efforts. On the Chinese side, External Affairs Ministry spokesperson Jaiswal said that around 400 Indian nationals are safe and in contact with their families. Mr. Jaiswal said that the government has set up a control room in the Ministry of External Affairs, which is working round the clock. He said Indian embassies, both in Kathmandu and Beijing, have also set up a 24/7 helplines. Prime Minister Narendra Modi will embark on a four-day visit to Uzbekistan and Kyrgyzstan today. In the first leg of the trip, Mr. Modi will reach Uzbekistan's capital, Tashkent, today. During the visit, Prime Minister Modi and

आप सुन रहे हैं जगजीत सिंह की आवाज में गजलें। तो आइए अगली गजल पेश है, कल 14वीं की रात थी।

गीत व गजलों के कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं जगजीत सिंह के स्वर में ये गजल अगली शायद मैं जिंदगी का सफर निभाता चला।

और अब इस कार्यक्रम की आखिरी गजल आपको सुनवाने जा रही है, जी हाँ, जगजीत सिंह के ही स्वर में, चिट्ठी ना कोई संदेश।

0: गई। इसी गजल के साथ अब ये कार्यक्रम यही समाप्त करने की दीजिए अपनी दोस्त कीर्ति को इजाजत। सुबह के 4 बज चुके हैं, अब हमारा सुनिए अगला कार्यक्रम।
1: प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।

मुझे पहले सुनिए सुधा रघुनाथ के स्वर में कृष्ण स्तुति।

अब प्रस्तुत है कर्नाटक संगीत के कार्यक्रम नाद ब्रह्म के अंतर्गत वायलिन वादन। कलाकार हैं टीके जयारामा अय्यर। मृदंगम पर संगत की है रामानंद ईश्वरन ने। आइए सुनते हैं वायलिन वादन राग श्री रंजनी में।

0: कर्नाटक संगीत के कार्यक्रम नाद ब्रह्म के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे वायलिन वादन राग श्री रंजनी में। कलाकार थे टी के जयारामा अय्यर।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकहीं विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल

ऑन एयर और ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। आज शनिवार है। शक संवत 1948 के भाद्रपद मास की सातवीं तिथि, तदनुसार 29 अगस्त 2026। सुबह के 4:53:45 हुए हैं। अब हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

चलिए अब आपको आज के प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण दे दें। सुबह 5:10 पर कार्यक्रम होगा आओ योग करें, योगा फॉर वेलनेस। आज आप जानेंगे दीर्घ श्वास प्रेक्षा और आसन के बारे में। पांच बजकर 20 मिनट पर समय रहेगा देशभक्ति संगीत का, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वररंजनी में आप सुनेंगे बांसुरी वादन रोहित प्रसन्ना द्वारा राग नट भैरव में सुबह 5:30 पर।

भजन व शब्द का आनंद लीजिएगा कार्यक्रम वंदना में सुबह 6:10 पर 6:40 पर आप सुन सकेंगे चिंतन। चिंतन में आज आप सुनेंगे मेजर ध्यानचंद के जीवन से प्रसंग। 6:45 पर रामचरित मानस होगा। आज आप सुनेंगे अयोध्या कांड का भाग 32।

सुबह 7:10 पर कार्यक्रम संगीतिका रहेगा। इसके अंतर्गत आप सुनेंगे विधि शर्मा द्वारा गाए भजन। 7:30 पर होगा गीतो भरी गुड मॉर्निंग। सुबह 8:45 पर स्वास्थ्य पत्रिका रहेगा। 9:15 पर कार्यक्रम धरती आकाश।

सुबह 9:30 पर सुनिएगा पंजाबी कार्यक्रम मिट्टी दी महक। आपकी पसंद फिल्म संगीत का कार्यक्रम आप सुन सकेंगे सुबह 10:10 पर।

0: सुबह 11:10 पर कार्यक्रम होगा सबरस और 11:30 पर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम सुरमंजरी में सुनेगा तन्वी भट्टाचार्य का गायन। ये थे आज के प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। सुबह के 5:00 हैं। कुछ ही देर में हिंदी व अंग्रेजी में समाचार होंगे।
1: बड़ सो पर सदा सब विद रतनागर संत मराल करे कंतूहल तिन जम त्रास मिट्यो दुख कागर कल युग दुरत दूर कर बेको दर्शन गुरु सगल सुख।

ਅਲਗ ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਪੰਥ ਸੁਣਿਓ ਗੁਰ ਪੰਥ ਮਿਲੰਤ ਜਮ ਤ੍ਰਾਸ ਮਿਟਾਈ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ।

0: दास पाठ कीरत की गोरे राम दास राखो सरनाई
1: सुख टल गुर सेविया अहनिस सहज सुपाय दर्शन परसया गुरु का जन्म मरण दुख जाय होवे सिफत खसम दी नूर अरसों पुरसों चट्टी सुध डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटी है सज्जन सच्चा पातशाह सिरशांद शाह जिस पास बैठिया सो ही है सबना दावी सा सज्जन सच्चा पातशाह सिरशांद शाह जिस पास

मंदड़ा काए करे हे।

जो किस करे सो भला कर मानिए, हिकमत हुकम चुकाइए, जाके प्रेम पदार्थ पाइए।

ਤਿਲੰਗ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਆਨੜੀਏ ਮਾਨੜਾ ਕਾਏ ਕਰੇ ਆਪਣੜੈ ਘਰ ਹਰ

सहाय सब थाई हुई सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई हुई सहाय दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ